0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 34 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे से 7 बजे तक रेंडू भट्ट स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी फिल्म सॉन्ग लेकर। 7:02 पर रविंद्र सिंह हाजिर होंगे स्टूडियो में।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने को यही कुछ ही देर में समाचार होंगे।

नमस्कार, पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर कल मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। भारत ने 350 के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेल का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया और भारत ने पहले T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट सुप्रभात में। और सुप्रभात का सफर हम अपना जरूर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। हम बातें शेयर करते

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर अब समय है प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन का।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एसआर मीडिया एकेडमी।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हमारे अंदर की बुराइयों की वजह से ही हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। हमारे मनों में दूसरों के प्रति नफरत, बेईमानी और छल कपट बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु पर भरोसा रखने और उसके वचन पर चलने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम एक नई सृष्टि बनकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाओगे।

जी हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि शैतान ने इस धरती पर हम इंसानों को अभिलाषाओं के चक्रव्यूह में ऐसा उलझा दिया है जिससे हम चाहते हुए भी ईश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए हमारा जीवन नाना प्रकार की मुश्किलों से घिरता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम संपूर्ण मन से भक्ति भाव के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हमारे जीवन में शांति भी बनी रहेगी और शारीरिक कष्टों से भी हमको मिलेगा छुटकारा।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि हम सबके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और वही हमको सही और गलत की पहचान कराता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हम इसीलिए चुने गए ताकि हम पाप के अंधकार से भरे इस संसार में एक दीपक की भांति प्रकाशमय होकर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकें।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें मैसेज करके जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रभात और आप सभी की सुबह हो गई होगी एक बहुत ही हैप्पी मॉर्निंग में। आपने प्रवेश कर लिया, आप आ चुके हैं। जब आ चुके हैं तो बस अच्छे से अपने दिन का आगाज करें और देखिए कि फिर दिन में क्या कुछ नया घटता है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें और खुश करती हैं। अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले सुनेंगे बेहद खूबसूरत ट्रैक सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आप सभी के लिए सुप्रभात में।

कर लेते हैं और सोचते हैं कि कई ढेर सारे काम हैं जो हमें करने भी हैं, और आज की लिस्ट में कई सारे काम हमारे पेंडिंग हैं जो कल थे और उससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम जितने काम होते हैं करते हैं, पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं कि व्यक्ति कोशिश नहीं करता है अपने कामों को पूरा करने की, लेकिन फिर भी किसी वजह से कोई ना कोई ऐसा रीज़न ज़रूर आ जाता है जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि ठीक है अब ये चीज़ छोड़ देते हैं, कल करेंगे। हम बिज़ी हो जाते हैं ऐसी चीज़ों में जो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप इस बात को गौर कीजिएगा कि कई बार जब हम ऐसी चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं और व्यस्त हो जाते हैं जो हमारे लिए उस समय पर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब ऐसे में करना तो ये चाहिए कि उस काम को छोड़कर हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ाती रहती हैं। चीज़ें गड़बड़ाती रहती हैं तो आगे की चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होती जाती हैं, और मुश्किल चीज़ों में जब हम फंस जाते हैं फिर हम वहाँ पर सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, मैंने ऐसा क्या किया था जो ये मेरे साथ ही हुआ। अब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस प्रश्न का जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। पर कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आप सभी के लिए बेहद खूबसूरत ट्रैक फ्रॉम द मूवी खामोशी द म्यूजिकल।

है कि लाइफ हमें काफ़ी चीज़ें देती है, वो चीज़ें भी देती है जिन्हें हम नहीं पसंद करते या हम नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में वो चीज़ें, वो मौसम, वो रंग हमारी लाइफ में आ तो जाते हैं, अब उनको किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है ये बड़ी बात है। ये हर किसी को नहीं आता है और इसे सीखने में कई बार सालों लग जाते हैं। कई बार लोग सीख जाते हैं, कई बार नहीं भी सीख पाते हैं कि हमें इन चीज़ों का, ये रंग हमने नहीं चाहता, ये मौसम हमने नहीं चाहता, इस तरह की भावना, इस तरह के एक्सपीरियंस हमने नहीं चाहे थे, तो अब क्या करें। अब जब आ गए हैं, जो चीज़ आपको मिल गई है उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये हमें आना चाहिए। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि चीज़ें हमें कल पर नहीं छोड़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी एक कहानी है पंचतंत्र में, उस कहानी के माध्यम से चलिए इस बात को समझते हैं। क्या होता है कि एक तालाब में तीन मछलियाँ होती हैं जो बहुत बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। उनमें से उनके जो नाम होते हैं वो होते हैं अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्न मति और यद भविष्य। और तीनों के व्यवहार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि तीनों के बिहेवियर एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। एक यानी कि अनागत विधाता, जो कि बड़ी समझदार होती है, कॉन्शियस होती है अपने आगे आने वाले चीज़ों के, लेकर प्रायर वो चीज़ें तैयार कर लेती है, यानी कि प्लानिंग के साथ चलती है। दूसरी वाली जो मछली होती है प्रत्युत्पन्न मति, उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है, उसे पता होता है कि किस तरह से क्विक क्विक एक्शन मुझे लेना है, कोई भी सिचुएशन उसके सामने आ जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करती है। एक होती है यद भविष्य, जो ये सोचती है कि ठीक है, देखा जाएगा, जो मेरे नसीब में लिखा है, किस्मत में लिखा है, वो ही होगा, उससे ज़्यादा तो मैं अपनी तरफ से कोई जो है प्रयास नहीं कर सकती हूँ। एक बार क्या होता है कि पहली मछली जो होती है अनागत विधाता, वो एक व्यक्ति की बात सुन लेती है जो मछुआरा हो।

वो उस तालाब पर आता है, वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। अच्छा, जब इतनी सारी मछलियाँ हैं तो क्यों ना इन मछलियों को पकड़ लिया जाए और उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया जाए। ये बात जब अनागत विधाता सुन लेती है तो वो अपनी बाकी सहेलियों को जाकर बताती है, और ऐसे में बाकी सहेलियाँ जो होती हैं वो अपने अपने विचार सोचने लगती हैं। ऐसे में अनागत विधाता कहती है कि अब हमें यहाँ पर रहना जो है हमारे लिए सेफ नहीं है, हमें यहाँ पर से चले जाना चाहिए। पर उसके साथ बाकी दोनों मछलियाँ नहीं जाती हैं, तो ऐसे में वो अकेले ही उस तालाब से निकल जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि संकट आने वाला है और मुझे आज ही उस संकट के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। तो उस तालाब को छोड़कर वो दूसरी जगह चली जाती है। बाकी दोनों जो दोस्त होते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं, तो दिन भी बीत जाता है। अगला दिन आता है, मछुआरा अपना जाल उसमें डाल देता है और दोनों मछलियां बाकी मछलियों के साथ फंस जाती हैं, दोनों दोस्त। तो ऐसे में प्रद्युम्नपति अपना तुरंत अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करती है और मरने की नाटक करती है, ड्रामा करती है। अब वो ये सोच लेती है कि अगर मैं इस तरह से व्यवहार करूंगी तो डेफिनेटली मुझे मछुआरा नहीं लेके जाने वाला है, वो मुझे यहीं पर छोड़ देगा। पर यद भविष्य के दिमाग में अभी भी कुछ नहीं आ रहा होता है, वो बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं होती है। तो जब मछुआरा देखता है कि इतनी सारी मछलियों में हमारी मछलियाँ, एक मछली मर चुकी है, तो ये सोच कर घबरा जाता है कि बाकी मछलियाँ ख़राब ना हो जाएं, तो इसलिए वो उसे उठा के फेंक देता है। और जैसे ही वो उसे तालाब में वापस फेंकता है तो ये क्या, प्रद्युम्नपति जो है वो तुरंत से सर से भाग जाती है। अब ये देख के मछुआरा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उसके पास ढेर सारी मछलियाँ होती हैं। अब ढेर सारी मछलियाँ तो होती हैं, क्या होता है उसके बाद, तीसरे दोस्त का भविष्य क्या होता है, ज़रूर बताऊंगी आपको। लेकिन इससे पहले श्रेय घोषाल और तोशी रैना की आवाज़ में बेहद खूबसूरत ट्रैक आप सभी के लिए सुप्रभात में। सुप्रभात सुन रहे हैं आप रेणु भट्ट के साथ।

लेकिन वो समय तो लग रहा है, डेफिनेटली लग रहा है, लेकिन अपनी चीज़ें वो तैयार कर रही हैं। तो हम बात कर रहे थे तीनों दोस्त की, जिसमें दो दोस्त तो बच जाती हैं, लेकिन तीसरी दोस्त जिसका नेचर होता है कि मैं क्या ही कर लूँगी, या देख लेंगे जो हो जाए, अब मेरी किस्मत में जो होगा वही तो होगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो यद भविष्य उस ट्रैप में, उस जाल में फंस जाती है बाकी मछलियों के साथ, जिसे मछुआरा अपने साथ ले जाता है। और जब वो ले जाता है तो दोनों दोस्तों को उसकी याद तो आती है, लेकिन इस बात से जो हम मतलब निकालते हैं वो ये है कि आपको अगर पता है कि आपके सामने संकट आएगा, और तो हम इस बात को लेके प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कई लोग होते हैं ना जो बहुत एक्स्ट्रा अलर्ट रहते हैं, और कई लोग होते हैं जो अपने दिमाग का बहुत बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाती है ना तो उसे वो हैंडल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पता भी होता है उनको संकट आने वाला है तो भी वो कुछ नहीं करते, नहीं पता होता है तो भी वो कुछ नहीं करते, और संकट आ जाता है वो तब भी कुछ नहीं करते। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। प्रिडिक्शन जो है वो तो कोई अपने लाइफ तो कोई प्रिडिक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ हमें अपने एंड पर अलर्ट होना बहुत ज़रूरी। तो कल जो चीज़ें करनी होती हैं वो अगर हम आज ही निपटा लें, आज ही वो चीज़ें हो जाए, तो हो सकता है कि आगे आने वाला जो समय है वो इतना ज़्यादा सख्त ना हो हमारे लिए। तो चीज़ें सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो हमारे लिए, चीज़ें हम ही मुश्किल ना कर दें, इस बात का ध्यान भी तो हमें रखना है, इस बात का ध्यान अदरवाइज कौन रखेगा। आप सभी के लिए श्रीराम की आवाज़ में बेहद खूबसूरत ट्रैक, आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी के FM रेडियो चैनल पर, रेडियो हेड के साथ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रभात रेणु भट्ट के साथ। और अब मैं आपको बता दूं, वो तमाम प्रोग्राम्स जो आप दिन भर आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं, अब से कुछ ही देर में यानी कि 7 बजे आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग डेली NCR में रविंद्र सिंह को, और 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, और फिर होगा हमारा प्रोग्राम 8:02 पर गुड मॉर्निंग डेली NCR के दूसरे घंटे में आपसे मिलने आऊंगी मैं, और रविंद्र ही रहेंगे आपके साथ दिल के तराने गाने नए पुराने में 9:02 पर। अदिति पिष्ट लेकर आएंगे मैचलेस म्यूजिक आर 10:02 पर। निखिल वर्मा के साथ सुनेंगे आप बॉलीवुड ट्रेल्स यानी कि बॉलीवुड की सभी ताजा तरीन हलचल 11:02 पर। 12:02 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल, और 1:02 पर प्रोग्राम होगा मेरा वाला सॉन्ग, निखिल रहेंगे आपके साथ। कार्यक्रमों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आशियाना की ओर चलेंगे जो मारा लेगी लेकर आने वाली है। 2:02 का समय रहेगा रेडियो डॉक्टर का समय, जैसे कि आपको पता है कि 3 बजे का है। आज का हमारा टॉपिक है सीजनल आई फ्लू अक्यूट कंजक्टिवाइटिस। हमारे डॉक्टर एक्सपर्ट रहने वाले हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, और आप फॉर्मर चीफ हैं एम्स और न्यू दिल्ली से हैं ये। और आगे बढ़ेंगे, 4 बजे का समय अल्फा जैन का, माला रहेंगे आपके साथ। 5:02 पे सिटी लाइट्स में कोमल रहेंगे आपके साथ। वीर धवन के साथ आप सुन सकते हैं मैसेज मसाला मिक्स 6:02 पर। और सुशांत मल्होत्रा रहेंगे फ्राइडे फियास्टा में 7:02 पर। म्यूजिक मस्ती सुनेंगे आप 8:02 पर वीर दमन के साथ। विकास कौशिक लेकर आने वाले हैं आपकी याद आती रही 9:02 पर, और विकास ही रहेंगे आपके साथ रंगे महफिल में 11:02 पर। ये तमाम प्रोग्राम्स कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें 24x7 साल के 365 दिन।

दूरियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उतना ही से कम भी होना चाहिए। अब जिस जगह पर ये चीज़ फिट हो जाए, जो चीज़ फिट हो जाए वो आप वहाँ पे फिट कर लीजिए और उसी तरह से चीज़ों को, रिश्तों को आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी के मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉली हमें मैसेज करिए दिल्ली से, पंकज हमें मैसेज कर रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से, राजकुमार के संतानी का मैसेज भी हमें महाराष्ट्र से आया है। थैंक यू सो वेरी मच, आप यूँ ही हमारे साथ बने रहे। कहानी पसंद आई आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपनी लाइफ में कुछ बातें जो है ना, कुछ बातें जब सिर्फ बोलने की नहीं होती, हमें अपनी लाइफ में ना उसे इम्प्लीमेंट भी करना होता है। हम बोल तो जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखेगा क्या चेंजेस आते हैं। जब हम में चेंज आएगा ना, तब देखिए हमारे आसपास की चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। और आसपास की चीज़ें बदलने के लिए तो खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है बॉस। तो एटीट्यूड बदलिए, देखिए कैसे चीज़ें बदलती हैं।

वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो, वो राह ही क्या जो थक कर बैठ जाए। थक कर नहीं बैठना है, चीज़ें कल पर छोड़ने से अच्छा है कि उसके आप प्री प्लान करें, चीज़ों को अपने हिसाब से जितना हद तक पॉसिबल है पूरी कोशिश करें कि सही से जाएं। वैसे होना जो है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उसको किस तरह से हम हैंडल कर रहे हैं ये भी तो बहुत ज़रूरी बात है ना। अब मेरा जाने का समय हो गया, रविंद्र आ चुके हैं स्टूडियो में और मैं मिलूंगी आपसे ठीक है एक घंटे बाद गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर के दूसरे घंटे में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ रविंद्र भी तैयार हैं अपने प्रोग्राम के लिए।

नमस्कार, अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर कल मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। भारत ने 350 किलो के थ्रस्टर श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और अब बात खेल जगत से। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। और अंत में भारत ने पहले T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र, लेकर हाजिर हूं बहुत सारी ऐसी बातें जो आपसे मुझे करनी है, चाहे मौसम का हाल हो, चाहे ट्रैफिक का हाल, या फिर हो कोई खास शख्सियत जिसके बारे में बताना हो, जिससे आपको रूबरू कराना हो। लेकिन फिलहाल मौसम से शुरुआत कर लेते हैं, एक प्यारा सा स्वागत आपका कर लेते हैं, क्योंकि हमारे और आपके दिल के तार दिल से जुड़े हैं और तभी हमारी बातें भी होंगी दिल से दिल तक। वो कहते हैं भाई बादलों की चादर ओढ़े है आज आसमान, बारिश की बूंदें दे रही हैं मौसम को नई पहचान। जी हाँ, आज पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।

कहते हैं किसी वाद्य यंत्र की जुबान नहीं होती है, लेकिन प्रकृति की कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेजान लगती हैं लेकिन बेजान होती नहीं। उनसे जब स्वर फूटते हैं तो अंदाजा लगता है जिंदगी की बहुत सारी सीख हमें वो दे जाते हैं, है ना। और जिंदगी का सफर है भी ऐसा जिसको समझने के लिए हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीजों से सीख मिल जाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, है ना। फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी होती हैं, लेकिन बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है अगर हम घर से निकले हुए हैं। तो भाई साहब आप ध्यान रखें कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के चलते सेंट्रल दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जैसे विजय चौक है, संसद मार्ग है, जनपथ है, इंडिया गेट और कनॉट प्लेस जैसी जगह हैं जहां पर ट्रैफिक थोड़ा सा धीमा रहने का अनुमान है और डायवर्जन भी लागू रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी वाहन जांच के कारण जाम की स्थिति बन सकती है। अगर आप इन मार्गों से यात्रा कर रहे हैं या होकर यहां से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा अतिरिक्त समय लेकर निकलें और ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी को आप जरूर ध्यान रखें ताकि आप अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंच सकें। और बाकी काम अगर आप कहीं थोड़ा बहुत भी धीमे पड़ते हैं तो वहां पर आपको आपका जो मनोरंजन करने के लिए हम यहां बैठे हैं। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो प्यारे प्यारे नगमों से हम आपकी सुबह के खुशनुमा बनाते रहेंगे।

और साथ ही आपके सफर को भी। तो कनिक श्रेष्ठ और कविता श्रेष्ठ की आवाज में गीत आप सुनने जा रहे हैं, बहुत प्यारा सा है, रंगी सारी।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुना

0: आएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

तो जीवन के लिए तो भाई यही कहा जाता है कि तेरी और मेरी ये कहानी है, लेकिन अपनी कहानी को किस तरह से लिखना है कि वो यादगार बन जाए और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। ऐसे ही कुछ किरदार होते हैं, ऐसे ही कुछ शख्सियत होती हैं जो हमारे बीच ना होते हुए भी हमेशा हमें याद आती हैं। और उन्हीं में से एक बहुत बेहतरीन कलाकार है, और कलाकारों के लिए एक बात भी बहुत प्यारी सी कही है कि कुछ कलाकार सिर्फ अभिनय नहीं करते बल्कि वे अपनी दौर की पहचान बन जाते हैं, है ना। और ऐसे ही कुछ महान कलाकार हुए, उनमें से एक नाम हम आपको बता देते हैं, वो नाम है भारत कुमार का। चूंकि इस नाम से ये मशहूर थे, लेकिन असली नाम उनका मनोज कुमार है, जो कि आज भी हमारे बीच है। और भारत कुमार उनका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी फिल्मों में ज्यादातर देशभक्ति देखने को मिलती, कोई ना कोई सीख मिलती है और कोई ना कोई ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे व्यक्ति आगे बढ़ने पर मजबूर होता है। और अगर उसके कदम ठहर भी गए हैं तो वो जिंदगी के उन लेसन्स को सीख लेता है उनकी फिल्में देखकर, जो हमें वापस खड़ा कर देती हैं पूरी ऊर्जा के साथ कि भाई अभी तो बहुत आगे जाना है हमें। तो 24 जुलाई यानी आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के उस अभिनेता, निर्देशक और लेखक को जिनकी फिल्मों ने देशभक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बात मनोज कुमार की है क्योंकि आज के दिन 1937 को एबटाबाद में उनका जन्म हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और यहीं से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा का एक सुनहरा सफर। उन्हें प्यार से भारत कुमार कहा जाता है। इसकी वजह थी कि उनकी यादगार देशभक्ति पर आधारित फिल्में शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति, इन फिल्मों ने ना जाने सिर्फ न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि देश प्रेम और सामाजिक मूल्यों का एक संदेश भी दिया। बात करें उनके सम्मानों की तो 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके बाद 2015 का भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी उन्हें मिला, और भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए इस पुरस्कार को उन्हें दिया गया। और इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्मफेयर पुरस्कार भी हासिल हुए। मनोज कुमार भले ही आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनकी फिल्में, उनके संवाद और उनका देशभक्ति से भरा सिनेमा हमेशा भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर बना रहेगा। हिंदी सिनेमा के इस अमर सितारे को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि, शशत नमन। और गीत जो भारत की पहचान कराता है वही हम इस वक्त बजाने जा रहे हैं। और इससे पहले भी हमने गीत उन्हीं की फिल्म का बनाया मजाया, शोर फिल्म, जिसमें आवाजें थी लता मंगेशकर मुकेश के। चलिए एक और प्यारा सा गीत उन्हीं की फिल्म से।

0: कलाकार सिर्फ अभिनय नहीं करते बल्कि वे अपने दौर की पहचान बन जाते हैं। और मनोज कुमार एक इसी तरह के कलाकार थे। और कहते हैं कि भाई जिंदगी कोई खेल तो है नहीं, लेकिन जिंदगी में खेल बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर आप दैनिक झलकियां जानना चाहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की, दर्पण टिकिया और प्रेरणा शर्मा ये झलकियां आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा अगर आप खेल के शौकीन हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हम नहीं जान पाते हैं, इन झलकियों के दौर में जान लेते हैं। चलिए सुनते हैं।
1: The Commonwealth Games.
2: आवाजें अनेक, नारा एक। अगले 10 दिन 7 समुंदर पार स्कॉटलैंड के ग्लासगो की फिजाओं में भी इंडिया इंडिया के ये नारे गूंजते सुनाई देंगे, क्योंकि आगाज हो चुका है 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का।
3: Olympic javelin champion Neeraj Chopra is the big attraction. He won gold at the 2018 Commonwealth Games. Boxer Lovina Borgen is back as well and brings in the baton. And three-time Commonwealth gold medalist and Tokyo Olympic silver medalist Mirabai Chanu carries the India flag. He won 61 medals last time in Birmingham, a long way from a single bronze at their first game in 1934.
4: 123 खिलाड़ी 10 अलग अलग खेलों में टीम इंडिया की जर्सी पहन तिरंगे को सबसे ऊपर लहराने का सपना लिए उतरेंगे, और उनके साथ उतरेगी करोड़ों भारतीयों की प्रार्थनाएं, उम्मीदें और शुभकामनाएं।
2: अलग अलग भाषा वेशभूषा वाले सभी देशवासियों की धड़कन एक होगी। नीरज चोपड़ा का हर भाला जब आसमान की ओर जाएगा तो उसे देखने वाली निगाहें अलग अलग होंगी, लेकिन उम्मीद एक होगी।
4: लवलीना का हर पंच सिर्फ सामने वाले को पीछे नहीं धकेलेगा, शायद किसी छोटे शहर की लड़की को ये यकीन दिलाएगा कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं।
2: मीराबाई चानू जब वजन उठाएंगी तो सिर्फ बारबेल का वजन नहीं होगा, उसमें करोड़ों उम्मीदों का भार भी होगा, और उसे उठता देखकर शायद हमें भी अपने कंधे थोड़े मजबूत लगेंगे। खेलों में मुकाबले अलग हो सकते हैं, लेकिन सपना एक है, अपने तिरंगे को सबसे ऊंचा देखना।
4: हाँ, इस बार खेलों का दायरा कुछ सिमटा हुआ है। 2022 में बर्मिंगम में हुए संस्करण में जहाँ 19 खेल थे, तो वहीं इस बार सिर्फ 10 हैं। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, स्क्वाश और टेबल टेनिस जैसे वो तमाम खेल जिसमें भारत ने ढेरों पदक जीते, वो इस 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है।
2: इसलिए कुल पदकों की संख्या कम होना तय है, और बता रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रतिनिधि हिमिका चौधरी।
5: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स हम लेके आए। जैसा कि सबको पता है अब कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन्स है, हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है, तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा।
4: इसी साल जापान में एशियन गेम्स भी होने वाले हैं, जिनकी तैयारियों के लिहाज से भी कॉमनवेल्थ गेम्स बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और भारत की महानतम धावकों में से एक पीटी उषा से बेहतर ये कौन जानता है।
6: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल, एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड। एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है, में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एनीवे 2 months इज देयर, दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस। हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा कंपटीशन तो इधर ऑर्गेनाइज किया है, बट फिर भी व्हाट आर ऑल द चेंजेस वी हैव टू डू, ऑल टीम विल बी देयर।
4: खेलों के औपचारिक शुभारंभ से पहले ही भारत ने जश्न मनाने की पहली वजह हासिल कर ली है।
2: 2021 में भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली लवलीना बोरोगेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है, यानी एक मेडल तो कंफर्म्ड है। उनका सेमीफाइनल मुकाबला 31 जुलाई को टुवालू की तफाकी से होगा।
4: गुरुवार 23 जुलाई को भारत का अभियान लॉन बॉल से शुरू हुआ, वही खेल जिसने बर्मिंघम

0: 2022 में भारतीय खेल इतिहास को एक नई पहचान दी थी। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नेमोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की की चौकड़ी ने विमेन फोर्स में 2022 में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, तो वहीं पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया था।
1: इस बार लॉन बॉल्स में ये इवेंट नहीं है। 2026 में केवल सिंगल्स यानी एकल वर्ग और पेयर्स यानी युगल वर्ग को जगह मिली है। साथ के साथ इस बार बाहर नेचुरल ग्रास के बजाय ये खेल इंडोर्स यानी अरीना के अंदर कारपेट वाली घास पर खेला जाएगा। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। खिलाड़ियों ने एक हफ्ता पहले ही वेन्यू पर पहुंच जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी, और बता रहे हैं टीम के सदस्य नवनीत सिंह।
2: It's a different format that the Commonwealth Games hosted for this year in the 2026 Birmingham was a grass green and this Glasgow is indoor carpet. So we are going a few weeks ahead of the games in Britain for the same to practice on that. So definitely that's going to help us to get us a little better and give us advantage over the new format and play our best with the very high quality players in Glasgow.
0: उसका असर देखने को मिला। विमेन पेयर्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी की जोड़ी ने माल्टा को रोमांचक मुकाबले में हराकर जीत के साथ अभियान की शुरुआत कर दी है।
1: दोनों टीमों ने एक एक सेट जीता, जिसके बाद टाई ब्रेकर में भारतीय जोड़ी ने बाजी मारी। इनका अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल ने मौजूदा आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन कनाडा के रायन बेस्टर को हराया और अगले दौर में प्रवेश पा लिया। उनका अगला मुकाबला फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से शुक्रवार 24 जुलाई को होगा। पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय प्रशंसकों को एथलेटिक्स में हैं, जिसमें सबसे आगे नाम है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोट के चलते 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे, और पिछले साल हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ नीरज ने किसी इवेंट में टॉप 2 में फिनिश नहीं किया। लेकिन इस सीजन में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर दूर अपना भाला फेंक नीरज ने यह दिखाया कि जीत की भूख उनमें अभी भी बरकरार है।
3: नहीं, मैं काफी खुश हूं अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूं अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी।
1: हालांकि जैवलिन थ्रो में कॉम्पिटिशन भी उतना ही तीव्र है। नीरज के आर्च राइवल माने जाने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पिछले संस्करण में 90.18 मीटर की दूरी तय कर गोल्ड मेडल जीता था, जिसको बचाने के लिए वो मैदान पर उतरेंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे, जिनके नाम 92.62 मीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड है, वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को तो भूलिएगा मत, जिन्होंने 2022 में दोहा डायमंड लीग में 93.07 मीटर की दूरी तय कर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड स्थापित किया था।
0: दूसरा बड़ा नाम है मुरली श्रीशंकर। बर्मिंगम 2022 लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता था, लेकिन करियर थ्रेटनिंग इंजरी के चलते इन्हें 2024 का पेरिस ओलंपिक्स मिस करना पड़ा था। लेकिन मुरली श्रीशंकर ने चोट से उभर कर मजबूत वापसी की और अब ग्लासगो में दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है।
1: लॉन्ग जंप के अलावा हाई जंप में सर्वेश कुसारे ने हाल ही में 2.31 मीटर की ऊंची कूद लगा नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनसे भी पदक की उम्मीदें हैं।
0: साथ ही दिखेंगे तेजस्विन शंकर। हाई जंप में भारत का पहला मेडल 2022 बर्मिंगम में इन्होंने जिताया था,
1: और इस वर्ष ये डेकेथलॉन में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं ट्रिपल जंप में नजरें होंगी एक और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर पर, प्रवीण चित्रवेल, जो कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पर आए थे, यानी पदक जीतते जीतते रह गए थे। 2018 के खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में पहली बार इन पर नजरें गई थी, जिसके बाद एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ये पदक जीत चुके हैं। क्या इस बार कॉमनवेल्थ में भी ये पदक विजेता बनेंगे? वहीं 100 मीटर की दौड़ में नजरें होंगी 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मॉडर्न फ्लाइंग सिख गुरिंदर वीर सिंह पर।
0: नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स की बात चली है तो 200 मीटर में आप अनिमेश कुजूर को देखना मत भूलिएगा। महिलाओं में नजरें होंगी पारुल चौधरी पर। 2023 हांगचाओ एशियन गेम्स में इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ और 3000 मीटर मीटर की स्टीपल चेस में भी स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ये भारत का प्रति

0: प्रतिनिधित्व करती 3000 मीटर स्टेपल चेज में नजर आएंगी।
1: लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह पुरुषों की 10000 मीटर और 5000 मीटर वो दोनों इवेंट्स जिसमें वो मौजूदा एशियन चैंपियन हैं, अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
0: अब बात प्रियंका गोस्वामी की, पहली भारतीय महिला जिन्होंने रेस वॉक में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जितवाया था।
1: पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव मीना और कुलदीप कुमार पर भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होंगी।
0: शॉर्ट पुट में दो बार एशियन गेम्स चैंपियन बन चुके तजिंदर पाल तूर प्रबल दावेदारी पेश करते नजर आएंगे।
1: ये तो बात रही एथलेटिक्स की, अब रुख करते हैं बॉक्सिंग का।
0: मिडिल वेट कैटेगरी में लवलीना का मेडल तो सुनिश्चित है ही, पर फेदर वेट कैटेगरी में उम्मीदें जैस्मिन लंबोरिया से भी कुछ कम नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप दोनों में ही जैस्मिन के नाम गोल्ड मेडल है और 2023 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल है।
1: दो बार की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी भी 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।
0: पुरुषों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू कर रहे जादूमणि सिंह भारत का परचम लहराने का ख्वाब लिए रिंग में उतरेंगे। इस साल इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में रजत पदक जीता था और इस प्रदर्शन को दोहराने की पूरी कोशिश रहेगी।
1: पुरुषों की मुक्केबाजी में अंकुश नरेंद्र सचिन सुमित और कपिल पोखरिया से भी अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा है और बता रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह।
2: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे, उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
0: अब बात करते हैं स्विमिंग की। 2016 रियो ओलंपिक्स और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का स्विमिंग में प्रतिनिधित्व करने वाले साजन प्रकाश भी चुनौती पेश करते नजर आएंगे।
1: इनके अलावा नजरें होंगी श्री हरि नटराज पर, जिन्होंने 2019 में काठमांडू में हुए साउथ एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीते थे।
0: वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को कैसे भूल सकते हैं। कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में इन्हें भारतीय दल का ध्वजवाहक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
1: अब बात कर लेते हैं आज शुक्रवार 24 जुलाई को होने वाले इवेंट्स की। भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे द अरीना में पुरुषों के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड खेले जाएंगे, जिसमें तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह भारत की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आएंगे।
0: फिर दोपहर 3:40 पर शुरू होगा पैरा स्विमिंग मेंस S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल, जहां दिखेंगे रवि वीरा वेंकटा, भवानी कार्तिक और इमाम अली।
1: पुरुषों के 50 मीटर बैकस्ट्रोक में श्रीहरि नटराज के प्रदर्शन पर नजर रखिएगा।
0: पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों में मेडल इवेंट्स में अशोक और परमजीत कुमार नजर आएंगे।
1: तो वहीं महिलाओं में पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक लाने की उम्मीद होगी सुमन देवी और जसप्रीत कौर से। रात 10 बजे के करीब इसी इवेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। लॉन बॉल्स में आज जीत हासिल करने वाली पिंकी और रूपा रानी तिर्की की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लोहा लेती नजर आएगी। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से भिड़ेंगे। ये तो बात रही लाइट वेट कैटेगरी की। हैवी वेट कैटेगरी में महिलाओं में कस्तूरी राजमणि और पुरुषों में सुधीर और झंडू कुमार नजर आएंगे।
0: बॉक्सिंग में पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह स्कॉटलैंड के एरन किलन से मुकाबला करते नजर आएंगे रात 11 बजे।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 74 देशों और क्षेत्रों से लगभग 3000 खिलाड़ी 10 खेलों में 215 स्वर्ण पदकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ पदकों की गिनती होगी, वहां भारत अपने खिलाड़ियों के साहस, संकल्प और सपनों की कहानी भी लिखेगा। हर जीत तिरंगे का मान बढ़ाएगी, हर चुनौती नए विश्वास को जन्म देगी और जब खेलों का ये महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तब उम्मीद यही होगी कि दुनिया भारत की उपलब्धियों को याद रखे, तिरंगा सबसे ऊंचा लहराए और राष्ट्रगान की गूंज हर भारतीय के हृदय में गर्व का एक नया इतिहास लिख जाए। आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
0: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
3: जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे डेली हाइलाइट्स कॉमनवेल्थ गेम्स यानी दैनिक झलकियां कॉमनवेल्थ गेम्स की दर्पण टिरकिया और प्रेरणा शर्मा की आवाज में।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: कोयल सी तेरी बोली तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

और यही खूबसूरती होती है गीतों की, जो दिल को छू जाते हैं, है ना। और रोम रोम ये कहता है कि भाई वाह, लिखने वाले ने क्या लिखा है। इसीलिए तो सुबह सुबह अगर कुछ प्यारे प्यारे से दीदार हो जाए, खुशनुमा सुबह हो जाए और थोड़ा सा तसल्ली मिल जाए अच्छे विचारों के साथ, तो फिर दिन बन ही जाता है। चलिए, चूंकि बात सांसों की है, बात सुरों की है, तो एक शख्सियत ऐसी है जिसको हम मसीहा भी कहते हैं सुरों का, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। जी हाँ, नाम है उनका पंडित पन्नालाल घोष। कहते हैं कि इन्होंने लोकवाद्य को शास्त्रीय संगीत की पहचान बना दिया। कहते हैं ना कि जब सुर सांसों से मिलते हैं तो संगीत जन्म लेता है, और जब वही सांसें बांसुरी में उतरती है तो आत्मा तक पहुंचने वाली धुन बन जाती है। जी हाँ, भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में बांसुरी की मधुर धुन को एक नई पहचान देने वाले महान संगीतज्ञ पंडित पन्नालाल घोष जी की आज जयंती है, उनको शशत नमन करते हैं। पन्नालाल घोष को भारतीय शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। उस दौर में बांसुरी को मुख्य रूप से लोकवाद्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन पन्नालाल घोष जी ने अपनी साधना और प्रयोगों के जरिए इसे शास्त्रीय संगीत के मंच तक पहुंचा दिया। और उनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि यही थी कि उन्होंने बांसुरी को लोकवाद से शास्त्रीय वाद्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक अपना योगदान दिया। उनकी इस विरासत को आगे चलकर पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जैसे महान बांसुरी वादकों ने और लोकप्रिय बना दिया। कहते हैं ना कि किसी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उसके पुरस्कार नहीं होते, बल्कि वो विरासत होती है जो उसके जाने के बाद भी पीढ़ियों तक जीवित रहती है। पंडित पन्नालाल घोष की बांसुरी ऐसी ही अमर विरासत है, और आज उनकी जयंती है, उनको शत शत नमन करते हैं। 20 अप्रैल 1960 को नई दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली और वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी साधना, उनकी धुनें और भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनका योगदान आज भी संगीत प्रेमियों के बीच जीवित है। पंडित पन्नालाल घोष जी एक ऐसा नाम जिसने बांसुरी को सिर्फ बजाया ही नहीं, बल्कि उसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा का हिस्सा बना दिया।

एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर कल मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद किए गए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा टेट के निकट डॉ APG अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। भारत ने 350 किलो के थ्रस्ट श्रेणी में अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेल का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया और भारत ने पहले T20 क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे के 7 विकेट से हरा दिया है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

सोनू शेयर की आवाज़ में आपने सुना ये ट्रैक ट्रॉनिंग जेली एनसीआर में, और मैं हूँ आपके साथ रेणु भट्ट, और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। ढेर सारी बातें जो रविंद्र ने आपके साथ शेयर की, ढेर सारी बातें मेरे पास हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आपके साथ साझा करूँगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमें मेल ज़रूर करें, क्या बात सोचते हैं आप, क्या फीडबैक देना चाहते हैं आप, अपनी बातें हम तक ज़रूर ज़रूर पहुँचाएँ। आपको करना मेल feedback@fmrainbow.com पर, feedback@fmrainbow.com पर आपको हमें मेल करना है, बताना है कि क्या बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, दिल से कहना चाहते हैं।

सुध-बुध और होश तब भी उड़ जाते हैं जब कोई ऐसी सुंदर कलाकारी हम देखते हैं जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं होती है। कुछ ऐसी सुंदर सी चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो हमारे होश अपने आप ही उड़ जाते हैं और हम उस चीज़ की सुंदरता को देखते रहते हैं। अच्छा, ऐसा होता होगा ना, अगर आपको इसी फीलिंग को लेना है ना कि जब आपके सामने सारी चीज़ें बहुत सुंदर और आप सोचें कि यार इतनी सुंदर चीज़ें हमारे सामने, तो अब आपके लिए ना एक जगह मैं बताती हूँ। आप जा सकते हैं जनपद स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में, जहाँ पर आज से 7 अगस्त तक वीव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल आयोजित होने वाला है और हो रहा है। तो आप जाएंगे सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक, इस प्रदर्शनी का आप आनंद ले सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे देश भर के पारंपरिक हथकरघों के उत्पाद। इन सभी उत्पादों को आप देखें, इन सभी चीज़ों को आप देखें, निहारें और जितने भी कलाकार वहाँ पर होंगे आप उनके कलाकारी का लुत्फ लें और उनकी हौसला अफजाई करें। क्योंकि जब कोई कलाकार अपने सामने अपनी चीज़ों की तारीफ देखता है ना, सुनता है, देखता है, तो उसे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर जाएं वीव्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल पर आज से 7 अगस्त तक। याद रखें समय जो है सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक है जो आप वहाँ पर जा सकते हैं। जाएँ और जितने भी हाथों से बने हुए उत्पाद हैं, चीज़ें हैं, उनका आनंद लें।

वेल बबली से इस तरह की उम्मीद नहीं थी, है ना। चलिए अब मैं आपको बता देती एक बहुत जरूरी बात। अगर आप उत्तरी दिल्ली में रहते हैं तो स्वामी नारायण मार्ग, नंदलाल मार्ग, रेड लाइट से शास्त्री नगर रेड लाइट तक यातायात जो है प्रभावित है। वहाँ पर आप अगर वहाँ पर से जाते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा, और नहीं जाते हैं या फिर जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर सीमेंटेड रोड निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस वजह से 3 अगस्त तक ये स्ट्रेच पूरी तरह से बंद रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप जाने वाले हैं या वहाँ पर से गुजरने का सोच रहे हैं तो आप उसका ऑल्टरनेटिव रास्ता लेकर ज़रूर जाएं, ताकि आपको वहाँ पर ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े या लास्ट मोमेंट आपको अपना रास्ता बदलना ना पड़े। समय अपने साथ लेकर निकलें, आप निकल रहे हैं तो, और ऑल्टरनेटिव रास्ते भी आप ढूंढ कर ही चलें। और आपको क्या काम करना है, आपको बस एक काम करना है, आपको हमारे साथ यूं ही बने रहना है।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी

0: हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग जर्नी एनसीआर आकाशवाणी के फ्रॉम रेनबो चैनल पर रेणु भट्ट के साथ। आप सभी का एक बार फिर से ढेर सारा वेलकम है। और कैसे हैं आप? आई जस्ट होप आप बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। और इस टाइम पे जब इतना ज़्यादा ह्यूमिड हो तो अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे पता है कि आप हमसे ना कई तरीके से जुड़े हुए हैं। आप ऐप के थ्रू हमें सुन पा रहे हैं, आप फ्रिक्वेंसी पे हमारे साथ हैं, आप ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें, हम यही चाहते हैं। मैसेजेस आपके आते रहते हैं, हम चाहते हैं आप मेल भी हमें भेजें। मेल भेजने का तरीका मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@fmrainbow@gmail.com।

gmail.com feedback@fmrainbow@gmail.com पर आपको हमें मेल करना है और बताना है अपने दिल की बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। तो बिंदास मेल कीजिए, बिंदास आप मैसेजेस भी कर सकते हैं। आपके किसी भी माध्यम को जो भी आप ले रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

में तो अभी हम दिल्ली वालों को भी है कि कब बारिश होगी अच्छे से, मतलब दो चार दिन हम अच्छे से बारिश, दिल्ली हमारी भीग जाए, छमाझम बारिशों का दौर शुरू हो जाए। अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी करंट टेम्परेचर हम नजर डालें तो 29 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पूरा दिन आपको आसमान पे बादल छाए हुए नजर आएंगे और आप ये वेदर इन्जॉय भी करेंगे। और अगर बारिश की बात करें तो थोड़ी बहुत बारिश आज हो सकती है, कल भी थोड़ी बहुत बारिश होने के चांसेस हैं। और बादल और सूरज का जो खेल है ना, वो आपको आगे आने वाले दिनों में नज़र आने वाला है। थोड़ी थोड़ी बारिश है लेकिन बहुत ही झूम के बारिश होने वाली या बहुत ज़्यादा बारिश के चांसेस आगे आने वाले दिनों में अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे आप बारिश ज़रूर एंजॉय करेंगे। कहाँ कहाँ कर रहे हैं आप हमें बता सकते हैं, आप जो भी बात हमसे शेयर करना चाहते हैं ना आप बिंदास कर सकते हैं, कोई भी बात करें आप मैसेजेस करते हैं, ईमेल करें और बारिश का लुत्फ लें अगर आपके इलाके में आपकी जगह पर बारिश हो रही है या होने वाली है तो।

शरारत छेड़खानी से दिल में गुदगुदी नहीं होती। हो सकता है कि आपका बैंक बैलेंस भी खाली हो जाए। हाँ, हो सकता है। अब ये बात जो सुन रहे हैं ना, हो सकता है आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हो गया हो कि आप बात कर रहे हो, आप मैसेजेस कर रहे हो और आपको पता भी ना चले आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया। इसे कहते हैं साइबर फ्रॉड, जो हम अपने आसपास बहुत यूजफुल हो गया जो देख रहे हैं। आप देखेंगे सबके पास कोई ना कोई, या सबके पास नहीं तो हर दूसरे इंसान के पास तो ज़रूर ऐसी कोई ना स्टोरी होगी जिसमें वो ये आपके साथ शेयर करेगा कि किस तरह से उसके साथ फ्रॉड हुआ या होते होते बचा, क्योंकि आप अलर्ट थे। आप अलर्ट थे तो आप बच गए, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति ना चाहते हुए ना उस ट्रैप में फंस जाता है। आपको कोई कॉल आई, आपको कोई मैसेज आया, आपने उस लिंक पर क्लिक किया और बस इतना ही बहुत है। तो बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है जब हम अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम इंटरनेट की दुनिया में हैं, इस आभासी दुनिया में जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगती तो हमें बहुत अच्छी हैं, एकदम रियल जैसी, लेकिन वो होती नहीं है। यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी है कि हर सामने आने वाली चीज़, वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो जितने भी चीज़ें हमारे सामने आ रही है तो आपको बहुत ठोक बजा कर उसे देखना है, इस्तेमाल करना है। आपको कोई कॉल आ रही है, आपको बार बार बताया जाता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है आपको व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेगा। तो इस बात को लेकर तो आप निश्चिंत हो जाएं कि ऐसा कोई भी कॉल है आपको जो फ़ोन पर नहीं आने वाला है वीडियो कॉल के थ्रू, ठीक है। और अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज आता है या आपको कॉल आती है कि आपकी कोई चीज़ यहाँ पे फंसी हुई है, अगर नहीं है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। हड़बड़ाहट में कोई भी काम आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने धैर्य का इस्तेमाल करना, 2 मिनट के लिए थमना, पॉज देना, उस चीज़ पर सोचना, फिर रिएक्शन देना। क्विक कोई आपको फ़ोन पे बोलता है कि ऐसा ऐसा कर दो तो वैसे वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। कभी ऐसा भी होता है ना कि आपके दोस्त के नाम से आपको मैसेजेस आते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। एक बार कॉल करके पूछ लीजिए क्या सच में ऐसा है या नहीं है। तो आपकी हमारी जिम्मेदारी बहुत है। हमारे सामने जो चीज़ आ रही है पहले उसे हमें क्रॉस चेक करना है कि चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं, ऐसा असल में है या नहीं है, या फिर हम ट्रैप में फंस रहे हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: वेलकम बैक, आप सुन रहे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। और अब हम आपको बता दें कि अगर आपको निगम से जुड़े हुई कोई भी समस्या है, कोई शिकायत है, आप उसे दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप इनके ऐप यानी कि निगम ऐप 311 पर प्रदूषण से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत कर सकते हैं। ना केवल प्रदूषण से जुड़ी हुई बल्कि कोई भी निगम से जुड़ी कोई अगर आपको नागरिक कार्यों से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इसमें ऐप यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी ग्रीवियंस में जा करके ग्रीवियंसेस दे सकते हैं। और हम आपको एक और बात बता दें कि अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो इनका हेल्पलाइन नंबर भी है, जो है 1553055, ये नंबर है निगम हेल्पलाइन का। और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है अपने आसपास निगम से संबंधित नागरिक समस्याएं, तो आप इन्हें ज़रूर बताएं।

बनारस का फील लेकर आए थे श्रेया घोषाल और मूवी रही रांचना, और अपने टाइम की सुपर डुपर हिट फिल्म रही और आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। अब मेरे जाने का समय हो गया, मैं रेणु भट्ट आप सभी से इजाज़त लूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आगे आप कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं। अब से बस कुछ ही देर बाद दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर आने वाले हैं रविंद्र सिंह। समय रहेगा 9:02 और उसके बाद यानी कि 10:02 पर आप सुनेंगे बसिन म्यूजिक का प्रोग्राम मास्टर।

म्यूजिकार अदिति रहेंगे आपके साथ। बॉलीवुड रिल्स लेकर आने वाले हैं निखिल वर्मा। समय रहेगा 11:02 और ये 2 मिनट का जो समय है ना वो हम आप सभी को अपडेट रखने के लिए न्यूज लेकर आते हैं। न्यूज हेडलाइंस भी आप हमारे साथ सुनते रहे, हमारे साथ बने रहे 24/7 साल के 365 दिन। हम यही चाहते हैं और अपनी बातें आप हमसे शेयर करते रहे। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। मैं रेणु भट्ट लेती हूँ आप सभी से इजाजत। बहुत जल्द फिर मिलूंगी आपसे ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे बेहतरीन नगमों के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्यक्रम है दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर आ गए जी हम, आपके दोस्त रविंदर सिंह। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं प्यारे से गीत के साथ। लेकिन गीत से पहले क्या कुछ चल रहा है ये तो समझ लेते हैं। लेकिन इशारों इशारों में दिल देने वाले, पुराने पुराने गीत भी बजेंगे, यानी समझ रहे हैं ना, संगम होगा नए और पुराने गीतों का। बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है हमारे साथ।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
2: तो प्रोग्राम चल रहा है दिल की तरह गाने नए पुराने, और यहाँ पर अब बात है पुराने गीत की। तो चलिए एक प्यारा सा गीत मुकेश की आवाज में सुन लेते हैं।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार

0: 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: Welcome back to Matchless Music Hour on 102.6 FM Rainbow, and time at the studio clock is exactly 10:40. And before I move ahead, I just want to say a big hello to Rajkumar ji and Dolly, who've tuned in and sending in such lovely messages. Thank you so much that you're enjoying the show. And one more person, now you've given your name, Hitendra from Assam. Hello, and thank you so much for tuning in. All right. You just came back from a break, so I'm not going to waste any more time in giving you your next song, which is Smooth Operator by Sade.

0: सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: Welcome back to Matchless Music Hour on 102.6 FM Rainbow. Well, before the break, you heard O Ghata Savri from the film Abhinetri. Now, we're inching closer to the end. But before that, if you're celebrating your birthday today, a very happy birthday to you. You are in wonderful company indeed. Aviation pioneer Amelia Earhart, legendary author Alexander Dumas, they all celebrate their birthday today, along with the global music icon Jennifer Lopez. And you, all of you, share your birthdays. Wish all of you a lot of happiness. Now, here is one of the songs that has quietly found a place on playlists across generations, which is Eternal Flame by the Bangles. Here it comes.

नमस्कार, प्रस्तुत है आकाशवाणी पर इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर कल मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। भारत ने 350 किलो के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बंद है। उत्तरी रेलवे ने फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कल श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक विशेष ट्रेन चलाई। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेल का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा। एक बार फिर से आ गया हूँ रेनबो की इन सतरंगी पटरियों पर अपनी अतरंगी यारी के साथ म्यूजिक मस्ती और बॉलीवुड की गलियारों की खबरें लेकर। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। और बहुत सारी बातें हैं, न्यू रिलीजेस के बारे में बात करेंगे, रिलीज हुई मूवीज क्या कुछ कर रही हैं बॉक्स ऑफिस पर और क्या क्या खबरें हैं उन बॉलीवुड की गलियारों की, सारी गॉसिप्स लेकर आया हूँ मैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना हमारे साथ, सुनते रहना है हमारा प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। और शो का आगाज हमेशा की तरह एक प्यारे से गाने के साथ।

देखिए झूठ बात है, इसमें कुछ नहीं है। आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे सगा हैं, आप ही हमारे दोस्त हैं, और आप के लिए हम हमेशा रहते हैं 24/7। प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और हम कर रहे हैं बातें बॉलीवुड की गलियारों की। तो भाई आज जिस चीज़ का सबसे बेसब्री से इंतज़ार था वो फिर से एक बार हताश कर गई हमें। मैं बात कर रहा हूँ रामायण मूवी के ट्रेलर की। जी हाँ, आज फ्राइडे यानी 24 जुलाई को ये ट्रेलर रिलीज होना था, लेकिन इसके डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने थोड़ी देर पहले, अब से कुछ ही देर पहले, ये अपना सोशल मीडिया हैंडल पर खबर डाली कि वो इस ट्रेलर को ग्लोबली रिलीज करेंगे, केवल सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली इसको रिलीज करेंगे थोड़े दिनों बाद। अभी उन्होंने डेट भी नहीं बताई, बट इसके लिए बिकॉज सबको लग रहा था कि ये रामायण का मतलब बहुत ही मेगा मूवी, इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार ऑलरेडी हो चुका था, इतनी बड़ी स्टार कास्ट एंड एवरीबडी इज देयर, जिसका भी आप नाम लो, जो भी एक्टर आप सोचो वो उस मूवी में है। और ये पिछले हफ्ते अनाउंस किया गया था कि भाई ये सैन डिएगो कॉमिक कॉन जा रहे हैं और यहाँ पे इसका प्रीमियर रखा हुआ था स्पेशल ट्रेलर का एंड एवरीथिंग। सो बड़ी बड़ी खबरें थी कि भाई ठीक है, 24 तारीख को ये ट्रेलर इंडिया में रिलीज होने वाला है, जब ये इसका जो प्रीमियर है ये सैन डिएगो में हो जाएगा, जो कि आज रात यानी जो बीत गई है रात उसमें होना था। बट आज सुबह ही जैसे ही हम सब आप हम बिल्कुल एक गियर अप थे कि आज भाई रिलीज देखेंगे, तो नीतीश तिवारी जी जो कि इसके डायरेक्टर है उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब कुछ दिनों बाद देखेंगे बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक इट ग्लोबल। जी हाँ, बिल्कुल ग्लोबल मूवी होने वाली है, और अब इंतजार रहेगा कि कब ये मूवी का ट्रेलर आएगा। हालांकि मूवी की जो रिलीज डेट है वो बताई गई है कि दिवाली के अराउंड, दिवाली 2026 में ये मूवी रिलीज होने वाली है, एंड आई होप उसमें कोई डिले ना हो। लेकिन ट्रेलर का जो बेसब्री से इंतजार है वो अभी भी बना रहेगा, और वो ट्रेलर कब आएगा वो हम आपको बताएंगे इसी शो में जिसका नाम है बॉलीवुड ट्रेलर्स।

फिर से उड़ चला, और जो फिर से उड़ चली और फिर से जिसने धमाल मचा दिया है वो है धमाल 4 मूवी। जी हाँ, जो हाल ही में रिलीज हुई धमाल 4 मूवी जो है ना, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। और अभी तक जो उसका कलेक्शन है वो 132 करोड़ पर पहुंच गया है वर्ल्ड वाइड, और दर्शकों को अभी भी सिनेमाघरों में वो अपनी तरफ खींच रही है। भाई ये धमाल मूवी की सीरीज़ की 4th एडिशन है और बहुत ही यू नो इंटरेस्टिंग मूवी हमेशा की तरह। यू नो कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जैसे धमाल है, हाउसफुल है और गोलमाल है, ये तीन मूवीज़ ऐसी हैं जिनकी जितनी बार भी मूवीज़ का पार्ट आया, कोई भी नया एडिशन आया है, एकदम बेहतरीन हुआ है और हमेशा से दर्शकों को अपनी ओर खींचा है उसने। सो अब देखना यह है कि ये मूवी किस आंकड़े तक जाएगी, और जो नई मूवीज रिलीज हो रही हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे, तो क्या वो नई मूवीज इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दे पाएगी या नहीं। आइए सुनते हैं धमाल 4 मूवी से ये वाला गाना जो कि मेरा फेवरेट है, और फिर इसके बाद पूछा जाएगा आपसे बॉलीवुड सरताज का क्वेश्चन भी।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा। प्रोग्राम का नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसमें हम सुना रहे हैं आपको बहुत ही प्यारे गाने और साथ ही कर रहे हैं बॉलीवुड की गलियारों की सारी बातें। और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं आपको न्यू रिलीजेस के बारे में भी बताऊंगा जो कि टक्कर दे सकती है ऑलरेडी सक्सेसफुल मूवीज को, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचा रही है। तो उसी में एक मूवी है जो आ रही है, जो रिलीज हो चुकी है एक्चुअली आज, जिसका नाम है रफ्तार, जिसमें राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश आपको नजर आएंगे। फिल्म के अगर बारे में बात करूं तो फिल्म में एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी लड़का है और उतनी ही महत्वाकांक्षी लड़की की स्टोरी है। बेसिकली उनके इर्द गिर्द घूमती है, जो कि सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं और इस अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। ये कहानी बेसिकली दर्शाती ये है कि कैसे बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षाओं और पैसों और सत्ता की जो भूख होती है वो इंसान को रिश्तों, प्यार और ईमानदारी से प्रभावित जरूर करती है, तो सही गलत का फर्क भी मिटा देती है। क्या होता है इस मूवी में, क्या होगा, इसका म्यूजिक कैसा है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। और अगर आपको ये मूवी का जो प्लॉट है वो अच्छा लग रहा है तो आप भी इस मूवी को जरूर देखिएगा एंड जस्ट टेल अस कि आपको कैसी लगी। बॉलीवुड ट्रेलर्स आपके लिए हम लेकर आते हैं जिसमें सारी मूवीज के बारे में हम बात करते हैं, तो आप भी हम तक ये बात पहुंचा सकते हैं, है ना। और आप हम तक एक चीज और पहुंचा सकते हैं, वो है अपना आंसर। भाई आपको बॉलीवुड सरताज भी तो बनना है ना, तो आज का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है और आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। आज के बॉलीवुड सरताज का जो हमारा सवाल है उसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आने वाली मेगा मूवी रामायणा के डायरेक्टर कौन है।

जी हाँ, बहुत सिंपल सा सवाल है। डायरेक्टर कौन है रामायणा मूवी की, जो कि दिवाली 2026 में रिलीज होने वाली है? अपने जवाब हम तक भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070, 9868107070 पर अपने जवाब भेज दीजिए। और जो भी हमारे बॉलीवुड सरताज होगा उनसे मैं बात जरूर करूंगा। फिलहाल आपको सुनाता हूँ एक बहुत ही प्यारा गाना।

और हमसे भी आप मिले हैं, तो आपको हम ऐसे ही नहीं रहने देंगे। हम आपको म्यूजिक, एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट का जो पूरा खजाना है ना हमारा, वो हम आपके पास लेकर आएंगे, और आते भी है 24x7 365 डेज राउंड द क्लॉक। और अब बात करते हैं एक और मूवी की जो आज रिलीज हो रही है। वो मूवी है दुल्हनिया ले आएगी, जिसमें खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के बारे में बताऊं तो इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक बिंदास और इंडिपेंडेंट लड़की अपनी परिवार की इच्छा पूरी करने के लिए अपना खुद का दूल्हा ढूंढने खुद निकल जाती है। और अब कहानी में कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है और ग्रैंड वेडिंग भी है। तो भाई इस मूवी का प्लॉट मैंने आपको बता दिया। अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड वॉच, और हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आज एक बहुत जो इम्पोर्टेंट मूवी है, जिसके बारे में बहुत दिनों से चर्चाएं भी चल रही थी कि ये मूवी की रिलीज डेट भी आगे पीछे होती रही है, तो वो भी फाइनली आज रिलीज हो रही है। और इस मूवी का नाम है द इंडिया स्टोरी, जिसमें आपको श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल दिखाई देंगी। बेसिकली बात करूँ इस मूवी की, तो इस मूवी में श्रेयस तलपड़े जो है वो एक ऐसे फादर की भूमिका बेसिकली निभा रहे हैं, जो अपने जो उनकी डॉटर होती है उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत इस मूवी में दिखाई गई है, जिसके बाद वो सिस्टम से और बड़ी बड़ी कंपनियों से लड़ते हैं, उनके साथ जंग छेड़ देते हैं। और इसमें आपको वकील के किरदार में नजर आएंगी काजल अग्रवाल, जो कि इस लड़ाई में उनको न्याय दिलाने का काम करती है, उस पिता का साथ देती है। तो फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में जो माफिया है या फिर जो भी यू नो करप्शन दिखाया गया है इस मूवी में, तो उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और लेट्स सी कैसी ये मूवी होगी। फिलहाल ये तीन मूवीज जो इस आज रिलीज हो रही हैं, रफ्तार, द इंडिया स्टोरी और दुल्हनिया ले आएंगी, क्या ये धमाल को टक्कर दे पाएगी और इसमें से कौन सी मूवी अलग ही शाइन करके अलग से नजर आएंगी, ये भी आपको पता चलेगा हमारे प्रोग्राम में ही। बाकी तो यू नो आपके लिए खबरें, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट जारी रहेगा। आपको सुनाऊंगा एक प्यारा सा गाना, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बार फिर से बॉलीवुड सरताज क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। आपको हमें बताना है कि रामायण मूवी के डायरेक्टर कौन है। 9868107070 पर अपने जवाब हम तक भेज दीजिए।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के,
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: do.
1: That was Harry Styles with Adore You. And we were just talking about concerts. You know, I found out, I read online that a study says that people who attend concerts are happy people. I don't know about concerts, but one thing I know for sure, people who listen to Akashwani are definitely happy people. So stay tuned, don't go anywhere. I'll be back after a very short break.
2: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
4: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात रेनबो की सौगात हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ऑलवेज वेयर एवर यू आर 102.6 आपके लिए

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: Welcome back to Play It Cool on 102.6 FM Rainbow. Some new messages are coming in. Hello, Samir Sefi, you have also sent in your hi. And hello, Mr. Shivam Kumar from Patna. Thank you for tuning in. Thank you for letting us know that you are with us, that you're listening to music. And I said we would play one request, and we have one. I'm going to play this one by David Guetta. This is K-pop featuring David Guetta. The song is called Golden, and here it comes.

प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है। मेघवाल ने कहा है कि अदालतों में इन मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी। संसद में नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक स्थगित। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय के ने सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोस ओर्डेन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बंद है। फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कल श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक विशेष ट्रेन चलाई। शतरंज में 5 बार से विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेल का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: की वाणी आकाशवाणी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: और अब वक्त हो गया है कैंसर अवेयरनेस पर प्रायोजित कार्यक्रम का।
4: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर

0: नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
1: नमस्कार, मुस्कान जिंदगी की पहचान है, इसका ख्याल रखना हम सबकी शान है। हमारी मुस्कान सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य का आईना भी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसे समय रहते पहचाना जाए तो हराया जा सकता है, ओरल कैंसर। नशे की आदत पल भर का सुख दे जाए पर जीवन भर का दर्द भी साथ में लेकर आए। मैं हूं मीनाक्षी चड्डा, डायरेक्टर जागृति इंडियन कैंसर सोसाइटी से। यहां मैं एक वॉलंटियर के रूप में कार्य करती हूं। आज की वार्ता भी इंडियन कैंसर सोसाइटी के सौजन्य से हो रही है। सुगंधित सुनहरी किरणों की तरह आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, खुशियां और मुस्कानें सदा खिलती रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आज की इस वार्ता में। कहा जाता है कि मुस्कान इंसान का सबसे सुंदर आभूषण होती है। ये केवल चेहरे की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि आत्मविश्वास, प्रेम और सकारात्मकता का भी प्रतीक है। लेकिन जब यही मुस्कान किसी गंभीर बीमारी की छाया में आ जाए तब जीवन की रंगत फीकी पड़ सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो भारत सहित पूरे विश्व में लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है, ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर। ये बीमारी धीरे धीरे विकसित होती है, अक्सर शुरुआती संकेत देती है लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। परिणाम स्वरूप रोग गंभीर अवस्था तक पहुंच जाता है। तो आइए अगले कुछ समय में हम विस्तार से समझते हैं कि ओरल कैंसर क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण कैसे पहचाने, बचाव कैसे करें और समय पर जांच का क्या महत्व है। ओरल कैंसर सिर और गर्दन के कैंसर्स में सबसे सामान्य प्रकारों में से ये एक है। ये मुंह के विभिन्न भागों में हो सकता है, जैसे जीभ, गालों की भीतरी सतह, होंठ, मसूड़े, तालू, मुंह का निचला भाग, गले का शुरुआती हिस्सा। जब इन स्थानों की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, तब कैंसर विकसित होता है। भारत में ओरल कैंसर विशेष चिंता का विषय है क्योंकि यहाँ तंबाकू और सुपारी के सेवन की दर अपेक्षाकृत अधिक है। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ ओरल कैंसर के मरीजों की संख्या काफी अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार

उपयोग तंबाकू ओरल कैंसर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गुटखा, जर्दा, पान में तंबाकू, चाहे सूंघने वाला हो या पीने वाला हो या फिर खाने वाला हो, तंबाकू ही कैंसर की जड़ है। इसमें मौजूद रसायन मुंह की कोशिकाओं को लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं सुपारी और पान मसाला की। कई लोग ये मानते हैं कि सुपारी नुकसान नहीं करती, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के अनुसार सुपारी स्वयं में ही कैंसर का महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। लगातार सुपारी चबाने से या देर तक मुंह में किसी भी जगह पर लगातार रखे रहने से मुंह का खुलना कम हो जाता है, गालों में जकड़न आ जाती है, प्री कैंसरस कंडीशन विकसित हो जाती है। शराब की बात करें तो अत्यधिक शराब का सेवन भी ओरल कैंसर का जोखिम बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति तंबाकू और शराब दोनों का सेवन करता है तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कुछ केसेस में खराब मौखिक स्वच्छता, जैसे कि दांतों की खराब स्थिति, टूटे हुए दांतों से लगातार घर्षण और मुंह की साफ सफाई में लापरवाही भी जोखिम बढ़ा सकती है। कुछ मामलों में तो HPV संक्रमण यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस संक्रमण भी कारण हो सकता है। कभी कभी तो पोषण की कमी भी जोखिम का कारण बन जाती है। फल और हरी सब्जियों की कमी से शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता घट सकती है, जिससे कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि ओरल कैंसर के शुरुआती लक्षणों का पता होना जरूरी है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में पहचान होने पर उपचार की सफलता बहुत बढ़ जाती है और वित्तीय बोझ वो तो कम हो ही जाता है, तकलीफें भी कम हो जाती हैं, पढ़ाई या व्यवसाय पर भी अधिक असर नहीं पड़ता, क्योंकि जल्दी ठीक होने पर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या पर जल्दी ही पहुंच जाते हैं। यहां मैं ये बताना चाहूंगी कि यदि निम्न लक्षणों में से कोई भी लक्षण 2 सप्ताह से अधिक बने रहें तो शीघ्र डॉक्टर से संपर्क करें। पहले, मुंह में ना भरने वाला घाव। यदि मुंह का कोई घाव लगातार बना रहे और ठीक ही ना हो। दूसरा, सफेद या लाल धब्बे। सफेद धब्बे, लाल धब्बे या मिक्स्ड धब्बे हों तो ये कैंसर से पूर्व के परिवर्तन का संकेत हो सकते हैं। तीसरा है गांठ या सूजन। मुंह, जीभ, गालों में अंदर की तरफ, मसूड़ों पर, तालू पर या गर्दन में गांठ महसूस हो। चौथा है दर्द या जलन। मुंह में ऊपर बताए गए हिस्सों में लगातार दर्द या जलन रहे तो भी। पांचवा है निगलने में कठिनाई। खाना खाने में या पानी या कुछ और भी पीने में निगलते समय लगातार परेशानी बनी रहे। कभी कभी तो अपना सलाइवा निगलने में भी तकलीफ होती है। छठा, आवाज में बदलाव। बिना किसी कारण आवाज में बदलाव आ जाए और लगातार बना रहे, या आवाज बैठ जाए और ठीक ही ना होने पाए। सातवां है दांतों का ढीला होना। बिना स्पष्ट कारण दांतों का ढीला होकर हिलने लगना और मुंह के किसी भी भाग में घर्षण पैदा करना। कैंसर पूर्व की कुछ अवस्थाएं हैं जिनके बारे में मैं यहाँ जिक्र करती हूँ। पहला है ल्यूकोप्लेकिया यानी कि मुंह में सफेद धब्बे। दूसरा है इरिथ्रोप्लेकिया यानी कि मुंह में लाल धब्बे। तीसरा है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये मुख्यतः सुपारी खाने वालों में होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। डायग्नोसिस की बात करते हैं, यानी जांच कैसे होती है। यदि डॉक्टर को एग्जामिनेशन में कुछ संदेह लगे तो निम्न जांच की जा सकती है। पहला है केमिकल जांच यानी मुंह का प्रत्यक्ष परीक्षण। दूसरा है बायोप्सी। ये सबसे महत्वपूर्ण जांच है। यहाँ संदिग्ध ऊतक यानी टिश्यू का छोटा नमूना लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। तीसरा है इमेजिंग जांच। इसमें CT स्कैन, MRI
या पेट स्कैन किया जा सकता है।

0: ये रोग की सीमा जानने में सहायता करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रश्न आता है कि क्या ओरल कैंसर का इलाज संभव है? तो मैं ये कहूंगी कि जी हाँ, बिल्कुल इलाज संभव है, विशेषकर यदि समय पर पहचान हो जाए। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है सर्जरी। ये सबसे सामान्य उपचार है। यहाँ कैंसर युक्त भाग को निकालकर मुंह से बाहर कर दिया जाता है। दूसरा है रेडियोथेरेपी। उच्च ऊर्जा किरणों द्वारा कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है। फिर है कीमोथेरेपी। इसमें दवाओं के माध्यम से कैंसर सेल्स पर हमला किया जाता है। टारगेटेड थेरेपी, विशेष प्रकार की दवाएं कैंसर को कोशिकाओं को लक्षित करती हैं और फिर नष्ट कर देती हैं। इम्यूनो थेरेपी, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने में सहायता दी जाती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बाद पुनर्वास की। कई मरीजों को उपचार के बाद कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बोलने में कठिनाई, चबाने में परेशानी, निगलने में समस्या होना। तो ऐसे में स्पीच थेरेपी, पोषण परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहयोग दिया जाता है और ये ही नॉर्मल कंडीशन लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोताओं, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। सजग रहें, सतर्क रहें, यही है सच्चा ज्ञान। समय पर जांच और सही उपचार, यही है जीवन का सम्मान। ओरल कैंसर का बड़ा हिस्सा रोका जा सकता है, तो ऐसे में क्या करें? तंबाकू बिल्कुल छोड़ दें, गुटखा और पान मसाला त्याग दें, सुपारी का सेवन बंद करें, शराब का सीमित या शून्य उपयोग करें, प्रतिदिन दांत साफ करें, समय समय पर डेंटल जांच कराएं, फल और हरी सब्जियां अधिक खाएं और मुंह के घावों को नजरअंदाज ना करें। तो अब बात करते हैं कि स्वयं जांच कैसे करें। महीने में एक या दो बार मिरर के सामने खड़े होकर देखें कि आपके मुंह के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की कोई गांठ, सूजन, घाव या धब्बा तो नहीं। यदि कुछ भी दिखाई दे और 2 सप्ताह में ठीक ना हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ये एक छोटी सी आदत जीवन बचा सकती है। समाज की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? ओरल कैंसर के खिलाफ लड़ाई केवल डॉक्टर्स की नहीं है। सब परिवार जागरूक बने, जागरूकता फैलाएं, युवा तंबाकू से दूर रहें, कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य शिक्षा हो, एंटी टबैको एंटी स्मोकिंग लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनका पालन करें। जब समाज जागरूक होगा तब इस बीमारी का बोझ कम होगा। याद रखिए, कैंसर का नाम सुनते ही डरना नहीं चाहिए। आज चिकित्सा विज्ञान में अत्यंत प्रगति कर ली है। समय पर पहचान, समय पर उपचार और सकारात्मक सोच, इन तीनों के साथ अनेक मरीज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जीवन एक सुंदर उपवन की तरह है। इस उपवन में स्वास्थ्य वह निर्मल जल है जो हर फूल को खिलाए रखता है। यदि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, बुरी आदतों से दूरी बनाए रखें और समय समय पर जांच करवाते रहें तो अनेक गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपके जीवन का हर दिन फूलों की सुगंध, आस की रोशनी और मुस्कान की मिठास से महकता रहे। तो यहां मैं कहना चाहूंगी, तंबाकू से दूरी, सेहत से यारी, यही है खुशहाल जीवन की सबसे अच्छी तैयारी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपने और अपने परिवार की मुस्कान सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: हेलो हेलो हेलो, आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना म्यूजिकल हम सफर आरजे निखिल वर्मा, लेकर आ गया हूँ आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है मेरे वाला सॉन्ग। भाई नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि आपके वाला सॉन्ग हम प्ले करेंगे शो में। तो भेज दीजिए अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट 9868107070 पर, 9868107070 पर अपनी रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं, अपना नाम और कहाँ से भेज रहे हैं। सॉन्ग्स भी अगर आप हमें ऑप्शंस दे लेंगे, यू नो मतलब आप एक सॉन्ग पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करते हैं, आई नो वो आपका फेवरेट है, बट एक दो ऑप्शंस देंगे तो बढ़िया रहेगा ना। तो आई विल ट्राई टू, मतलब उसमें क्या होता है ना कि अगर आप और एक ऑप्शंस देंगे और किसी से वो रिक्वेस्ट मेल खाती हो, यू नो, तो दो लोगों के लिए वो सॉन्ग एक ही काम कर जाएगा ना। तो बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं बिना वक्त गवाए उन मैसेजेस की तरफ रुख करूंगा, लेकिन चलो पहले एक मैसेज भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगा और फिर आपकी रिक्वेस्ट भी प्ले करेंगे। बहुत सारा काम है लेकिन बिना वक्त गवाए फटाफट से हम देखते हैं मैसेजेस की तरफ। तो मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि सॉन्ग रिक्वेस्ट तो जब मैं प्ले करूंगा तभी बताऊंगा। शिवम भेज रहे हैं मैसेज पटना बिहार से और वो पहली बार प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच शिवम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये कह रहे हैं कि ओके, ये एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं अपने गुरुजी को, उनका नाम सोनू यादव पुजारी जी हैं, वो जौनपुर के रहने वाले हैं और अगर सॉन्ग का होगा तो उनके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें ग्राम जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी का मैसेज आया है। इन्होंने भी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट हमसे की है। अमरदीप कुमार कुप्पमपट्टी जालकांडापुरम बाजार सेलम तमिलनाडु से मैसेज भेज रहे हैं और सॉन्ग रिक्वेस्ट की है, तो आपका सॉन्ग भी हम प्ले करेंगे, कोशिश करेंगे प्ले करने की। देखिए मैं वादा किसी से नहीं करूंगा बिकॉज बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं और सॉन्ग सारे प्ले करूंगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है, बट आई विल ट्राई टू प्ले द बेस्ट ऑफ द म्यूजिक आप लोगों के लिए, है ना। मंडोरी दिल्ली से नौशाद चौधरी भी मैसेज कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें राहत और गजल नठौर बिजनौर से मैसेज कर रहे हैं, इनको आशिकी मूवी का सॉन्ग सुनना है। ये गाना हितेंद्र दास कह रहे हैं कि आप कोई भी गाना प्ले कीजिएगा लेकिन हमें उसमें शामिल कर लीजिएगा, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज हितेंद्र, ऑल द वे फ्रॉम आसाम। और साथ ही साथ सेम रिक्वेस्ट हमें की है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज फरहान, फारिया ताहिरा और मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान अबान और पूरा आवासी परिवार हमारा शो सुन रहा है। उन्होंने भी कहा हमें किसी भी गाने में शामिल कर लीजिए। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैसेज की तरफ भी जाऊंगा लेकिन पहले आप सबके लिए प्यारा सा गाना।

ऑल राइट। और आपके मैसेजेस आ रहे हैं, अंशिका का मैसेज आ चुका है हमें, और हस्तिनापुर मेरठ से भेज रहे हैं, इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजी है। अंशी, डेफिनेटली इनमें से अगर कोई सॉन्ग आई कैन गेट माय हैंड्स ऑन, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए सॉन्ग प्ले करूंगा। साथ ही साथ हमें एक रिक्वेस्ट और आई है, ये गाना हमें भेज सॉरी ये मैसेज हमें भेजा है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है और मेरा नाम पूछ रहे हैं। ओके, मेरा नाम है आरजी निखिल वर्मा, आपका अपना म्यूजिकल हम सफर। और शिवम शिवम भेज रहे हैं अपना मैसेज हमें बिहार से, और इन्होंने भी सॉन्ग रिक्वेस्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच। और होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने भी एक प्यार से गाने की रिक्वेस्ट करी है। और साथ ही साथ सुनीता शर्मा जी ने शालीमार बाग से हमें मैंने प्यार किया है मूवी का सॉन्ग भी रिक्वेस्ट किया है। दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अक्सर मूवी का एक सॉन्ग पुनीत रावत सुनना चाहते हैं ऋषिकेश से, और जोया मेलबर्न से भी एक सेम अक्सर मूवी का गाना इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। और एक गाना तुम जो मिले करके भी हमें रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम द मूवी अक्सर। तो तीन लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है, तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले ये वाली रिक्वेस्ट प्ले करता हूँ। एंजॉय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: मेरा वाला सॉन्ग सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ आपका म्यूजिकल हमसफर आरजे निखिल वर्मा। और अब बात करते हैं आपके मैसेजेस की। तो ये मैसेज हमें भेजा है राजकुमार के संता ने खोला महाराष्ट्र से, और इन्होंने भी हमसे एक सॉन्ग रिक्वेस्ट की है। और इन्होंने बोला है अभी, हाँ जी हाँ बिल्कुल, आज बर्थ एनिवर्सरी है हमारे एक फेमस वेटरन एक्टर कि मनोज कुमार जी की, जिनको भरत कुमार भी कहा जाता था। तो थैंक यू सो मच बताने के लिए। साथ साथ हमें एक मैसेज और भेजा है, ये मैसेज हमें भेजा है दत्तरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा ने, और इन्होंने भी सॉन्ग रिक्वेस्ट की है। और शोभापुर मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी ने मैसेज किया है और बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो डेफिनेटली इनमें से एक सॉन्ग मैं ज़रूर प्ले करूँगा। कविता टीरी गढ़वाल उत्तराखंड से रिक्वेस्ट कर रही हैं, और बहुत प्यारा गाना आपने रिक्वेस्ट किया है। बहुत सारी रिक्वेस्ट है दोस्तों, बस ये मैं आपसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि सारे सॉन्ग्स प्ले करना बहुत मुश्किल होगा, बट आप दोस्त हैं हमारे, है ना, तो इतना तो हमारे बीच में चलता है कि जो भी मैं गाना प्ले करूंगा आपके लिए आप उसको एंजॉय करेंगे। शो का नाम मेरे वाला सॉन्ग है, डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट प्ले होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस हैं तो वो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप मुझसे नाराज मत होना प्लीज, है ना। इसलिए मैं आपसे पहले ही माफी मांग रहा हूं कि अगर आपका सॉन्ग प्ले नहीं किया, इसलिए मैं सॉन्ग का नाम भी नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगर मैं नहीं प्ले कर पाया तो मुझे बुरा लगेगा, आप नहीं चाहते रहिए। ठीक है, तो शो एंजॉय कीजिए। और ये अगला मैसेज है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, और ये कह रहे हैं किसी भी गीत पे शामिल कर लीजिए हमको। देखो ये है मेरे असली दोस्त, ये जानते हैं कि भाई निखिल के लिए कितना मुश्किल होगा। ऑल राइट, तो बिल्कुल अभी वक्त है एक और सॉन्ग का, और ये सॉन्ग आप सबके लिए,

कंचन ने मैसेज भेजा है हमें सोनिया विहार से, और उनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इन्होंने भी सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें की है। दीक्षा और निहारिका ने साधन नमन किया आपको भी जी, और कहते हैं बचपन के गाने बहुत याद आते हैं, इसलिए इन्होंने भी एक मूवी का गाना रिक्वेस्ट किया है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर रिक्वेस्ट। और सुनीता शर्मा शालीमार बाग मूवी से इन्होंने ओके शालीमार बाग ये रहती हैं, और इन्होंने मूवी का गाना रिक्वेस्ट किया है। ऑल राइट माई बैड। और अगला मैसेज हमें भेजा है रंजीत मुकंदपुर दिल्ली से, और ये भी एक मूवी का गाना टाइटल सॉन्ग में भी किया उसे, वो रिक्वेस्ट किया है इन्होंने। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से लिख रहे हैं कि सभी मित्रों के गाने एंजॉय करता हूँ तो मेरी कोई विशेष फरमाइश नहीं है। थैंक यू गुड्डू जी। और प्रमिला कर्नाटका से भेज रहे हैं कि एक सॉन्ग प्ले करना है मुझे, मतलब इनके लिए, हम आपके हैं कौन का। और अगला मैसेज भेजा है हमें सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से, और मिस्टर आशिक मूवी का इन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया है। साथ ही साथ

या है सुखलाल बाला फ्रॉम फलकाटा वेस्ट बंगाल से मैसेज भेज रहे हैं, और इन्होंने भी एक रिक्वेस्ट किया है, और ये कह रहे हैं कि आप ऐसी बात नहीं है। देखिए शो शुरुआत से आपने 4 मैसेजेस भेज दिए, तो अब मैं आपका मैसेज कैसे पढ़ूंगा? आपका मैसेज जितने में पढ़ने जाऊंगा वो मैसेज दोबारा ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाएगा, है ना। तो उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, गीतिका कोरवाल और भानु प्रकाश ने भी रिक्वेस्ट किया है एक प्यारा सा गाना, और डॉली का मैसेज आया है, उनको शो पसंद आ रहा है, थैंक यू सो वेरी मच। कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय, मनीषा मालवीय ने भी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट की है। कोंडागांव विलेश तोरंडी से भुवनेश्वर नेतम ने भी मैसेज किया है, छत्तीसगढ़ से हमारा शो सुन रहे हैं, और साथ ही साथ अनीता वर्मा द्वारका डेली से हमें मैसेज भेज रहे हैं, इनको भी एक गाना सुनना है। अनीता जी, आई ट्राई टू प्ले दैट सॉन्ग। ये मैसेज हमें आया है हमारे दोस्त नरेश सोनी का, वो कह रहे हैं हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। उन्होंने भी बहुत सारे सॉन्ग्स के ऑप्शंस मुझे दिए हैं, मैं ट्राई करूंगा डेफिनेटली, लेकिन मैं आपसे ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं ना एक्चुअली ये सॉन्ग्स लिख रहा हूँ, मैं इनकी लिस्ट बना रहा हूँ, मैं फिर कभी आऊंगा तो आपके सॉन्ग मेरे शो पे जरूर प्ले होंगे, ये मेरा आपसे जरूर वादा है। मैं किसी भी शो में आऊँ मैं आपके सॉन्ग्स की लिस्ट डेफिनेटली लिख रहा हूँ अपने पास। सरफराज आलम, कवि प्रेमचंद प्रेमी, डॉक्टर प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल गांधी, फारूक अली खान जी हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं सॉन्ग की, और भाई सावन के सॉन्ग से काफी सारी रिक्वेस्ट आई है, तो एक सावन का गाना मैं आपके लिए डेफिनेटली प्ले करूंगा, लेकिन उससे पहले ये वाला गाना, क्योंकि इस गाने की भी काफी रिक्वेस्ट आई हुई है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

सावन को आने दो और मुझे अब जाना होगा क्योंकि वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। और मैसेजेस कुछ है, जल्दी से पढ़ लेता हूँ। ये मैसेज हमें गुलाब सिंह ने सहारनपुर से भेजा है, और उनकी वाइफ पुष्पा कोहली और डॉक्टर अनन्या सिंह डॉली और उनकी डॉटर अनन्या सिंह कोहली भी उनके साथ हैं। मोनू पराशर नाहरीविले से शो सुन रहे हैं, वरुण वाश ने कौरियागंज अलीगढ़ से, और कासगंज से मास्टर राधेश्याम शाक्य भी सुन रहे हैं हमारा शो। साथ ही साथ वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसर, प्रमीला भावसर भी हमारा शो सुन रहे हैं, और उन्होंने भी रिक्वेस्ट करा था, और माफी चाहूंगा जिनके मैसेज अब आए उनके लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार खयाला से भी हमारा शो सुन रहे थे, थैंक यू सो वेरी मच। और ये मैसेज हमें मनमोहन सिंह यूपी रामपुर जिले से भेज रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये सॉन्ग कभी ना कभी किसी ना किसी शो पर डेफिनेटली प्ले करूंगा, मेरा आपसे वादा है। छोड़े जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाने के साथ, काफी लोगों ने की भी रिक्वेस्ट की थी, सो ये अरिजीत सिंह की आवाज में। आप अपना ध्यान रखिएगा, माला स्टूडियो में आ चुके हैं लेकर अगला प्रोग्राम आशियाना। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: समय हो चुका है 2:15। FM रेनबो पर पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की चर्चा जारी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है। मेघवाल ने कहा कि अदालतों में इन मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी। संसद में नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक स्थगित। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आज रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। देशभर में आज आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस विकसित भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए कल श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक विशेष ट्रेन चलाई। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समीह से खेलेंगी। शतरंज में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अंतिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेल का रंगारंग शुभारंभ हो गया है।

0: उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। तो ये थे अभी तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

पहाड़ तो हमेशा कायम रहते हैं, और जब कभी भी दिल्ली वाले या फिर वो लोग जो पहाड़ों की सैर रखने में खासा इंटरेस्ट रखते हैं, जब कभी भी मौका मिलता है दौड़ते हुए पहाड़ों के आगोश में हो लेते हैं। रेनबो डेस्टिनेशन में मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजमाला, और आज के दिन एक बहुत ही खास जगह पर आज आपको घुमाने ले चलूंगी। ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है कि यहाँ पर कहते हैं कि पहाड़ों के बीच में अगर आपको नदियाँ मिल जाएं या कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर वैली व्यू हो और साथ के साथ आपको नदी का किनारा मिल जाए, तो इससे खूबसूरत जगह और कोई हो ही नहीं सकती। और साथ ही साथ अगर वहाँ पर सुख सुविधाएं भी हों, कहने का मतलब है कि सुख सुविधा संपन्न हो, कभी भी कोई इमरजेंसी हालत हो, तो वहाँ से शहर के किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं और अच्छे से मौजूद मिल सके, आप एक ऐसी डेस्टिनेशन पर हो, तो वो जगह सबको पसंद आती है। तो चलिए आज आपको एक ऐसी ही जगह से रूबरू करवाते हैं, आप उस जगह के बारे में आपको बताते हैं जो कि पहाड़ों के बीच नदी किनारे एक ऐसा बाजार है जहाँ खरीदने के लिए न सिर्फ सामान मिलता है लेकिन साथ ही साथ प्राकृतिक सुंदरता का ऐसा संगम है जो आप भुलाए नहीं भूल सकते। उत्तराखंड के कोटद्वार और पौड़ी के बीच एक ऐसी जगह है जहां नायर नदी का संगम होता है, इसलिए इस जगह को नायर वैली के तौर पर भी जाना जाता है। कोटद्वार

से इस जगह के बीच में 7 पुल पड़ते हैं और इसी वजह से इस जगह का नामकरण भी हुआ है। कौन सी है ये जगह, क्यों ये जगह इतनी पॉपुलर है, क्या कुछ खास है इस जगह में, उत्तराखंड में ये जगह एग्जैक्टली कहाँ पड़ती है, इसके आगे कौन से डेस्टिनेशंस है और यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, सब आपको बताऊंगी मैं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है रेनबो डेस्टिनेशंस। बने रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। मैं आ रही हूँ एक बेहतरीन गाने के बाद आपके पास वापस, ये बताने कि आज कौन सी खूबसूरत जगह है, वो कौन सा प्यारा सा डेस्टिनेशन है जहाँ आप जरूर जाना चाहेंगे।

जी हाँ, आप मेरे साथ आ चुके हैं पहाड़ों के बीच नदी के किनारे एक ऐसे बाजार में जहाँ पर सब कुछ मिलता है। खरीदने की आपकी जो भी जरूरत है वो तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन आंखों का सुकून और मन की शांति भी आपको मिलेगी। रेनबो डेस्टिनेशन में मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला, और आज आपको लेकर आई हूँ सतपुली बाजार की सैर पर। अब अगर पहाड़ों को देवभूमि कहा जाता है तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जगह जगह आपको देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलेंगे। लिहाजा सतपुली एक ऐसी जगह है जहाँ से कई सारे मंदिर नजदीक में हैं, जैसे दंगलेश्वर और ज्वालपा देवी मंदिर। अब मंदिरों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर आप ये तो अच्छी तरह से समझते ही हैं कि मंदिर जो है वो हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, और जब कभी भी हम मंदिर की बात करते हैं या हम ईश्वर के दर्शन की बात करते हैं तो उत्तराखंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। और ज्वालपा देवी मंदिर जो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, अगर आप मंदिर जाते हैं और वहाँ से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा रिवर बेड घाट पर, और वहाँ से आप आसानी से घंटों नदी किनारे बैठने का आनंद ले सकते हैं। तो ऊपर देवी माता का मंदिर और नीचे नदी किनारे बैठने का सुकून, है ना फैंटास्टिक, जबरदस्त। पहाड़ों के कई गांवों के बीच सतपुली बाजार एक ऐसी जगह है जहां सभी सुविधाएं मौजूद है, चाहे वो बैंक हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, और ये वही जगह है जहां से आगे का रास्ता बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को जाता है। पौड़ी गढ़वाल के बारे में आपने जरूर सुना है, आप गए भी होंगे पौड़ी, लेकिन पौड़ी और कोटद्वार के बीच में सतपुली बाजार एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर आप एक हॉल्ट ले सकते हैं, जहां पर आप रुक कर न सिर्फ वहां की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं बल्कि वहां पर कुछ समय रुकने के बाद आप अपनी जब थकान दूर कर लें तो उसके बाद आप अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आराम की बात नहीं है, अगर इस जगह के बारे में बात करें तो यहाँ पर आराम के साथ साथ जो आसपास के जो एरियाज हैं उनको भी आप विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उस जगह को इंजॉय कर सकते हैं। पहले यह समस्या थी कि गुमखाल से सतपुली का जो रास्ता था उस रास्ते में थोड़ा सा वहाँ पहुँचना मुश्किल होता था। रास्ता चौड़ा ज़रूर था लेकिन कुछ कुछ जगहों पर थोड़ी सी समस्या थी, लेकिन अब वहाँ पर रास्ते का चौड़ीकरण भी हो रहा है। बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा टीहरी का रास्ता जिस तरह से चौड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से रास्ते का चौड़ीकरण हो रहा है, और ऐसे में ये रास्ता आप समझ लीजिए कि अगले 8-10 महीनों के बाद आपको इतना चौड़ा मिलेगा कि आप इस रास्ते से बहुत ही तेज़ी से गाड़ी ले जा सकेंगे, और आप ये जान सकेंगे कि पहाड़ों के बीच में भी आपको ऐसे पैचेस मिलते हैं जहां पर ड्राइविंग का एक अपना अलग ही मजा है। सतपुली बाजार अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है और एक ऐसी जगह है जहां पर रुक के आप आगे पीछे कई सारी ऐसी जगहें हैं

जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं और वहाँ का मजा उठा सकते हैं और वहाँ की यादों को समेट कर वापस घर ला सकते हैं। आप हैं मेरे यानी मस्त मस्त आरजे माला के साथ और सुन रहे हैं फिलहाल प्रोग्राम रेनबो डेस्टिनेशन, जिसमें आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ सतपुली बाजार की सैर पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

बैठे बिठाए अगर जन्नत की सैर करनी है तो आकाशवाणी रेनबो पर ये जो प्रोग्राम आता है ना, रेनबो डेस्टिनेशन, इसको जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको ऐसी ऐसी जगहों की सैर करवाते हैं जहाँ पर पहुंचकर किसी भी इंसान को ये लगेगा कि वो जन्नत आ गए हैं। खूबसूरत जगहों के दर्शन करना हो तो इस प्रोग्राम को जरूर सुनिए। और आज जिस खूबसूरत जगह के दर्शन पर मैं यानी आपकी मस्त मस्त आरजे माला लिए चली हूँ, वो है उत्तराखंड का सतपुली बाजार। बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ पर न सिर्फ आपको पहाड़ों का आनंद मिलेगा बल्कि साथ ही नदी किनारे बैठने का जो सुख होता है ना, वो भी आपको मिल पाएगा। सतपुली एक ऐसी जगह है जो कोटद्वार और पौड़ी के बीच में है और लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों ही जगहों से यहाँ का, और ये जगह बीच में पड़ती है। यहाँ पर आप न सिर्फ बसेस से, जीप से पहुंच सकते हैं बल्कि आप यहाँ पर ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं, और नियरेस्ट

रेलवे स्टेशन है कोटद्वार, जहाँ से आप अगर जीप लें या वहाँ से अगर आप कैब्स लेकर जाते हैं तो लगभग लगभग 2 घंटे में आप इस जगह यानी कि सतपुली बाजार पहुँच सकते हैं। इस बाजार के नाम से कई सारे गाने भी बने हैं और बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, एक ऐसी जगह है जिसके नाम पर अगर गाने बन चुके हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना सुविधा संपन्न है ये एरिया और कितना पॉपुलर भी है। अगर आप बाय एयर यहाँ आना चाहते हैं तो जो क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है वो है देहरादून का, जो कि लगभग यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। तो रेनबो डेस्टिनेशन में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये जगह जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ जाने के लिए आपके मन में कुछ ना कुछ भाव तो ज़रूर उमड़ रहे होंगे। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि छुट्टियाँ आएंगी तभी आप जा पाएंगे, ये तो मुझे पता है। फिलहाल रेनबो डेस्टिनेशन में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए मुझे यानी अपनी मस्त मस्त आरजे माला को। मुलाकात होगी आपसे बस थोड़ी देर बाद, 4 से 5 लेकर आऊंगी प्रोग्राम अल्फा जेन। बने रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। और अभी फिलहाल समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का।

0: दंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की। आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं। भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है। तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओं, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों

0: को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
1: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है।
0: जी,
1: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी।
0: जी,
1: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गाँव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
0: कैलपौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोड़ावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
1: श्रोताओं, कोड़ावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोड़ावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
0: कैलपौध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
1: श्रोताओं, कैलपौध उत्सव कोड़ावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
0: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहाँ हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपौध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपौध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कैलपौध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपौध शब्द का क्या अर्थ है?
1: 8800-440-559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आप सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
1: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
3: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया

0: बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं।
1: क्या तेज गति थी। सो
0: जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
1: भाई वाह।
0: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
1: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
0: अच्छा,
1: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
0: वाह,
1: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
0: हाँ, ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
1: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
0: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
1: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
0: हैं? वो कैसे?
1: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह।
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुँचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
0: ये तो है। अरे चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी।
1: चलो
3: पहुंचे तो सही।
0: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
1: हैं?
0: हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा।
0: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
0: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था।
1: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
0: चलो
1: संभल कर।
0: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
3: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
1: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
0: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
3: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ।

0: मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
1: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
2: हाँ हाँ चलो।
3: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
4: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया

0: में क्या है?
1: नमक, लाहौरी नमक।
0: लाहौरी नमक? आप इसका क्या करेंगी?
1: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
0: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये।
1: हैं?
0: और वैसे भी नमक का आप करेंगी क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
1: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
0: मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
1: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
0: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
1: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
0: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक? अरे बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
1: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
0: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
1: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
0: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानूं या ना जानूं, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूं। इस बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगी आप?
1: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
0: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
1: नमक का मोल पूछने।
2: आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है,
1: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ।

0: सुनिए
1: जी फरमाइए।
0: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
0: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
1: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
0: जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
1: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
0: जी शुक्रिया।

0: चलो खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: अभी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पियेंगी क्या आप?
0: नहीं,
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें।
0: हाँ?
3: हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है, किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
3: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, आदाब, वड़कम, सत श्री अकाल। मैं हूं मस्त मलंग आरजे श्वेता और आपके लिए लेकर

0: आ गई हूँ खास प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। जैसा कि आप हर रोज सुनते हैं रेडियो डॉक्टर और उसमें कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स आपके लिए हम लेकर आते हैं। आज का टॉपिक है सीजनल आई फ्लू, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। और एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितलियार, आरपी सेंटर फॉर ऑप्थल्मिक साइंस एम्स। और हम जो है इस बारे में काफी सारी बातें करने वाले हैं। आई फ्लू मॉनसून के सीजन में कंजक्टिवाइटिस या आंखों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या जो होती है उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉनसून के दौरान नमी या ह्यूमिडिटी होती है जो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को बढ़ाने में और भी ज्यादा मदद करती है। हम अपने स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम रेनबो के स्टूडियो में।
1: नमस्कार श्वेता जी, एंड जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं हमें, उनको भी हमारे तरफ से नमस्कार।
0: सर, इसके अगर लक्षण के बारे में हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो कॉमन लक्षण है वो क्या होता है, ताकि वो देखते ही कोई भी अगर आसपास का इंसान भी देख रहा है तो समझ जाए कि ये आई फ्लू है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सके।
1: सबसे इम्पोर्टेंट तो अचानक दोनों आंखों में लाली आना, ये सबसे पहला सिम्टम होता है या साइन होता है लोगों के लिए। उस लाली के साथ साथ में आंख में चुभन होना, या हम कहते हैं इरिटेशन, या ऐसे लगता है कि कोई आंख में कुछ अटक रही हो और अड़क रही हो।
0: जी जी,
1: ये दो कॉमन जो है सिम्टम होते हैं। साथ में आंखों से पानी आना और कीचड़ आना और जो है पलकों में सूजन आना, ये चार मुख्य जो है सिम्टम्स होते हैं जब भी एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है।
0: जी,
1: और हम देखते हैं कि हमेशा जो है ये दोनों आंख में एक साथ हो जाता है, और आपको लगता है कि आंखों में बहुत जोर का जो है रड़कन हो रही है, कभी कभी आंखों में दर्द और आंखों के गोले के चारों तरफ भी दर्द होता रहता है।
0: जी सर, और ये कहा जाता है कि जितनी उसमें खुजली लग रही होती है उतना ही उसको नहीं खुजाना चाहिए, हाथों से स्पेशली उसको नहीं मलना चाहिए, लेकिन वो उस वक्त ऐसी इरिटेशन होती है कि आप नहीं रोक सकते अपने हाथ को, तो उस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं या हटा सकते हैं?
1: आप सही कह रहे हैं, जब अक्यूट स्टेज होता है, जब शुरुआत होती है, तो आंखों में बहुत इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए आंख लाल हो जाती है। ऐसे में आंखों में खुजली होना या आंखों में चुभन या रड़कन होना हमेशा साथ में रहता है।
0: जी,
1: तो आपका जैसे आप सही कह रहे हैं कि मन करता है कि आंखों को मल लें या रगड़ लें जिससे कि आपकी जो है ये चुभन खत्म हो जाए, लेकिन उससे और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आपके हाथें आंखों में लगती हैं तो चांसेस जो इन्फेक्शन फैलने के भी रहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन देखने से नहीं फैलता, इन्फेक्शन छूने से फैलता है। इसलिए हाथों की और आंखों की सफाई जो है एक मुख्य प्रिकॉशन इसमें होता है। तो हम जानते हैं जब भी ऐसी असुविधा हो रही हो, एक तो आंखों को साफ पानी या ठंडे पानी से धो लें, उससे भी आपको आराम मिलेगा, या फिर ठंडे रुमाल से आप जो है आंखों में सेक कर सकते हैं दिन में 2-3 बार, और काला चश्मा लगा लीजिए जिससे कि रोशनी से आपको दिक्कत कम आएगी। और कभी कभी जो है हम आंखों में ड्रॉप डालने के लिए बताते हैं, जिसमें नॉर्मली हम एक एंटीबायोटिक ड्रॉप जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है जो सारे बैक्टीरिया को कवर कर दे प्रोफाइलेक्टिकली, या फिर आर्टिफिशियल टीयर्स जो कि आंखों को नम रखते हैं, ऐसी दवाइयां आंखों में डालनी चाहिए।
0: जी, आज का टॉपिक है सीजनल आई फ्लू। आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ।

0: नैना लागे अगर इस तरह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर इन आंखों में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी बीमारी हो जाती है, तो ये आंखें बहुत तकलीफ देती हैं। ना सिर्फ आपको देखने में प्रॉब्लम होती है बल्कि पूरा दिन इरिटेशन भी होती रहती है। और आज हम रेडियो डॉक्टर में बात कर रहे हैं सीजनल आई फ्लू के बारे में, एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस, जो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी फैलता है। और ये कहा जाता है कि ये सिर्फ देखने से फैल जाता है। डॉक्टर साहब, ये बात कहाँ तक ठीक है या कहाँ तक गलत है?
1: मेरे ख्याल से लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि बीमार

0: दे, या आपका जो मैंने कहा लैपटॉप यूज करते हैं या पीसी यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, इन चीजों में जैसे आप देखेंगे टीवी के जो आपके रिमोट होते हैं वो सबसे ज्यादा टच होते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे चीजों से बचाव रखेंगे तो आपको फैमिली को नहीं होगा। दूसरा ये है कि अपने हाथों को और
1: हाँ
0: आंखों को हमेशा धोते रहिए, दिन में जिनको इन्फेक्शन हो गया है एटलीस्ट 3 या 4 बार आंखों को धोना चाहिए, हाथ को तो 5-6 बार धोना चाहिए आपको,
1: जी
0: उससे भी लोड कम हो जाता है, दूसरे के इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। घर के जो सदस्य हैं जिनको नहीं हुआ है उनको भी प्रिकॉशन रखना है कि अपने हाथों से अपनी आंखों या चेहरे को टच नहीं करें जानबूझ करके।
1: जी
0: यदि आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगा लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते
1: कम
0: हैं,
1: हो जाते हैं।
0: तो जिनको हो गया उनको भी काला चश्मा लगाना चाहिए। और ये जरूर देखें कि आप जो है जो भी कपड़े हैं या टॉवल है जो टेबल्स हैं उनको साफ रखें,
1: जी जी
0: क्योंकि कोविड के टाइम में हम सीख चुके हैं कि कैसे चीजों को सैनिटाइज करते हैं, तो ऐसे भी आपको सैनिटाइज करना चाहिए, घर में सैनिटाइजर होना चाहिए, हाथ धोने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए,
1: जी
0: या फिर जैसे मैंने कहा रिमोट है लैपटॉप है उनको भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं।
1: सर आपने सैनिटाइजर के बारे में बात करी है, लेकिन सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, कुछ नॉन अल्कोहल भी होते हैं, तो आंख में जैसे ही लगते हैं वो जलन होती है, तो ऐसे में कहां तक सही है कि हम सैनिटाइजर
0: लगाना
1: यूज
0: चाहिए,
1: करें?
0: हाथों को लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये वाली कंजंक्टिवाइटिस बीमारी ऐसी है कि आप जो है बिना साबुन के भी हाथ करीब करीब 1 मिनट तक हाथ धो लोगे रनिंग वाटर से तब भी इसका लोड ऑलमोस्ट 0 हो जाता है,
1: जी
0: तो हाथ धोना सबसे इम्पोर्टेंट है बीमारी को रोकने के लिए।
1: तो यानी अगर हम वेट टिश्यूज भी अगर यूज करते हैं हाथ पोछने के लिए या आईज को साफ करने के लिए,
0: आंखों को तो हमेशा जो है एक साफ पानी से धोना चाहिए, या आजकल बड़े सारे आई वाइप्स आते हैं उससे भी आप आंखों को साफ रख सकते हैं। जैसे हम रूमाल, बहुत सारे लोग रूमाल यूज करते हैं, तो उसमें एक प्रिकॉशन रखना चाहिए, एक साफ रूमाल लीजिए उसको इस्त्री कर लीजिए, उसके मल्टीपल परत कर लीजिए, एक बार में एक ही परत से आंख साफ कीजिए, दूसरी बार उसको पलट लीजिए, इस प्रकार से एक रूमाल से आप जो 7 या 8 बार साफ रूमाल से अपनी आंखों को साफ कर सकते हैं।
1: जी अच्छा सर, क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, उसमें एक ये सवाल आ रहा है कि मेडिकल स्टोर में जाकर लोग अपने आप कोई ना कोई जो है मेडिसिन ले लेते हैं 15 दिनों से। जिन्होंने हमारे पास मैसेज भेजा है मनोहर लाल गांधी ने गाजियाबाद से, ये कह रहे हैं कि आसपास के परिवार के बच्चों को आंखें आ रही हैं, पानी आता है, तो वो उनके पास जाकर मेडिकल स्टोर में जाकर कोई भी दवाई ले लेते हैं, तो ये क्या सही है? और अगर ऐसी कोई जेनेरिक दवाई है तो वो भी आप बता दीजिए।
0: जैसा आप जानते हैं इंडिया में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, लोग अपने आप दवाई ले लेते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो केमिस्ट शॉप है वो भी जो है इसका फायदा उठाते हैं और दवाइयां जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं।
1: जी
0: इसमें जो है 2-3 चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कंजक्टिवाइटिस जो अभी हो रही है आई फ्लू, ये जो है सेल्फ लिमिटिंग, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है, यदि आप दवाई भी नहीं करेंगे आंखों को साफ रखेंगे तो 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा।
1: अच्छा
0: दवाई तब देने की जरूरत पड़ती है जब आंख में बहुत ज्यादा कीचड़ आ रहा हो, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ये सारा इन्फेक्शन वायरल है, वायरल के लिए कोई दवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको।
1: सर जैसे आपने बताया आंख में कीचड़ आता है, एक आता है व्हाइट रंग का और एक आता है येलोइश कलर,
0: नॉर्मली येलोइश कलर का आता है इनमें, तो आप जो है कोई भी एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज कर सकते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जिससे कि बहुत सारे बैक्टीरिया कवर हो जाए इसमें। तो नॉर्मली आज के डेट में हम लोग मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप जो होता है वो यूज कर सकते हैं दिन में 3 बार, और साथ में कोई भी आर्टिफिशियल टीयर्स CMC जो है बहुत ही कॉमन ड्रॉप है, CMC 0.5%, ये दिन में 4-5 बार डालेंगे तो आंख से अंदर से गीली हो जाएगी, आपका इरिटेशन भी कम हो जाएगा, ये आप कंफर्टेबली ले सकते हैं। कोई भी ड्रॉप जो आपको लाली कम करता है, ऐसे ड्रॉप जो है आंखों को खराब भी कर सकते हैं, इसलिए स्टीरॉयड का यूज मत करिए और कोई ऐसी एस्ट्रिंजेंट ड्रॉप मत डाले जिससे लाली छुप जाती है, क्योंकि रिबाउंड डाली होगी और आंख में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। ये जो है आपको दिक्कत हो रही है जैसे कि आपकी नजर कम हो रही हो, इसका मतलब कि आपका कॉर्निया जो काली पुतली है उसमें असर आ रहा है, या फिर आपका दर्द बहुत ज्यादा असहनीय हो रहा हो, तब आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत पड़ती है।
1: सर कभी कभी ऐसा भी होता है रात में आप सोते हैं और सुबह आपकी आंख एकदम चिपकी होती है, नहीं खुलती है, तो ऐसे में भी डॉक्टर के साथ?
0: हाँ यदि आपको देखने में दिक्कत आ रही है तो जरूर आइए, यदि हल्का सा आपको आंखों में स्टिकीनेस है तो आंख जो है साफ पानी से धो लीजिए, उसके बाद आंखों में एंटीबायोटिक के 3-4 ड्रॉप डाल देंगे तो अंदर से पूरी सफाई हो जाएगी।
1: जी।
0: तो ड्रॉप डालने के बाद भी आंखों को साफ करना चाहिए धो करके, जैसे मैंने कहा कि ठंडे पानी का शेक या फिर कोई भी रुमाल आप जो है थोड़ा आइस में डाल करके उसका सेक करेंगे तो बहुत सूजन भी कम हो जाती है और आपका दर्द भी कम हो जाता है
1: जी।
0: लेकिन कभी कभी लाली होने के बहुत सारे कारण होते हैं, हम जानते हैं आजकल एक्यूट एपिडेमिक चल रहा है कंजंक्टिवाइटिस।

0: प्रैक्टिस का, लेकिन कुछ लोगों को और कारण से भी लाली हो सकती है, इसलिए आपको हॉस्पिटल आके डॉक्टर से चेक जरूर कराना चाहिए।
1: सर, हॉस्पिटल जाते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब ये कंजंक्टिवाइटिस जो है इतना फ्लू फैल रहा है? क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप जाते अच्छे खासे हैं, लेकिन वहां से कंजंक्टिवाइटिस लेकर आ जाते हैं।
0: हाँ, जैसे मैंने कहा, जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो पहला काम तो ये है कि आप जो है एक हाथ में जो है रुमाल जरूर रखिए जेब में, जो आपके लिए यूज करना हो, और एक जो है गॉगल्स लगाइए जरूर, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि ऐसे चीजों को नहीं छूए जो अनवांटेड है। यदि आप किसी चीज बैठते हैं तो जहां ऐसे दिमाग में रखिए कि आपको अपने चेहरे में या आंखों में हाथ नहीं लगाना है। आपको आंख में खुजली हो रही है तो पहले हाथ धो लीजिए, उसके बाद फिर आंख को या चेहरे को टच कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि जहां तक हो सके चीजें जो है आपके फेस में नहीं जानी चाहिए।
1: जी,
0: तो सबसे इम्पोर्टेंट हाथ ही होता है, तो हाथ साफ रखेंगे तो इन्फेक्शन कम हो जाएगा।
1: बिल्कुल। एक सवाल आया है शशि का दिल्ली से, वो ये कह रहे हैं कि इफ माय हेल्पर हैज द प्रॉब्लम ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, शुड आई अलाउ हर टू कम एंड क्लीन द हाउस एंड यूटेंसिल्स, प्लीज सजेस्ट मी।
0: ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है कि ये हेल्पर की नहीं है, पूरे जो है वर्किंग एरिया में बहुत से लोग जो है मेडिकल लीव के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो शुरू के एक दो दिन ऐसे होते हैं जिसमें इन्फेक्शन दूसरों को फैल सकता है। यदि आपकी बीमारी 3-4 दिन हो चुकी है तो उसके बाद इन्फेक्शन दूसरों को नहीं फैल सकता, क्योंकि वायरस जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो एक अक्यूट फेज में 1 या 2 दिन जो है हम छुट्टी दे सकते हैं, यदि उसके बिना काम चल सकता है। यदि उस आदमी के बिना काम नहीं चल सकता है तो प्रिकॉशन के साथ उस आदमी से काम करा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हम प्रिकॉशन लेंगे तो हमें इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, आदमी जो भी आदमी साथ में क्यों ना खड़ा हो, क्योंकि उसको हम टच नहीं करेंगे, उसे हाथ नहीं मिलाएंगे।
1: बिल्कुल वैसे ही जैसे जुकाम और खांसी में।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। तो बहुत ही अक्यूट फेज है तो जरूर यस, उसके आंख में बहुत कीचड़ आ रहा हो, बहुत डिस्चार्ज हो, और उसको बार बार जो है नाक से पानी आ रहा हो, ऐसे सिचुएशन में 1-2 दिन के लिए छुट्टी दे सकते हैं।
1: सर, जैसा आप पहले बता चुके, एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास सवाल आया है और ये इमरान ने भेजा है बिहार से, कि ये आई फ्लू क्यों होता है और कैसे हो जाता है?
0: आई फ्लू ऐसे तो होता रहता है, लेकिन ये एक बरसात के मौसम में एकदम से पूरे सोसाइटी में एकदम से फैल जाता है, जिसे हम एपिडेमिक कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हर तीसरा या 500 आदमी जो है इस आंख की बीमारी से पीड़ित है। हॉस्पिटल में भी जो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, कम से कम 80% केसेस कंजंक्टिवाइटिस के आ रहे हैं हर दिन। और ये लोड बढ़ता जा रहा है। तो मैं जैसे हमने पहले कहा था, ये एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन है, नॉर्मली एडिनो वायरस से होता है ये बीमारी जो है, और तेजी से फैलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे आप हमने बताया था, एक तो नमी बहुत बढ़ जाती है बरसात के मौसम में, दूसरा बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ आया हुआ है पूरे नॉर्थ इंडिया में, उससे भी हाइजीन भी कम हो जाता है। क्योंकि कोई भी बीमारी जो है तब तक नहीं हो सकती जब तक आंख में जो है आपके कीचड़ ऐसे रह रहा हो, आंख की सफाई नहीं हो रही हो, तभी जाके इन्फेक्शन होता है और फैलता भी है। तो हाइजीन कम होना, थोड़ा मौसम में थोड़ा सा नमी होना, और जो है और वायरस का जो है एक दूसरे से इफेक्ट करना, थोड़ी सी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है ऐसे सिचुएशन में, तो बीमारी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं।
1: जी, 102.6 मेगाहर्ट्ज को आपने ट्यून इन किया हुआ है दिल्ली एनसीआर में, और अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें पूरे भारत में सुन रहे हैं, और न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस गाने के उस पार जब हम आएंगे तो फिर हम जानेंगे कि किस तरह से जब आईज का कोई भी ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस करें कि कंजंक्टिवाइटिस ना हो।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आंखें भर दीजिए सपनों से बिल्कुल, और इन सपनों से जो है दुनिया हसीन लगती है। लेकिन अगर आंखों में कुछ भी परेशानी होती है तो ये दुनिया उतनी ही जो है ना, ऐसा लगता है कि बस इरिटेशन हो रही है, स्पेशली जब कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है या फिर आई फ्लू हो जाता है। और आज का वही टॉपिक है हमारा रेडियो डॉक्टर का। मैं हूं मस मलंग आरजी श्वेता, और आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर जीवन सिंह तितलियाल। और सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानते उनका क्या सवाल है। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताइए।
2: नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार।
3: नमस्कार जी,
1: जी अपना सवाल पूछिए।
2: मैं एक आरबी पेशेंट हूँ
1: जी, क्या परेशानी है आपको, अपनी परेशानी बताइए।
2: डॉक्टर साहब को बता दिया, मैं आरबी पेशेंट हूँ, समझ गए डॉक्टर साहब
1: जी।
2: हाँ डॉक्टर साहब, तो ये मैं कह रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी आँख में मोतिया है, आपका ऑपरेशन कराना है, इसमें रोशनी तो आपकी बढ़ेगी नहीं लेकिन मोतिया क्लियर हो जाएगा। तो वो मैंने एक आँख पे तो करा लिया था, एक आंख का नहीं कराया, लेकिन अब इतनी परेशानी, आंख में धुंध रहती है बिल्कुल, जैसे बादल को रहा था ना, घटा आ जाती है, इस तरह रहता है। अब इस तरह का कुछ है कोई दवाई या कोई ऐसी चीज जो मतलब क्लियरिटी हो जाए, मैं दिखाने अगर आ जाऊँ आरबीआई सेंटर में?
3: नहीं नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा जरूर दिखाने आइए आप, क्योंकि ऐसी बीमारी आपको है अनफॉर्चुनेटली, जिसका कोई खास इलाज है नहीं सुधार करने के लिए। लेकिन आपको कैटरेक्ट है तो उसका ऑपरेशन हो सकता है, उसके बाद थोड़ी सी आपकी नजर में या आप कंट्रास्ट में बढ़ोतरी हो सकती है। और दूसरा जो है, हम आपको जो है अच्छे से लो विजन एड्स की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपको काम करने में सुविधा हो सकती है। आजकल बड़े सारे नए लो विजन एड्स आ गए, जिससे ऐसे बीमारियों को से पीड़ित लोगों को सुविधा दी जा सकती है। आप जरूर आइए हमारे हॉस्पिटल में।
2: सुविधा में क्या क्या चीज है, क्या बताया आपने?
1: आप जब हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको पूरी डिटेल जो है वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा जी। सर जैसे इन्होंने बोला कि इन्हें कैटरिक की प्रॉब्लम है, और यही गाने से पहले मैंने भी कहा था कि अगर किसी को भी कैटरिक का ऑपरेशन होता है या कोई भी ऑपरेशन होता है आईज से रिलेटेड, तो उस वक्त हमें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमें ये कंजंक्टिवाइटिस ना हो, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में ही रहना होता है, कुछ घंटों तक तो रहना ही पड़ता है या फिर एक दिन रहना पड़ता है, तो ऐसे में क्या सावधानियां बरत सकते हैं?
3: हाँ, इसमें जैसे जो लोग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं उनको भी अपनी जो है प्रिकॉशन लेनी बहुत जरूरी है
1: जी।
3: ये देखना जरूरी है कि आपके जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत भीड़ न हो, आपके आसपास में सामान है जो रखें साफ हो
1: जी।
3: और जो है

0: ऑपरेशन के बाद जो है जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको ठीक से फॉलो किया जाए। आपको ये जरूर देखना है कि काला चश्मा लगाना जरूरी है
1: जी,
0: और ड्रॉप डालते समय बिना टच किए, आप बिना आंख को टच किए ऊपर से ड्रॉप गिरनी है आंखों में
1: जी,
0: और आंखों में हाथ नहीं लगाना है। ये तीन चार प्रिकॉशन बहुत जरूरी रखने हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने हाथों को धो लीजिए ड्रॉप डालने से पहले, और ड्रॉप डालने के बाद उसको कैप ठीक से लगाइए, जो ड्रॉपर है उसमें हाथ टच नहीं होना चाहिए, इससे जो है बीमारी फैलने में आपको होने में चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको भी प्रिकॉशन रखना चाहिए, खुदा ना खास्ता उनको कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है
1: जी, जी, जी।
0: तो कॉन्टैक्ट लेंस कम से कम 2 हफ्ते नहीं लगानी चाहिए।
1: अच्छा।
0: नहीं तो दुविधा उनकी जो है असुविधाएं बढ़ सकती है
1: जी।
0: और जो लोग बिजी एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर जैसे ट्रैफिक एरिया में काम कर रहे हैं, उनको भी काला चश्मा लगाना चाहिए। और जैसे लगता है कि आपके हाथों कोई गलत जगह में टच हो गई हो जहां पर इन्फेक्शन फैलने के चांस रहते हैं, तो इमीडिएटली हाथों को साफ करना चाहिए, धोकर रख लीजिए या सैनिटाइज हाथों को कर लीजिए, उससे भी आपकी जो है बीमारी फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे।
1: जी सर, हमारे पास सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि मैम मुझे संडे को आई फ्लू हुआ था और डॉक्टर से दवाई ली थी तो उन्होंने ड्रॉप्स जो है वो आंखों में डालने के लिए बताई थी। अब जो है उनके आंखों में धुंधलापन है और साथ ही साथ उन्हें व्हाइट सा कुछ चिपचिपा रहता है ज्यादा, जिससे दर्द भी होता है, तो थोड़ा सा और आप अगर इस तरफ बता दें तो क्या करना है? पानी भी आता है।
0: हाँ, जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि ये बीमारी जो है देखा जाए तो सेल्फ लिमिटिंग है, इसका अपना फेज होता है, कम से कम जो है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते ये बीमारी के सिम्टम रह सकते हैं। शुरू के कुछ दिनों में कुछ भी दवाई कर लो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, तो आंख में सूजन, लाली और जो आपका जो है चिपकना या जो डिस्चार्ज हो रहा है कम से कम 1 हफ्ते रह सकता है। तो ऐसे में यदि आपको जो है जैसे आप बता रहे हैं आंख में धुंधलापन आ रहा है तो ये सीरियस हो सकता है, इसके लिए आपको एक बार प्रॉपर चेकअप करा लीजिए, नहीं तो हमें दवाइयां चेंज भी करनी पड़ सकती है। और जरूर ये रिक्वेस्ट करिए कि आपको जो डिस्चार्ज आ रहा है उसका एक बार जो है कल्चर करा लें या सेंसिटिविटी करा लें, वो भी बहुत जरूरी है, उससे हमें पता चल जाती है कौन सी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एंटीबायोटिक चेंज कर सकते हैं।
1: जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं वो क्या बोलते हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए।
2: जी जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ।
1: जी, क्या सवाल है आपका?
2: डॉक्टर साहब, खास करके गर्मियों में जब मैं बाहर निकलता हूँ, दिन में से धूप तेज होती है, आता जाता हूँ, उसके बाद अगर नहाता हूँ तो मेरी आंखों में दलदाई से आ जाती है, तो इसके बारे में हम मतलब क्या कर सकते हैं? इसके लिए दवा मतलब लेना पड़ेगी या गर्मी की वजह से ऐसा हो जाता है?
0: ये आप सही कह रहे हैं, ये सीजन ऐसा है कि आंखों में जो है थोड़ा सा सूखापन आ जाता है गर्मी के सीजन में स्पेशली, और हम ये उन लोगों को होता है जिनको थोड़ा सा पहले से थोड़ी बहुत की ड्राइनेस की समस्या रहती है, तो हम ये चाहते हैं कि आप नहा आते हैं तो उसमें जो है ये कोशिश करें कि आंख में पानी न जाए या साबुन का पानी नहीं जाए, उससे भी लाली हो जाती है। यदि आपको ये लगातार रहता है तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, आप सिंपल जो है एक आर्टिफिशियल टीयर जो है दिन में 2 या 3 बार डालेंगे तो समस्या कम हो जाएगी। CMC 0.5%, नहाने के बाद भी एक ड्रॉप जरूर डालिएगा आप।
1: जी, कई बार साबुन की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, और जैसा आपने बताया कि आई ड्रॉप्स के बारे में, हमारे पास सवाल आया है सुधीर सिंह का कुतुबगढ़ से, और ये कहते हैं कि ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स कितने लंबे समय तक जो है वो डाल सकते हैं?
0: लुब्रिकेंट ड्रॉप्स जो है नॉर्मली तो बहुत सेफ होता है, इससे जो है आंख में नुकसान नहीं होता है।
1: जी,
0: यदि आपको 1 महीने या 2 महीने डालनी हो तो कोई भी जो है कंपनी की ड्रॉप डाल सकते हैं। यदि बहुत लंबे समय के लिए डालना हो, जैसे बहुत से ऐसी बीमारी होती है ड्राइनेस की जो जिसमें लाइफ लॉन्ग जो है आपको लुब्रिकेंट डालना पड़ सकता है, ऐसे सिचुएशन में प्रिजर्वेटिव फ्री, जिस ड्रॉप में प्रिजर्वेटिव न हो वो डालना चाहिए, जिससे कि आपकी आंख में कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि प्रिजर्वेटिव से ही जो है आंख में दिक्कत आती है, एंटीबायोटिक से नहीं आती है।
1: जी,
0: तो कोशिश करें कि आप प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप लें, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है।
1: जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका और अपना सवाल पूछिए।
3: इमदादुन, वेस्ट बंगाल से।
1: जी, क्या सवाल है आपका?
3: अभी जो हो रहा है
1: जी,
3: आंख फुगे की तरह फूल जाती है, उसका ड्रॉप वो कान में जो डालता है वो डालो तो यूज करो तो चलेगा?
0: नहीं, आप सही कह रहे हैं, कभी कभी जो है ये एंटीबायोटिक ड्रॉप जो है आंख वाले कान वाले एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये उसमें जो आप देख लीजिए प्रॉपरली जो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आंख वाली हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें जो है दवाई का कंसेंट्रेशन और जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है थोड़ी सी कम हो सकती है, तो हम चाहते हैं कि जो है आंख वाली ड्रॉप जो है आंख में डाले, आंख वाली ड्रॉप कान में डाल सकते हैं, लेकिन उल्टा मत करिएगा।
3: अच्छा, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, बोला चलेगा।
0: नहीं,
3: इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ।
0: नहीं नहीं, लोग सब कहते चलेगा, ये अक्यूट प्रॉब्लम है। और आजकल जो है हमारे बड़े सारे जेनेरिक ड्रॉप्स मिलते हैं, काफी सस्ते होते हैं, क्योंकि आंख में जब भी ये आई फ्लू होता है तो आंख की जो सतह होती है वो जो है कमजोर हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है, इसलिए नया बॉटल खोलना चाहिए हर बार और नया ड्रॉप डालना चाहिए।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने जैसे बताया कि नया ड्रॉप या नया बॉटल लेना चाहिए, इवन ये कहा जाता है कि दोनों आंखों के लिए अलग अलग बॉटल्स भी अगर यूज करें तो ज्यादा बेहतर होता है।
0: हाँ, उसमें कभी कभी आप जो है प्रिकॉशन ज्यादा लेंगे तो दूसरी आंख में इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। नॉर्मली जो है जो लोग अच्छा प्रिकॉशन लेते हैं तो एक ही आंख में भी हो सकता है, लेकिन ये वायरस इतना फास्ट होता है कि दोनों में हो ही जाता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे आप सही बता रहे हैं श्वेता जी, कर सकते हैं हम लोग।
1: जी सर, इन्फ्लेमेशन जब बढ़ जाता है तो आईज में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम क्या करें ऐसा कि इन्फ्लेमेशन ना बढ़े बॉडी में या आईज में?
0: हाँ, इस वाले बीमारी में तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और 3 दिन के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो क्रॉनिक होती है, उसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन हम लोग यूज करते हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, लेकिन इस कंजक्टिवाइटिस में बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। उससे जो है आंखों के परतें जो होती है लेयर्स कमजोर हो जाती है, कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो आपको जब कॉर्निया में धब्बे आने लगते हैं, जो काले पुतले धब्बे आए, तब जाके हम सोचते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी देना है कि नहीं देना है। वो केवल डॉक्टर लिख के देगा, तभी आपको डालनी चाहिए, अपने मन से अपनी तरफ से नहीं डालनी चाहिए।
1: जी, हमारे पास एक और सवाल आया, वो ये कह रहे हैं कि जो घरेलू इलाज होते हैं वो कहाँ तक सही होते हैं? कई लोग बोलते हैं जब कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो सिंदूर आंख में लगा ले तो उसे सही हो जाता है, तो ये कहाँ तक सही है?
0: जैसे हम बताते आ रहे हैं कि ये बीमारी जो है अपने आप ठीक हो जाती है, हफ्ते दो हफ्ते लग जाते हैं इसमें, और जो है ऐसे घरेलू ट्रीटमेंट जो है कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि वही ऐसी चीजें होती है जो आंख को साफ करने वाली चीजें, वो यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है आई टोन यूज करते हैं, बहुत अच्छा होता है, नई बॉटल लीजिए और उससे भी आपकी आंखें सफाई हो सकती है। बहुत से लोग जो है गुलाब जल यूज करते हैं घरों में, उसमें भी मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि गुलाब जल वही यूज करें जो अभी अभी बनी हो और शुद्ध हो, उसमें जो है कोई केमिकल ज्यादा ना हो, तो यूज कर सकते हैं, आंख की सफाई उससे भी हो जाएगी। सबसे अच्छी घरेलू दवाई आपके लिए जो है आंखों को साफ पानी से धोना, वो सबसे अच्छा फायदेमंद होता है इस वाले कंजक्टिवाइटिस के लिए।
1: जी, जो हम पीने वाला पानी पीते हैं उससे धो लें,
0: उससे भी धो सकते हैं। रनिंग वाटर, जो टैप वाटर है उससे धोजिए, स्टिल वाटर से नहीं धोना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा सर, एक सवाल आया है सरिता का चंडीगढ़ से, और वो ये कहती है कि अगर एक बार ही आई फ्लू हो गया है तो क्या फिर ठीक होने के बाद दोबारा भी आई फ्लू हो सकता है?
0: नहीं, दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है जिन लोगों को एक बार आई फ्लू होता है उनके ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपोज रहते हैं।
1: जी,
0: क्योंकि ये ऐसा बीमारी है वायरल का, इसका जो है एंटीबॉडी नहीं बनते हैं, जैसे हम वैक्सीन यूज करते हैं वैसे स्किल नहीं होता है, तो बार बार आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जिनको एक बार हो गया उनको तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए, जिससे कि दोबारा उनको इन्फेक्शन नहीं हो, दूसरे सीजन के आने से पहले ही जो है सारे जो है प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए।
1: जी सर, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तब वहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में बच्चों को क्या आप बोलेंगे सावधानियां रखें, और उनके पेरेंट्स के लिए भी क्या आप मैसेज देना चाहेंगे?
0: उसमें यह है कि जैसे हम इस बार भी देख रहे हैं कि बच्चे काफी मात्रा में आ रहे हैं कंजक्टिवाइटिस से, इसमें क्योंकि बच्चे स्कूल में रहते हैं, एक ही क्लास में ज्यादा बच्चे साथ में रहते हैं, तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और उनको जो है संभालना भी मुश्किल होता है। बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे को टच करते ही है, लेकिन एज ए पेरेंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को पहले या दूसरे दिन में जो स्कूल ना भेजें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि स्कूल में डिस्कम्फर्ट भी नहीं फैलेगा। इसमें एक चीज जरूरी है कि बच्चों को समझाना कि सफाई रखें और आंखों को मलना नहीं है, क्योंकि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आंखों को मलेंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आज के सीजन में यह है कि स्विमिंग पूल खुला रहता है, यदि बच्चे स्विमिंग करेंगे तो इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है और लोगों को भी। जिनको कंजक्टिवाइटिस हो जाती है उनको स्विमिंग पूल यूज नहीं करना चाहिए, स्विमिंग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा इस सीजन में लोगों को स्विमिंग जो है अवॉइड करना चाहिए।
1: जी सर बिल्कुल। यहाँ पर एक छोटा सा हम म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं ये एक गीत, और आज का हमारा टॉपिक है सीजनल आई फ्लू एक्यूट कंजक्टिवाइटिस।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर
1: 102.6 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में आज मैं हूं आपके साथ मस्त मलंग आरजे श्वेता। और रेडियो डॉक्टर में आज का हमारा टॉपिक है आई फ्लू। डॉक्टर साहब आपका भी एक बार फिर से स्वागत है स्टूडियो में। और जिस तरह से हम लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे, इतने पेशेंटली आप उनके जवाब दे रहे हैं और इतने अच्छे से, हमारे पास और भी सवाल आए हैं। और ये कहते हैं कि नमस्ते डॉक्टर साहब, इफ आई वॉन्ट टू कंसल्ट स्पेसिफिकली यू इन एम्स फॉर माई आई प्रॉब्लम, हाउ कैन आई डू दैट। ये रमेश ने दिल्ली से मैसेज भेजा है।
2: नहीं, लोगों को ये भ्रांति रहती है कि एम्स में जो है बहुत दुविधा होगी अपॉइंटमेंट लेने में। हमारे पास जो है अपॉइंटमेंट का सिस्टम भी है, आप अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। और आरपी सेंटर में जहां आंखों का डिपार्टमेंट है, आप डायरेक्ट

0: वॉक इन कर सकते हैं। सुबह जो है 8:30 हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू होता है और 10:30-11 बजे चलता रहता है।
1: हमारे पास और भी बहुत से जो है सवाल आए थे और कॉल्स भी आ रही हैं। तो सर, कंजंक्टिवाइटिस जब हो जाता है एक बारी, उसके बाद आपने बोला वो दोबारा भी हो सकता है अगर आप सही से अगर उसका क्योर नहीं करेंगे, जब हम उनके लिए दवाइयां डाल रहे हैं सर, तो कितना हार्मफुल हो जाता है अगर दो बार भी हो जाए आंख की पुतली के लिए या आंख की नसों के लिए?
0: नहीं, जहां तक ये कंजंक्टिवाइटिस है, लकीली काफी सेफ रहता है। इस पर हम देख रहे हैं कि जितने हमारे मरीज आ रहे हैं उनकी सीवियरिटी, हम कहते हैं ना बहुत गंभीर, गंभीरता इसमें कम है इस बार लकीली जो है। बहुत सारे मरीजों को जो है केवल जो है सफेद पार्ट, जो आंखों का सफेद पार्ट है तो उसमें इन्फेक्शन होता है, उसी को हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं।
1: जी जी।
0: कभी कभी जो काली पुतली में इसका असर हो जाता है तब जाके जो है बीमारी ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि सफेद धब्बे आ जाते हैं आंख के ऊपर, उसको साफ होने में बहुत साल लगते हैं और धीरे धीरे आपकी नजर कम हो जाती है। लेकिन आपको बार बार कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो फ्यूचर में जो है आपको ड्राइनेस होने के चांस रहते हैं। तो ये ड्राइनेस जो है एक बार हो जाए ऐसी बीमारी के कारण तो फिर उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है, फिर आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको प्रिकॉशन रखना है कि कोई चीज जो है क्रॉनिक ना हो जाए।
1: सर, हमारे पास एक कॉलर है, जानते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
2: मैं सुनील जुंदेजा बोल रहा हूँ, एक्चुअली लक्ष्मीनगर से।
1: जी।
2: मेरा आरती पेशेंट हूँ। तो मेरा 2015 में कैटरिक का ऑपरेशन हुआ था।
1: जी।
2: तो उसके बाद कुछ टाइम तो ठीक रहा, उसके बाद ना कुछ धुंधलापन सा आने लग गया। उसके बाद मैंने आर्मी हॉस्पिटल है RR, वहाँ पे मैंने लेजर करवाया था। उसके बाद थोड़ा क्लियरिटी तो आई है, लेकिन उसके बाद भी अभी थोड़ा दिक्कत है। मतलब एक बार उसको चेकअप करा लेना चाहिए कि वो दोबारा सही से हुई है कि नहीं हुई, मतलब लेजर।
0: हाँ हाँ, आप जो सुनील जी, आप चेकअप करा सकते हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं जितने भी RP पेशेंट होते हैं उनकी जो है नजर धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि बीमारी जो है नस को खराब करती चली जाती है। जैसे आप कह रहे हैं आपके दोनों आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, तो कभी कभी जो झिल्ली होती है जिसके ऊपर हम लेंस रखते हैं वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, तो उसको लेजर से सफाई कर देते हैं। लेजर की सफाई नॉर्मली एक ही बार जरूरत पड़ती है, दोबारा जो है नहीं पड़ती। फिर भी जो है आपके केस में हम एक बार चेक कर सकते हैं और जो है बता सकते हैं कि क्या कारण है किससे नजर आपकी कम हो रही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक और मरीज थे हमारे जो उन्होंने क्वेश्चन किया था, आप जो है लो विजन एड यूज करेंगे तो जितनी भी नजर आपकी बची हुई है वो नजर हम आपको बढ़ा करके आपको देखने में सुविधा दे सकते हैं।
1: तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल जानते हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार, मैं प्रिया चड्ढा बोल रहा हूँ।
1: जी,
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार चड्ढा जी, बहुत नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब, जब ये आई फ्लू होता है, कंजंक्टिवाइटिस होता है, तो काला चश्मा पहनने के लिए बोलते हैं, तो क्या स्पेसिफिक मेडिकेटेड होते हैं या घर में जो गॉगल्स यूज करते हैं वो पहन सकते हैं? दूसरा, हमारे फैमिली मेंबर को हुआ है, तो वो जो आई ड्रॉप यूज कर रहे हैं अगर किसी और को होता है तो वही यूज कर सकते हैं या के अलग से नया लेना पड़ेगा?
1: जी, अगर आप सुन रहे होते मतलब शो, तो कि डॉक्टर साहब ने दोनों का ही जवाब दे चुके हैं।
0: चड्ढा जी, हम दोनों का जवाब दे चुके हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ड्रॉप जो है मिक्स नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट आपको एक आंख के लिए दूसरी और दूसरे आंख के लिए दूसरी ड्रॉप यूज करनी चाहिए। जहां तक काला चश्मा है, कोई भी चश्मा यूज कर सकते हैं। हमारा जो आइडिया ये है कि चश्मा होगा तो हाथ बार बार आपकी आंखों में नहीं लगेगा, लेकिन जिन लोगों को जो है रोशनी में देखने में दुविधा आती है उन लोगों को जो है गॉगल्स लगाना जरूरी है, काला चश्मा, जिससे कि लाइट आंख के अंदर कम पड़े। सुविधा के लिए कुछ कोई भी चश्मा, प्लेन चश्मा भी लगा सकते हैं, जिससे कि आंखों में प्रोटेक्शन हो जाए।
1: जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो।
4: हाँ मैम, प्रणाम
1: जी। क्या नाम है आपका और क्या सवाल है आपका?
4: जी, सतीश पांडे गार्डनिंग से बात कर रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या सवाल है?
4: मैम, 2 दिनों से एक महिला को आंख में इन्फेक्शन हुआ है।
1: जी।
4: और उसका एक छोटा बेबी भी है, मतलब वो बेबी का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही है, वो क्या करना पड़ेगा?
0: हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया।
4: नमस्ते सर।
0: नमस्ते यार, कैसे हो आप?
4: जी बिल्कुल बढ़िया
0: है। मैं चाहता हूँ कि जो मदर है माना बेबी को ठीक से केयर भी नहीं कर रहे, जैसा हम बोलते आ रहे हैं कि बेबी की आंखों को जो है साफ पानी से धो के रखेंगे और मदर अपने हाथों को साफ रखेंगे तो ये बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यदि वो अपनी आंखों को टच करती है या आंखों का जो कीचड़ है साफ करती है, उसके बाद हाथ धो ले तभी बेबी को पकड़े, तो चांसेस चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
4: मतलब रात को बेबी को लेकर सोना पड़ता है, हाँ, छोटा है, एक साल का है,
0: वो तो सबको करना पड़ता है, लेकिन आप अपने हाथों को धो के रखेंगे, सोने से पहले हाथ धो लेंगे तो ये चांसेस जो है इन्फेक्शन के कम रहेंगे। और अपने जो जिससे बच्चे को साफ करते हैं, बहुत से देखें मदर अपने पल्लू से बच्चे की आंख साफ कर

0: सकता है, वो नहीं करना चाहिए। उसके अलग से टॉवल रखिए बच्चे के लिए, अलग से रुमाल रखिए, और उसको जो है छोटा सा एक बेडशीट और जो आपका वो है पिलो है अलग रखेंगे, तो बच्चा जो है बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका सवाल। हेलो
2: हेलो, नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
0: नमस्कार नमस्कार भैया, बोलो।
2: डॉक्टर साहब रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर नई दिल्ली से।
0: हाँ हाँ,
2: मेरा सवाल ये है कि ये आई फ्लू या कंजेस्टिव वाइसिस जो है
0: हाँ,
2: ये एयर भी होता है क्या? और अगर किसी को हुआ हो उसकी आंखों में देखने से आई टू आई भी हो सकता है, क्या बताने का
0: कष्ट
1: करें? जी
0: ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये छूने से फैलता है और देखने से नहीं फैलता है। देखने से तो आदमी को प्यार फैलता है, आपको बीमारी नहीं फैलती भैया।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। यहाँ पर एक छोटा सा हम म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं ये एक गीत, और आज का हमारा टॉपिक है सीजनल आई फ्लू एक्यूट कंजक्टिवाइटिस।

0: 102.6 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज मैं हूं आपके साथ मस्त मलंग आरजे श्वेता, और रेडियो डॉक्टर में आज का हमारा टॉपिक है आई फ्लू। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
1: जितेंद्र दोसर से ग्राम मऊतेश्वर जिला हरिगढ़ से बोल रहा हूँ
0: जी। क्या सवाल है आपका?
1: सर मैं दोनों आंखों से ब्लाइंड पर्सन हूँ, मेरा 11 काला मोतिया का बोलते हैं जो काला पानी है, उसकी 2 सर्जरी हो चुकी है, 11 गुरु नानक आई सेंटर गांधी आई।
2: तो अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है?
1: अब सर घर बैठे हैं।
2: तो उसमें यदि आप चाहो तो एक बार जो एम्स दिल्ली है वहाँ के आई हॉस्पिटल आरपी सेंटर में आ सकते हो। आजकल एक ऐसे डिवाइस हमारे पास है जो आप लगाएंगे उस डिवाइस को तो आपके 1 मीटर या 2 मीटर के डिस्टेंस में आप जो है लोगों को पहचान सकते हैं उस डिवाइस के थ्रू। यहाँ तक कि आप कलर पहचान सकते हैं और जो है लोगों के बारे में पता चल सकता है कितना हाइट है, क्या डिस्टेंस है, कलर क्या, ये भी पता चल सकता है।
1: एम्स में?
2: हाँ हाँ एम्स में।
0: तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और डॉक्टर साहब हमारे पास मैसेज आया है और ये पूछ रहे हैं कि आप कोई एक ऐसा योग जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं आई हेल्थ के लिए। प्रवीण ने महाराष्ट्र से मैसेज भेजा है।
2: तो नॉर्मली जो है आई हेल्थ के लिए योग जो है काफी फायदामंद होता है। हमने एम्स में बहुत सारे रिसर्च किए हैं योगा के द्वारा जो है ग्लोकोमा बीमारी का कंट्रोल करना, आंखों का प्रेशर कंट्रोल करना, ये बहुत ही आजकल जो है कॉमन है, वर्ल्ड ओवर लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आराम से जो है कोई भी एक्सरसाइज आंख के लिए कर सकते हैं, जैसे आंख बंद करके आंखों को चारों तरफ घुमाना, पलकों को बार बार जो है झपकना अपने जानबूझ करके, या फिर दूर देखना। आप जो है 5 मिनट तक दूर देखते रहेंगे उसके बाद आंख बंद कर लेंगे, तो ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है जिससे आपकी आंखों के मसल जो है ठीक हो जाते हैं और आंखों की जो है दुविधा भी कम हो जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास लगातार कुछ जो सवाल है वो रिपीटेड आ रहे हैं कि किस तरह से अगर पूरे परिवार को हो जाता है तो हम क्या क्या जो प्रिकॉशंस है वो ले सकते हैं, और किस तरह से जो घर की महिला है उनको अगर हो जाता है तो फिर क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं।
2: हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही कैसे वैलिड है, क्योंकि घर की महिला जो होम मेकर है उसको हो जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि सारा काम तो वही करते हैं।
0: बिल्कुल।
2: तो ऐसे वजह से हम कह रहे हैं कि जो कपड़े हैं जो शेयर करते हैं, जो टेबल्स हैं उसको बार बार साफ करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रखें। तो मेन मुद्दा यह है कि सफाई कैसे रखी जाए, आपके हाथों को कैसे साफ किया जाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाथों से या जो टेबल्स हैं उसके थ्रू फैल सकता है।
0: जी।
2: जैसे मैंने कहा था घर में जो सबसे ज्यादा लड़ाई जो है आपके रिमोट के लिए होती है और रिमोट में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है, तो उसको साफ रखना, उसको सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है तो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा शुरू में 2-3 दिन इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और यदि सभी को हो गया फिर तो जो है आपको ये प्रिकॉशन रखना है कि आपको कोई और बीमारी नहीं हो जाए आंखों में, क्योंकि जब भी आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है कंजक्टिवाइटिस का, ऊपर से कोई भी बीमारी इसमें लग सकती है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, आपने गलती से जो है स्टीरॉयड ड्रॉप डाल दिया तो आंखों में अल्सर हो सकता है।
0: अच्छा।
2: उससे आपकी नजर खराब हो सकती है, तो ये देखना है कि एक्स्ट्रा कोई चीज उसमें जुड़ने जाए या कॉम्प्लिकेशन हो जाए।
0: जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो
3: हेलो
0: जी, अपना नाम।
3: नमस्कार जी, मैं सतीश कुमार लोधी रोड से बोल रहा हूँ।
0: हाँ, जी क्या हाँ, सवाल है आपका?
3: डॉक्टर साहब मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। मैं ये अभी आपने जो बोला कि ये डिवाइस लगता है, क्या मुझे भी इसका कुछ फायदा हो सकता? और दूसरा जी आई फ्लू में क्या गर्म पानी से भी आंख साफ कर सकते हैं? 2 क्वेश्चन है मेरे।
2: हाँ, पहली बात तो ये है कि जो डिवाइस हमारे पास है वो आप आइए, आपको हम जो है ट्रायल देते हैं, यदि आपको उससे कुछ फर्क महसूस होता है तो उसके लिए आप जो है कर सकते हैं। दूसरा आप कह रहे थे कि जो गर्म पानी से आंख धो सकते हैं, लेकिन ऐसे में जहां इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रहा हो, आंख में लाली हो, सूजन हो, ठंडे पानी से धोएंगे तो ज्यादा आराम मिलेगा आपको।
3: ठीक है,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब वक्त जो है वो हमेशा ही कम पड़ता है और सवाल बहुत सारे हो जाते हैं, जाते जाते अगर आप आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात जो हमसे छूट गई हो, कोई भी इम्पोर्टेंट बात या जो आप टिप देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को, तो प्लीज आप जरूर बताइए और एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए।
2: मेरे ख्याल से हमने श्वेता जी सारा कुछ कवर कर लिया, जहां तक प्रिकॉशन लेना है कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो कैसे अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि पहला इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप को कैसे बचाना चाहिए। यदि आप अपने आप को बचा सकते हैं मतलब कि सारे जो है इन्फेक्शन फैलने से बचा सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, जिनको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, उनको क्या प्रिकॉशन लेना है जो हम बता रहे थे, अपने आंख की सफाई रखना जरूरी है, यदि आंख में आपको धुंधलापन आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ही आवश्यक है, और बाहर निकलते तो काला चश्मा पहन के निकलिए, और जैसे घर आते हैं तो सबसे पहले काम जो है हाथों को धो लीजिए साबुन से या रनिंग वाटर से, यदि आंखों में कीचड़ आ रहा

0: तो आंखों को धो के साफ रख लीजिए।
1: तो ये जितने भी आपने टिप्स दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतने सारे सवालों के, इतने सारे फोन कॉल्स के आपने बड़े आराम से और बहुत ही पेशेंटली जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए।
0: नहीं, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि श्वेता जी आपने इतना अच्छा संचालन किया आज। और ये टॉपिक ऐसा है कि हमें नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो सबको ये जो है जानना जरूरी है। जितना प्रिकॉशन लेते हैं उसके बावजूद भी हो सकता है, होने के बाद प्रिकॉशन लेना भी बहुत जरूरी है, जो हम यहाँ बात करते आ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।
1: आज हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में मौजूद थे एक्सपर्ट के तौर पे डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, आरपी सेंटर एम्स। और आज का जो टॉपिक था वो था सीजनल आई फ्लू एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। तो दोस्तों, यहीं पर अब हमें दीजिए इजाजत, अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, 4 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत हुई। संसद में नीट

पर लीक मामले को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद कल अपना अनशन समाप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। देशभर में आज आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस विकसित भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समीह से खेलेंगी। शतरंज में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेल का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन ने किया। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि अगला कार्यक्रम है अल्फाजन।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और अभी जिसकी वाणी आप सुन रहे हैं वो हूँ मैं, यानी आपकी मस्त मस्त आरजे माला लेकर आई हूँ प्रोग्राम अल्फा जेन। अल्फा जेन में हम बात करते हैं यूथ से जुड़ी हुई, अल्फा जेन में हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जो हमारी यंगर जेनरेशन के बीच में बड़े ही पॉपुलर है, जिन पर बात करने के लिए वो हमेशा तैयार है, जिन चीजों के लिए वो हमेशा ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट करें। तो आइए, आज आपके पार्टिसिपेशन की दरकार है, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे एआई के इस दौर में आपने अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एक्सपैंड किया, क्या कुछ क्रिएटिव बनाया, बताइए मुझे। नंबर है मेरा 9868107070, 9868107070। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जुड़ जाइए मस्त मस्त आरजे माला के साथ प्रोग्राम अल्फा जेन में, और बताइए आपकी क्रिएटिविटी में आपने क्या कुछ खास कर दिखाया है विद द यूज ऑफ AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फटाफट से मैसेजेस करते जाइए और आपके मैसेजेस मैं पढ़ूंगी यहाँ पर लाइव अपने इस शो में जिसका नाम है अल्फा जेन। लेकिन फिलहाल अभी समय है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का, अभी से बस कुछ ही समय में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, और उसके बाद वापस आकर अल्फा जेन में आपके मैसेजेस को लाइव पढ़ूंगी मैं यहाँ पर आकाशवाणी FM रेनबो पर।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है।

इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्त वाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिर दर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खानपान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और

कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना। मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

एआई के इफेक्ट ने हिला कर रख दिया है हर किसी को। अब अगर बिजली गिरवानी हो कहीं या फिर आग लगवानी हो, एआई का इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और एआई के इन इफेक्ट्स के जरिए जिस तरीके से नए नए वीडियोस का क्रिएशन हो रहा है, हर दिन हम कुछ नया ऐसा देख रहे हैं जिसे देख के ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड, ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। मतलब, और अगर ऐसी कोई चीज जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते वो आपकी नजरों के सामने आ रही है, तो देन ऑफ कोर्स आपको लगेगा ओह माय गॉड एंड थैंक गॉड इट इज फ्राइडे। फ्राइडे के दिन आप है अल्फा जिन में मेरे यानी मस्त मस्त आरजे माला के साथ, और फ्राइडे के दिन हम करते हैं फुल ऑन मस्ती, क्योंकि फ्राइडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसके बाद हमें बड़ी दिलासा मिलती है, बड़ी सुकून मिलता है कि हाँ अब वीकेंड आ रहा है और वीकेंड में हमें जो करना है हम वो करेंगे, जो हम नहीं कर पाए वीकडेज में वो हम वीकेंड में करके ही दिखाएंगे, और वो आप कर ही डालते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे यूथ हैं जो ये सोचते हैं कि वीकेंड के दिन में हम कुछ ऐसा करेंगे जो क्रिएटिव हो, एआई का इस्तेमाल करेंगे, बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आपने क्या सोचा, क्या किया आपने, हमें भी बता दो भाई, और हमें बताओगे तो पूरी दुनिया को पहुंचेगा ये संदेश आपका। तो फटाफट से मुझे ये बता दो कि आपने एआई का इस्तेमाल करके क्या कुछ नया क्रिएट किया है, कुछ नया क्रिएट किया है, कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो अपने आप में वाओ इफेक्ट देता है, तो हमें भी बता दो। नंबर है 9868107070, 9868107070, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जुड़ जाइए अपनी मस्त मस्त आरजे माला के साथ, अपनी आवाज को दीजिए ग्लोबल पहचान, क्योंकि आपके मैसेजेस जब पहुंचेंगे पूरी दुनिया तक तो उन्हें भी तो पता चले कि इसी दुनिया में एक बहुत महान क्रिएटिव इंसान है जिसका नाम है डैश डैश डैश, और जिन्होंने किया है डैश डैश डैश। अब इस डैश डैश डैश में आपको अपना नाम और अपनी क्रिएटिविटी को डालना है। नंबर फिर से सुन लो, 9868107070, 9868107070।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: इस प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: समय हो चुका है 4:24। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं AI के इफेक्ट के बारे में, AI के यूज के बारे में। और जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी भागीदारी चाहिए यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमारा आज का जो युवा है, हमारे जो यूथ हैं, वो AI का इफेक्ट या AI का जो इस्तेमाल है उसको किस तरह से अपने कामों में कर रहे हैं और क्या कुछ क्रिएटिव या नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैसेज तो हमारे पास आने शुरू हो गए, मैं पढ़ती हूँ मैसेज। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मैसेज करना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप नहीं किया है तो फटाफट से नंबर नोट कर लो और बता दो कि आपने भी क्या कुछ कमाल कर दिखाया है AI का इस्तेमाल करके। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 9868107070 9868107070 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और जुड़ जाइए अपनी मस्त मस्त आरजे माला के साथ और बताइए आपने क्या कुछ खास कर दिखाया है AI का यूज करके। ये मैसेज जो हमें आया है, ये भेजा है हमें पूजा राम चक्रवर्ती ने। इनका कहना है कि मैंने AI के यूज से अपने बहुत सारे आइडियाज को क्लियर किए हैं। वो मुझे ऐसे सवालों के जवाब बहुत आसानी से देता है जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती या फिर शायद मैं अपनी लाइफ में उन बातों को कभी जान ही नहीं पाता, जैसे कि मेटाफिजिक्स, ऑल द माइथोलॉजी और भी बहुत कुछ। भले ही

बाहर कुछ क्रिएट नहीं कर पाया हूँ और नहीं मैंने अभी तक क्रिएट किया है एआई से, बट मेरे अंतर मन में बहुत कुछ क्रिएट और क्लियर हुआ है। भाई ये तो आजकल के युवाओं का कहना है ही, क्योंकि एआई का इस्तेमाल करके बहुत सारे सवालों के जवाब जिसके लिए हम पहले दर दर भटकते थे, अब उसके लिए हमें दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही इनोवेटिवली और बहुत ही क्रिएटिव वे में हम न सिर्फ अपने सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं, बल्कि उसके आगे भी एक और फर्दर स्टेप ले लेते हैं। आपने भी क्या वो फर्दर स्टेप लिया है, कुछ ऐसा क्रिएट किया है जिससे लोगों को चौंका दिया हो? अगर ऐसा कुछ किया है तो हमें बता दो, मैं कर रही हूँ इंतजार। ये है प्रोग्राम अल्फा जिन, मैं हूँ आपके साथ मस्त मस्त आरजे माला, और नंबर है मेरा 9868107070, 9868107070।

0: पुरानी सिंगर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
7: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
8: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
9: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
8: म्यूजिक मस्ती।
10: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
11: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
8: म्यूजिक मस्ती।
12: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: तरफ एआई के इस्तेमाल से हम बहुत कुछ क्रिएटिव पा लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा हमें मिल जाता है जो हम चाहते हैं इमेजिनेशन में कि हमें मिल जाए, लेकिन अभी तक पॉसिबल नहीं था। बट विद द यूज ऑफ एआई अब आप वो सब कुछ कर पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बच के रहने की भी बहुत जरूरत है एआई से जुड़े हुए उन नेगेटिव चीजों से, जो कि कई बार आपको इस दुविधा में डाल देते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो सच भी है या नहीं। ये जो हकीकत और झूठ के बीच का जो फर्क है ना, एआई की वजह से कई बार बहुत बहुत छोटा, बहुत माइनर रह जाता है और कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात यहां पर जो नहीं है वो ये है कि आकाशवाणी रेनबो के थ्रू आप पहुंचते हैं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रीच जो है वो कितनी बड़ी है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगला मैसेज मैं जिनका पढ़ने वाली हूं, वो मैसेज हमें आया है सऊदी अरेबिया से, और मैसेज हमें भेजा है उमेश जी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उमेश जी हमारे साथ इतनी दूर से जुड़ने के लिए। और ये देखिए, टेक्नोलॉजी का ही असर है कि अब दुनिया दूर नहीं, एकदम पास हो गई है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग करो और वहां से फोन उठता है और आपको पता चलता है कि आप तो किसी दूसरी कंट्री में पहुंच गए। खैर, वैसे उमेश जी ने जो लिखा है वो भी बहुत अमेजिंग है। उमेश जी कहते हैं, गुड टॉपिक सिलेक्टेड बाई यू एंड मेड द प्रोग्राम वेरी इंटरेस्टिंग। रिगार्डिंग एआई यूज, इट इज रियली यूजफुल माई डेली ऑफिस वर्क एज वेल एज पर्सनली एंड न्यू थिंग लर्निंग। तो मतलब अपनी डेली लाइफ में जिस तरह से ऑफिस के कामों के लिए एआई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे इनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। आई यूज एआई टू ड्राफ्ट माई ऑफिशियल लेटर्स एंड रिव्यूइंग ऑफ लेटर्स एटसेट्रा। मतलब क्रिएटिवली न सिर्फ ऑफिशियल लेटर्स ड्राफ्ट करते हैं बल्कि जो लेटर्स इनके पास आते हैं उनको रिव्यू भी करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। मैं आपको एक बताती हूँ किस्सा। हमारे घर के पास एक लड़का हुआ करता था जो लैंग्वेज में बहुत पुअर था। मतलब सिचुएशन ये थी कि अंग्रेजी के हाथ पैर तोड़ने वाली बात जो है वो वाला हिसाब किताब था, लेकिन आज की डेट में विद द यूज ऑफ एआई वो क्रिएटिवली जिस तरह से रिज्यूमे मेक करता है, बनाता है, और जिस तरह से वो अलग अलग लेटर ड्राफ्टिंग के काम करता है या कंटेंट राइटिंग के काम करता है, वो अपने आप में अमेजिंग है। और इस तरह की बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें जो हैं वो लोग कर रहे हैं एआई के ज़रिए। आप भी कुछ कर रहे हो क्या? तो बताओ ना पूरी दुनिया को। आपको पता नहीं है क्या, आकाशवाणी का हमारा जो चैनल है ना, हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचता है और आप हमारे शोज को बिल्कुल लाइव सुन सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो अभी न्यूज़ ऑन एआईआर का ऐप डाउनलोड कीजिए और एफएम रेनबो दिल्ली को सिलेक्ट कीजिए। ना सुनाई दे आपको मेरी यानी मस्त मस्त आरजे माला की ये आवाज, तो फिर नाम बदल देना मेरा। ऐसे नाम तो मैं यही रखूंगी क्योंकि आप प्रोग्राम भी जरूर सुन पाएंगे। तो अगर आपके पास भी है कुछ ऐसा बताने को एआई से रिलेटेड जो आपने क्रिएट किया है, तो झटपट व्हाट्सएप करके बता दो 9868107070 पर, 9868107070।
1: बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

ध्यान दे जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई ना।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जेन विद मी योर मस्त आरजे माला। और हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पर एआई के बारे में। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों से मैसेजेस के थ्रू ये जानने की कोशिश की कि एआई का इस्तेमाल लोग किस किस तरह से कर रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ क्रिएटिव किया है अपनी लाइफ में, क्या कुछ चेंज लेकर आए हैं। और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए भी हैं और आ भी रहे हैं और आएंगे भी, क्योंकि अब मैं बताने वाली हूँ वो मैजिकल नंबर जिस पर आप व्हाट्सएप करके हमें बता देंगे कि आपने एआई का इस्तेमाल करके क्या कुछ क्रिएटिव किया है। नंबर नोट कर लो जी, 9868107070, 9868107070। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जुड़ जाइए मस्त मस्त आरजे माला के साथ अल्फा जेन प्रोग्राम में। और आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले व्हाट्सएप मैसेज की तरफ जो हमें भेजा है विशाल मल्होत्रा ने सिरसा हरियाणा से। कहते हैं कि मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर मैं काम करता हूँ। गूगल तो अपने आप में एक है ही, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू ये एआई का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें ये उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें डेवलप करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और ये सारी चीज़ें जब वो क्रिएटिव कर रहे होते हैं तो उनको इस बात का भी एहसास होता है कि लाइफ में हम हर पल कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। और अगर ज़िंदगी में चीज़ें आसान हो रही हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम एफर्ट्स करना छोड़ दें। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अब जो हमें नया मिला है उसके बाद नए स्टेप पर आगे बढ़ने के लिए हमें फिर कुछ और नया ढूंढना होगा और फिर कुछ और नया करना होगा, न कि एआई के इस्तेमाल के बाद चीज़ें आसान होने के बाद हम रुक जाएं। क्या बात कही है सर आपने, थैंक यू सो मच। आज बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, बहुत सारे लोग बताने को भी तैयार हो गए कि उन्होंने क्या कुछ नया किया। तो बता दो ना, 9868107070 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जुड़ जाइए मस्त मस्त आरजे माला के साथ प्रोग्राम अल्फा जेन में। कहाँ सुन रहे हो? आकाशवाणी रेनबो और कहाँ।

कभी-कभी ऐसा लगता है कि नेचुरल चीजों पर भी अगर एआई का एकाधिकार साबित हो जाए तो फिर कितना मजा आ जाए। बात थोड़ी सी आपको घुमावदार लगी होगी, सीधे तरीके से बताती हूँ। अब देखो, हम सोचते हैं कभी कभी कि बहुत गर्मी हो रही है, बारिश हो जाए। अब हम एआई के थ्रू वीडियोस में या कहीं पर भी किसी फोटो में हम वो इफेक्ट तो दिखा सकते हैं, लेकिन क्या हम रियल लाइफ में एआई का इस्तेमाल करके बारिश करवा सकते हैं? कितनी आगे की बात है, नहीं? वैसे फायदा तो बहुत हुआ है, विकास राजपूत को गाजियाबाद से बहुत फायदा हुआ है भाई। अब कैसे फायदा हुआ है बताती हूँ मैं आपको। एआई की बात कर रहे हैं हम, एक्चुअली मैंने आपसे पूछा है ना आज अल्फा जेन में कि एआई का इस्तेमाल करके आप क्या कुछ खास कर रहे हैं, क्या विशेष किया आपने क्रिएटिव। तो विकास राजपूत हमें बताते हैं कि अंग्रेजी में मैडम बहुत दिक्कत होती थी, बट अब कोई दिक्कत नहीं है, एआई का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक तो ये फायदा हुआ, दूसरा फायदा ये बताते हैं कि इनको अपना घर डिजाइन करने के लिए आर्किटेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, इन्होंने एआई का इस्तेमाल किया और क्या अमेजिंग रिजल्ट इन्हें मिला है। ओहो, कहने क्या क्या बात है सर। एआई का इस्तेमाल अगर इस तरह से किया जाए कि हमें फायदे ही फायदे हो जाएं, तो कितनी बड़ी बात है ना, कितनी महान बात है। तो इस तरह की महान बातें अगर आपके पास भी हैं बताने को, कुछ खास आपने किया है एआई का इस्तेमाल करके, तो हमें फटाफट से बता दो। फिलहाल मेरा मन जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बारिश को इंजॉय करने वाला हो रहा है, तो मैं यहाँ से गाने बजा के देखती हूँ बारिश आज होती है या नहीं।

नाचने का मन करने लग जाता है जब भी हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। उम्मीद नहीं होती मिलने की, लेकिन मिल जाए तो नाचने का मन करता है। बहुत सारे लोग AI का इस्तेमाल कुछ इसी तरह से कर रहे हैं, जैसे कि नहीं हो पाती थी चीजें लेकिन अब कर पाते हैं। लास्ट मैसेज आज का इस प्रोग्राम का ले लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है नार सिंह जी ने, सेक्शन ऑफिसर हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। कहते हैं AI की मदद से बहुत इजीली ड्राफ्ट कर पाते हैं लेटर्स को और उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज अल्फा जिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए अपनी मस्त मस्त आरजे माला को। इसी तरह से AI का इस्तेमाल करते रहिए अपनी बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और टेक्नोलॉजी को इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि वो आपकी स्ट्रेंथ बने, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाए। मस्त मस्त आरजे माला सेज टाटा बाय बाय, और रेनबो सुनते रहिए, फिलहाल नाचते रहिए, बाय।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने टीवी रेटिंग नीति 2026 जारी कर दी है। इसमें भारत में टेलीविजन रेटिंग को विनियमितीकरण करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामा जारी रहने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान में अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुधार लागू होने में की गई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिशा निर्देश दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी नीतियों और गतिविधियों को नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई हैं। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। शतरंज में 5 बार विश्व के चैंपियन विश्वनाथ आनंद के ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेल का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग दिल्ली। वीकेंड इज फाइनली हियर और आप अगर अभी रोड पर निकले हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, दोस्तों से मिलने के लिए निकले हैं या इस खूबसूरत सी शाम को एंजॉय कर रहे हैं, तो वेलकम टू द सिटी लाइट्स। मैं हूं आपकी अपनी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और अगले एक घंटे तक आपकी शाम को हम बनाएंगे और भी स्मूथ, इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग। दिल्ली और दिल्ली के आसपास कहीं इस समय बादल छाए हुए हैं तो कहीं पर हल्की हल्की बारिश ने मौसम को रोमांटिक बना दिया है और कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि अम्ब्रेला अभी निकालें या अभी थोड़ा सा और वेट करें। डोंट वरी, हम है ना दिल्ली एनसीआर में, व्हाट्स हैपनिंग यानी वीकेंड पर क्या हो रहा है खास, कैसा रहने वाला है मौसम का हाल और साथ में आपके फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग्स जो इस फ्राइडे इवनिंग की वाइब्स को देंगे बिल्कुल एक परफेक्ट डोज। जी हाँ, क्योंकि शुक्र है, शुक्रवार है और कई लोगों का वीकेंड आज से शुरू हो रहा है। So relax, drive safe, turn up the volume and let's make this evening brighter with City Lights. सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी FM Rainbow 102.6 पर, और हम सिर्फ आकाशवाणी FM Rainbow 102.6 पर ही नहीं मिलते हैं आपको, हम मिलते हैं आपको और भी कई जगह जैसे कि News on Air App और Waves OTT Platform। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ।

छोटी उम्र बड़े सपने और अगर हुनर भी हो कमाल का तो देश भी सलाम करता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 एफएम पर और मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। और दोस्तों, अगर आप या आपके घर के आसपास स्कूल या कोई भी जो अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने पढ़ाई, खेल, कला, विज्ञान, नवाचार, समाज सेवा या बहादुरी के क्षेत्र में कुछ भी खास किया है तो ये जानकारी उसके और आपके बहुत काम की होने वाली है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2027 के लिए, जिसके लिए जो इनविटेशन आवेदन जो है वो इनवाइट किए गए हैं। और ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने कम उम्र में अपनी प्रतिभा, मेहनत और उपलब्धियों से एक अलग पहचान बनाई है। अगर आप या कोई आपके आसपास इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है ना वो 31 जुलाई है, यानी कि बहुत पास आ चुकी है। आप जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी योग्य बच्चा इस सम्मान का हकदार है तो समय रहते जो है उसको आवेदन कर देना चाहिए। कौन जाने अगली प्रेरणादायक कहानी जो है वो आपके शहर से, आपके स्कूल से, आपके घर से या आपके मोहल्ले से निकलकर पूरे देश के सामने आ जाए, क्योंकि हर बच्चे में एक अनोखी प्रतिभा होती है दोस्तों, और जरूरत है तो बस उसे सही मंच और सही पहचान मिलने की। तो अगर आप किसी ऐसे होनहार बच्चे को जानते हैं तो उसे इस अवसर की जानकारी जरूर दें। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 एफएम पर, क्योंकि आज की छोटी सी जो प्रेरणा है ना वो कल किसी बच्चे की बड़ी उड़ान बन सकती है। और हम तो कहते हैं कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, बस

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको अपने फ्यूचर को खूबसूरत बनाना है तो उसकी शुरुआत जो है वो आपको आज से ही करनी होगी। जी हाँ, यानी तैयारियां जो है वो आपको बहुत पहले से ही शुरू कर देनी होती है। और हम कई तरीके से अपने भविष्य को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने आसपास को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, और जिसका एक आसान तरीका है पौधा लगाना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम में रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है सिटी लाइट्स, आपका इवनिंग ड्राइव शो, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। आजकल आपने देखा होगा कि शहर में कई इलाकों में, खासतौर से दिल्ली और उसके आसपास जो है, पौधारोपण अभियान जो है वो बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो मौसम है, जो मॉनसून का जो मौसम है, ये बहुत अच्छा होता है पौधारोपण के लिए। तो आप ऐसे में अगर कोई भी पौधा लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। स्कूल हो, कॉलोनियाँ हो, पार्क हो, या कोई भी आसपास की ऐसी जगह जहाँ पर आपको पौधा लगाने के लिए जगह मिल सके, तो वहाँ पर आप पौधा ज़रूर लगाएं। क्योंकि पौधा जो है वो सिर्फ

हरियाली नहीं बढ़ाते बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा और बेहतर कल की नींव भी रखते हैं। सोचिए एक छोटा सा जो पौधा है वो आने वाले वर्षों में किसी राहगीर को छांव देगा, पक्षियों का बसेरा बनेगा और हमारी सांसों को और भी ज्यादा ताजगी देगा। इसलिए जब भी मौका मिले तो कुछ करें या ना करें लेकिन एक पौधा जरूर लगाएं, और सिर्फ पौधा ही ना लगाएं, उस पौधे को पेड़ बनता हुआ देखें, यानी उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करें। ये नहीं कि सिर्फ पौधा लगा दिया और उसके बाद उसका ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, समय पर उसको पानी मिले, खाद मिले, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारियाँ भी थोड़ी सी अगर आप उठा लेंगे तो जो आपका फ्यूचर है, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों प्रकृति को दिया गया हर एक छोटा सा योगदान जो होता है ना, वो खुद हमारे जीवन के लिए एक बड़ा उपहार बन जाता है। मुस्कुराइए हर दिन, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा सोचिए और कुछ अच्छा कीजिए, क्योंकि यही है आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी? 102.6 FM आकाशवाणी FM रेनबो।

0: Come to me, boy.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के

0: सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, दिल्ली NCR में आप हमें सुन रहे हैं 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और दिल्ली के आसपास तो हम आपके लिए मौजूद होते ही हैं रेडियो की फ्रिक्वेंसीज पर, लेकिन हमारी आवाज की उड़ान यहीं पर नहीं रुकती है। हम मौजूद होते हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म के जरिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने श्रोताओं तक यानी आप तक जुड़े हुए हैं।

रोला तो पाया हुआ है जी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर से मूड चेंज कर लिया। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अम्ब्रेला को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिएगा, क्योंकि आज और कल जो है ना, आसमान में बादलों की फुल अटेंडेंस रहने वाली है। कहीं हल्की फुहारें तो कहीं बारिश की प्यारी सी दस्तक जो है वो आपका इंतजार कर रही है। हाँ, इसमें गुड न्यूज ये है कि ये जो बारिश है ना, आपको गर्मी से थोड़ी सी राहत दिलाएगी, और जो दिल्ली एनसीआर का AQI लेवल है ना, वो थोड़ा सा अच्छा हो गया है, तो आप खुलकर गहरी सांस ले सकते हैं। जी हाँ, गहरी सांसें लीजिए, अपने जो अच्छी AQI है उसको एंजॉय कीजिए, और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, क्योंकि हम कहते हैं आप कूल रहें, सावधान रहें, और मॉनसून की वाइब्स जो है ना वो एंजॉय करते रहें। मैं हूँ आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगनी कोमल, और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, दिल से कनेक्टेड, हर पल रिफ्रेश्ड। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, आप हमें सुन सकते हैं देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में हमारी न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से, और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आप सभी के लिए मौजूद हैं। तो अभी तो रोला पाया था, आप ये देखिए लोचाए उल्फत भी हो रहा है। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम हैं यहाँ पर आपके साथ हर घंटे, हर दिन, 24 घंटे।

0: आकाश वाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बारिश की फुहारें और ठंडी हवाएं, चाय पकोड़े और वीकेंड, सब कुछ कितना बढ़िया लगता है ना। लेकिन दोस्तों, बारिश अपने साथ सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि थोड़ी सी जिम्मेदारी भी लेकर के आती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, आपका इवनिंग ड्राइव शो, और बात कर रहे हैं डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए कुछ टिप्स की, छोटी छोटी सी आदतों की जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। घर हो या आसपास कहीं पर भी पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होने देना है। कूलर, गमले, बाल्टी, टंकी में जो पानी होता है वो समय समय पर जो है आप बदलते रहें, और सुबह शाम जो है पूरी बाजू के कपड़े आपको पहनने हैं, और जरूरत हो तो मॉस्किटो रेपेलेंट का भी आप इस्तेमाल करें। एक और बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, साफ और सुरक्षित पानी ही हमें पीना है। अगर पानी की शुद्धता को लेकर जरा भी आपको संदेह हो तो पानी को उबालकर या फिल्टर किया हुआ पानी ही आप इस्तेमाल करें। बाहर का खाना खाते समय भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है इन दिनों, क्योंकि खुला और लंबे समय से रखा हुआ जो खाना है ना, वो खाने से हमें इन दिनों बहुत परेशानियां हो जाती हैं। कोशिश करें कि गर्म और घर का बना हुआ ताजा खाना ही खाएं। अगर तेज बुखार, बदन दर्द या लगातार कमजोरी महसूस हो तो खुद से दवा लेने की बजाय डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि खुद अपने आप आपको दवाई नहीं लेनी है। ये रिस्क आप बिल्कुल भी मत लीजिए, चाहे आप कितनी भी जानकारी रखते हो मेडिसिन्स की, लेकिन डॉक्टर के पास ही जाइए सही दवाई के लिए। याद रखिए, बारिश का मजा तभी है जब सेहत भी साथ निभाए। हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और वीकेंड को भरपूर एंजॉय करें। हम तो यही कहेंगे कि बारिश का मजा जरूर लीजिए, लेकिन अपनी सेहत को कभी भी छुट्टी मत दीजिए।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं। कोयल सीते

0: बोली
1: हाय,
0: तेरे छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: कार्यक्रम सिटी लाइट, आपका इवनिंग ड्राइव शो। लेकिन अब कार्यक्रम का समय जो है वो यहीं पर समाप्त होता है, तो कोमल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे यूं ही रेनबो की तरंगों पर मुलाकात। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। नमस्कार।

पेश है अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बलारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। सरकार कल प्रतिनिधि मंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके की मौत की खबर को लेकर अखबार में छपी खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और दिपके पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामा जारी रहने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियों को अंतरिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब स्मिथ से खेलेंगी। शतरंज में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रीय मंडल खेल का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना ने किया है। तो ये तो थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए आईआर एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और दोस्तों, आज मैसेज मसाला मिक्स में कौन सा टॉपिक है मैं आपसे यही बताने वाला हूं, और आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा कि आज कौन सा टॉपिक हम लेकर आए हैं। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बचपन, वैसे तो कहते हैं ना कि बचपन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बचपन के ऐसे अनोखे कौन सा झूठ था जो आपने, आपको लगा ये बोला गया है आपसे। क्योंकि बचपन में कहते थे ना कि अंगूर का अगर बीज आपने खा लिया तो पेट में पेड़ उग जाएगा, या कोई ऐसे फ्रूट का पेड़ जो है वो उग जाएगा अगर आपने उसका बीज खा लिया है। तो इसी तरह के कोई ऐसा झूठ था जो आप में, आपको बचपन में बोला गया था, और आज आपको लगता है कि मेरे साथ तो ये बहुत गलत किया कि हमें बचपन में इस तरह से मूर्ख बनाते थे, इस तरह झूठ बोलते थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ऐसा बात है जो आपसे कभी ऐसा बचपन में किसी ने झूठ बोला हो जो आज भी आपको लगता हो कि यार बच्चा समझ के हमें इस तरह से मूर्ख बना देते थे। तो आप जल्दी से लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। फिलहाल आपके लिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक चला रहा हूँ, और उसके बाद आपके साथ बातों का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। दिल से दिल तक ड्राइव सेफली। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, तो डोंट वरी, आप आराम से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए पहुंचिए, और तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: तक इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर। और आज मैसेज मसाला मिक्स में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर तमन। और आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। टॉपिक है कि बचपन में अनोखे झूठ हमसे बोले गए, है ना। तो बोले गए कि जैसे अगर आपने कोई फ्रूट का बीज या फल का बीज अगर आपने खा लिया, अंगूर के बीज खा लिया, तो पेट में पेड़ उग जाएगा। तो इसी तरह के आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ होगा, कोई झूठ बोला गया होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा कोई झूठ बोला गया है तो वो कौन सा था। और आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जहन में ये होता है कि हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला गया। और जोया ने हमें ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न से ये मैसेज भेजा है। ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं कि जब मैं हुई और मेरे पीछे मेरे तीन और छोटे भाई बहन थे, और जब मैंने उनसे पूछा कि बचपन में कि ये कहाँ से आए, मेरे पेरेंट्स ने ऊपर जो है छत की तरफ इशारा करके बोला कि ये आसमान से आए हैं। और मुझे इतना आज जो लगता है कि मुझे कैसे मूर्ख बनाया गया कि ये आसमान से आए, आसमान से टपके हैं। ओ वाह। और आगे उन्होंने एक बहुत प्यारी सी कविता जो है, पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं और कर भी देता हूं। प्यार एक बीमारी है जो हमें कभी हुई नहीं, प्यारा सा दिल हमने कभी खोया ही नहीं, दर्द एक एहसास है जो भी हुआ नहीं, हम ऐसे ही जिए जाते हैं, हर एक दिन को खुशी से पिए जाते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू सो मच जोया, आपने इस खूबसूरत मैसेज को इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ पिरो के हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप भी हमें भेज सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई बचपन में ऐसा झूठ बोला गया है इंटरेस्टिंग सा, तो आप हमें लिख के भेजिए। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। और हमारे कुछ और दोस्तों ने भी हमें मैसेज भेजे हैं, जैसे नरेंद्र सोनी पटियाला से लिखते हैं, शुभ संध्या। हमारे बचपन का हमसे जो बड़ा झूठ बोला गया था वो है कि गिलहरी के सिर में अठन्नी निकलती है। गिलहरी के सिर में से अठन्नी निकलती है, क्या बात है। यादों की बारिश में भीगा है आज फिर शहर, यादों की बारिश में भीगा है आज फिर से ये शहर, हर एक मोड़ पर बिखरा है तेरी यादों का मंजर, रिमझिम फुहारें पूछती हैं कहाँ गया वो हम सफर, सरफराज अब भी तेरे याद में भीगता है ये शहर। मोहम्मद सरफराज आलम जौकी हट दर्शना बाजार अड़िया बिहार से लिखते हैं, क्या बात है। फिलहाल आपके लिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार। निक्षय

0: तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और अगला मैसेज हमें भेजा है राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से, लिखते हैं कि हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए। तो जनाब आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है, लेकिन आपने ये नहीं भेजा कि आपके साथ अगर बचपन में किसी ने कोई झूठ बोला है, बचपन में बहुत भोले होते हैं ना बच्चे, बहुत मासूम होते हैं, तो उनको अक्सर कभी कभार बेवकूफ़ बनाया जाता है कुछ कहकर, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा कोई ऐसा अनुभव आपके साथ भी हुआ है, अगर हुआ है तो जल्दी से लिखकर भेजिए। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अगला मैसेज हमें भेजा है, किन्होंने भेजा है, ये भेजा है प्रजेंट, नहीं ये मैसेज में इन्होंने अपना नाम नहीं भेजा, मज़हर अली ने भेजा है। अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये तुगलकाबाद विलेज दिल्ली से भेजा है, लिखते हैं कि जंगल में बेरी के बेर में बोला गया था, पर हम कहाँ मानने वाले थे, पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है होना चाहिए। और अगला मैसेज हमें भेजा है जिला मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, ये लिख के भेजा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ने। तो आपने नाम लिख के भेजे, लेकिन आपने ये नहीं लिख के भेजा है, इतने लोग हैं कि आपके साथ बचपन में कोई ऐसा झूठ बोला गया था जिसे आज भी आप याद करके आपके चेहरे पर मीठी सी स्माइल आ जाती है, या आपको लगता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया था। और प्रकाश गोगिया कड़कड़ डूमा दिल्ली से लिखते हैं कि बचपन में हमारी गलियों में एक घूंगा भिखारी बोरी लेकर रोटी मांगने आता था, उसकी आवाज़ सुनकर हम डर जाते थे और माता पिता हमारी शरारतें रोकने के लिए कहते थे कि घूंगा बाबा भिखारी जो हैं वो आ रहे हैं अपने झोले में डालकर तुम्हें ले जाएंगे। और हम सुनते ही कहीं गली में नुक्कड़ पर अगर हमने उसको देख लिया तो हम छत पे भाग जाते थे, या कभी गली के बाहर भी भाग जाते, किसी दूसरे के घर में जाके छिप जाते थे। और आज भी याद आती है उस छोटी सी हंसी मजाक वाले झूठ को, और हृदय जो है रोमांचित हो जाता है। कितने भोले वाले थे ना, कितने सच्चे थे, दिल के कितने अच्छे थे, आज भी है आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर। और अगला मैसेज जो हमें भेजा है वो किन्होंने भेजा है, ये भेजा है हमें मोहम्मद सरफराज आलम ने, एक बार हमें ये भेजा है मैसेज और लिखते हैं कि हाँ बचपन में हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया था, बचपन में खूब हमें बनाया गया, कहा जाता था कि तरबूज अमरूद का बीज मत निकलना, पेट में पेड़ उग जाएगा। मैं तो कई दिनों तक डर के मारे सोचता था कि कहीं मेरे पेट में आम का बगीचा या बाग ना बन जाए। और एक डायलॉग बड़ा क्लासिक था, ज़्यादा टीवी मत देखो आँखें चाकोर हो जाएंगी। क्या बात है, इमेजिन करिए कि ऐसा हो जाता अगर ज़्यादा टीवी देखने से आंखें चाकोर हो जाती तो क्या होता। अब बड़े होकर समझ आया कि हम बच्चों को संभालने के लिए देसी टेक्नोलॉजी थी। बिल्कुल सही कहा कि हमारे बचपन में जब हम शरारते करते थे ना तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये देसी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। और जब भी त्यौहार पर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते थे तो पूजन से पहले अगर कुछ खा लिया तो माता जी कहती थी कि मेरी माता जो है ना वो आँखें फोड़ देंगी। यह हमसे अक्सर कहा जाता था, उस समय खुद को खाने से रोक पाना बहुत मुश्किल होता था। वर्मा जी ने ये मैसेज लिख के भेजा है दिल से, दीवानी धार मध्य प्रदेश से। क्या बात है, बहुत खूब। और शामसुल कमर राही लिखते हैं गंज डुंडवारा से, बचपन कितना प्यारा होता है और उतना ही भोला। बचपन में हम अक्सर देर शाम तक घर के आसपास ही खेला करते थे, थोड़ी देर होने पर माँ आवाज़ लगाती थी बेटा अंदर घर में आ जाओ। हम माँ से और कुछ देर खेलने की जिद करते थे तो माँ प्यार से समझाती थी और एक झूठ बोला जाता था, ज़्यादा देर होने पर अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में एक भेड़िया आता है जो छोटे बच्चों को उठा ले जाता है, बस इतना कहना होता था और हम खुद ही घर के अंदर हो जाते थे। क्या बात है, कोई किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच सच बोलना चाहिए तो भी अच्छा रहता है। कुमार गौरव इंदुकर नेशनल पार्क तालुका चिमूर डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से लिखते हैं। सुदर्शना मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि झूठ बोला गया तो तुम्हारा कहाँ काला कौवा ले जाएगा। ओके, आपकी संध्या शुभ हो, थैंक यू सो मच। और मैं क्या बोलूँ इस टॉपिक पर, बचपन था वो तो सबसे अनोखा होता है। हमारा बचपन जो है ना, जिंदगी बचपन की है। जावेद आलम, मोहम्मद जयान, जयपुर,
कन्हैया बोंधा से लिखते हैं, क्या बात है। तो दोस्त मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आपके साथ अगर ऐसा कोई बचपन में झूठ बोला गया था कि जैसे होता है ना कि आपने कोई फल का बीज खा लिया तो आपके पेट में पेड़ उगाएगा, तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो जल्दी से लिख के भेजिए। 9868107070 हमारा नंबर है। और फिलहाल एक गीत सुनते हैं और इसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह

0: सात बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन। और आज का टॉपिक है कि क्या बचपन में आपके साथ कोई ऐसा झूठ बोला गया है। क्योंकि बच्चे बहुत भोले होते हैं ना बचपन में, उनको भोलों को जो होता है ना बेवकूफ बनाया जाता है छोटे बचपन में। बचपन में सोचते हैं छोटा बच्चा है क्या हो गया, इनको बेवकूफ बना दो। तो आज हम वही टॉपिक लेकर बैठे हैं कि अगर आपको कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको बेवकूफ बनाया गया है बचपन में, जैसे बोलते थे ना कि आप अगर ये कोई फ्रूट का फल का बीज खा लेंगे तो आपके पेट में जो है पेड़ हो जाएंगे, बाग हो जाएंगे। बच्चे सोचते थे कि बहुत बड़ा बाग बगीचा बन जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कभी हुआ है आपके साथ तो लिख कर भेजिए 9868107070 हमारा नंबर है। कैलाश शर्मा गुरुग्राम से कहते हैं कि मुझे कहना है आज के टॉपिक में कि बचपन में हम जब भी मिठाई खाकर घर से बाहर निकलते थे तो मम्मी बोलती थी कि मिठाई खाकर बाहर मत जाओ, नहीं तो भूत पीछे लग जाएगा, चुड़ैल पीछे लग जाएगी, और हमें ज़बरदस्ती कोई नमकीन चीज़ खिलाकर पानी से मुंह साफ करवा करके घर से बाहर निकलते थे। और बाद में हमें पता चलता कि मिठाई खाकर बाहर जाने से कोई भूत भूत नहीं आता, लेकिन यह तो एक अच्छी आदत बनाने के लिए हमें बोला गया था। कैलाश शर्मा गुरुग्राम से दिखते हैं, बहुत खूब, थैंक यू सो मच। और अगला मैसेज हमें मिसेस धर्म भाटिया ने रोहतक से लिखे हैं। सर बात 1959 की है कि हाल में मैं फिफ्थ क्लास में थी तो एक फ्रेंड के कहने पर मैं घर से पैसे चोरी करके स्कूल ले जाती थी और टाइम में बहुत मैं गुल्लक बना रखी थी और फ्रेंड्स फादर्स के शॉपकीपर थे, वो रात को आकर एक एक आना हम सभी को बहनों को भाइयों को देते थे, चमन्नी हमारी मम्मी को भी देते थे। मैंने बड़े तरीके से मम्मी की गुल्लक तोड़ रखी थी। ओके, थी तो डेली पैसे निकालती थी, कुछ अपनी गुल्लक में डाल देती थी, कुछ स्कूल ले जाती थी, बट मंथ के लास्ट में सब पैसे लेकर खर्च कर देते थे। बट जब मम्मी ने गुल्लक देखी तो पैसे कम निकले, पापा से सब ने पूछा और सबने कहा, कहते रहे कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। पापा को मेरे पे शक हो गया और खूब मार पड़ी, सारी बात बताई गई। उसके बाद तो झूठ बोलने की कसम ले रही कि आज के बाद झूठ नहीं बोलना। बहुत अच्छा आपने ये वाक्य हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच। मुझे बच्चा समझकर मुझे कई बार झूठ बोला गया। मुझे कहा गया कि यह जो मेघ है वह नीचे तक था, हम लोग उसको छू लेते थे। एक बुढ़िया धान कूट रही थी तो उसने मुसल अचानक मेघ में लग गया जिसके कारण मेघ ऊपर चला गया। ओके, रंजीत कुमार बंडल अरिया बिहार से लिखते हैं। और अगला जो मैसेज हमें भेजा है ये किन्होंने भेजा है, ये भेजा है प्रेमचंद प्रेमी जी ने। नन्हे पंछी आ जाते हैं मन की बातें कह जाते हैं, पाकर निश्चल प्यार तुम्हारा और ऊंचा उड़ जाते हैं। नन्हे पंछी आ जाते हैं मन की बातें कह जाते हैं, संवेदन का गहरा सागर अंतर मन में ठहरा सागर, जिसकी स्नेहिल लहरों में गम सारे ही बह जाते हैं। नन्हे पंछी आ जाते हैं मन की बातें कह जाते हैं, दोहरे दोहरे जलते जलते दीपक, रात की गोद में पलते दीपक। क्या बात है, बहुत खूब, मन की बातें कह जाते हैं। और लिखते हैं कि हमारी भी हाजिरी लगा देना। तो दोस्त आपकी हाजिरी लगा दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बचपन में आपके साथ भी कोई ऐसा झूठ का वाक्य हुआ है, अगर हुआ है तो जल्दी से लिख कर भेजिए। मैं भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से लिखते हैं आई वुड लाइक टू से डेट माई चाइल्ड हुड आई यूज टू हेयर डेट इफ यू लुक एट द स्टार्स विश फॉर समथिंग यू विल गेट इंस्टेंटली, बट वेन आई रिमेंबर दिस आई लाफ एट माई सेल्फ। बचपन में जो है इनको बोला जाता था कि जब आप तारों को देखेंगे और कुछ भी मांगेंगे वो इमीडिएटली पूरा हो जाएगा, आपकी विश जो है आपकी इच्छा। और आज जब ये बातें हमें पता लगती हैं तो हमें हंसी आती है, और बाद में हमें पता लगा कि जो सच्ची मेहनत है वही आपकी असली मेहनत है और वही सक्सेस का रास्ता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा दोस्त। और अगला जो मैसेज हमें भेजा है वो भेजा है चांद मुखर्जी दिल्ली से लिखती हैं, क्या बात है। बचपन में बड़ों को देखकर हमें बड़ा मन होता था व्रत यानी फास्ट रखने का, पर हमें यह पता नहीं था कि इसमें क्या खाया जाता है और क्या नहीं। पर यह पता था कि व्रत में दाल चावल रोटी नहीं खाते हैं। तो मैं जब भी बड़े व्रत रखते थे तो हम भी जिद करते थे कि व्रत रखते हैं, तो पापा हर बार हमें काला जामुन यानी कि ब्लैक रसगुल्ला कहकर खिला देते थे कि ये व्रत में खाया जाता है। और बहुत दिनों तक हम जब भी व्रत होता था तो काला जामुन खाते रहे। बहुत बाद में हमें पता चला कि व्रत में ये नहीं खाया जाता और हम हैरान रह गए, क्योंकि एक दिन व्रत में हम कहीं गए थे और सब कह रहे थे कि आज हमारा व्रत है, तो कोई काला जामुन ला दो। तब सबने हंसते हुए कहा कि व्रत में काला जामुन नहीं खाया जाता। क्या बात है, चांद मुखर्जी ने आज अपने जो दिल की बात है ना वो बता दी। थैंक यू सो मच चांद। और अगला मैसेज हमें दिनेश कुमार ने दोहा कतार से भेजा है। प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और कह रहे हैं कि टॉपिक सुनकर हंसी भी आ रही है। क्या बात है, क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। घोड़े उड़कर आसमान में जाते हैं, वापस टाइम पे आइसक्रीम लेके आते हैं, ऐसे बहुत सारे झूठ हैं। अच्छा जी, ये तो आपने यूनिक चीज़ बताई है। हमें बताया जाता था कि पेंसिल को छीलने के बाद पेंसिल के छिलके पानी में रखो और नई पेंसिल बन जाएगी। ऐसा मैंने कई दिन किया। क्लास की लड़की ने मुझे बताया कि ये सब झूठ वूठ है, कुछ नहीं होता, मन का वहम है। बहुत बढ़िया। विष्णु प्रसाद दांगी लिखते हैं, तहसील ब्यावर, जिला रायगढ़, मध्य प्रदेश से। बचपन में हमें परियों की कहानी सुनाई जाती थी जिसमें यह केवल सत्य बोलने के वालों को ही दिखाई देगी, परी उसके लिए बहुत सारे खिलौने लाएगी। दूसरे, जब हम कभी रात को देर से घर आते थे तो भूत डराएंगे, लेकिन इस बातों में घर वालों को सुरक्षा की चिंता छिपी होती थी। क्या बात है, कहाँ गए कि ममता भरे दिन कैसे जिए हम अपनों के बिन। वो झूठी कहानी कहकर हमारा ध्यान रखने वाले दादा नाना नानी जब अब मोबाइल से हमसे दूर कर दिए हैं। अब सभी से विनम्र निवेदन है कि आप आधुनिक चीज़ों का उपयोग करें, परंतु घर के बुजुर्गों के पास बैठकर उनके जीवन का अनुभव भी प्राप्त करें। बहुत खूबसूरत आपने ये पंक्तियां लिख के भेजी हैं विष्णु प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। और ये जो राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की रात्रि सेवा आने वाले कार्यक्रम पैगाम, हमारे गीत हमारे प्रस्तुत करते हैं, शायद विशाल है कि बात कर। अच्छा, ये इन्होंने मनीष शर्मा जी ने मैसेज हमें भेजा है। क्या बात है। और लिखते हैं कि क्या आप, मैं वही वीर दमन हूँ, आपके साथ रहता हूँ। यार रात्रि की सेवा में आपसे कई बार ही मुखातिब हुए, थैंक यू सो मच। और 20 साल के पहले की बात कर रहे हैं ये, मैं रात का इंतज़ार करता था मेरे पत्र शामिल होने का। ओके, मैं यही कहना चाहता हूँ आज के उसमें कि यदि गिलहरी के हाथ लगा दोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। क्या बात है, अगर ऐसा होता तो हर कोई पास हो जाता, लेकिन सच्ची मेहनत जो है ना, जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। थैंक यू सो मच मनीष शर्मा जी, आपने इतना प्यारा मैसेज लिख के भेजा हमें। और अगला मैसेज हमें भेजा है किन्नों ने, ये भेजा है, बहुत सारे मैसेज आए हैं। मोहल्ला हलवाई शिरकुट बिजनौर से हमें मैसेज भेजा है मोहम्मद वकार फरीदी। चुपके चुपके से रहते हैं सारे, आराम नहीं होते, कुछ रास्ते एहसास के होते हैं, उनके नाम नहीं होते, जिनके पास जिनके जैसे आप और हमारे रेनबो के रिश्ता है। क्या बात है। और अगला मैसेज हमें भेजा है किन्होंने, ये भेजा है, बचपन में क्या जमाना था, खाना खाने से नखरे करो तो माँ कहती थी जल्दी खा ले नहीं तो डायन आ जाएगी। क्या बात है, ऐसे डराया जाता था। टीवी देखने दूर जाना हो तो पिताजी की चेतावनी, रास्ते की पुरानी हवेली में भूत रहता है, सीधे जाना और सीधे लौट आना। मैं सोचता हूँ ना डायन मिली ना भूत, ये तो माँ बाप की देसी पेरेंटल कंट्रोल थे, टेक्नोलॉजी वाले टेक्निकल कंट्रोल थे, और जो हमें समय पर खाना खिलाने और सुरक्षित लौटाने का सबसे कारगर तरीका था। ग्राम ढाणी कुतुबपुर, तहसील जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना जी ने मैसेज भेजा है। बहुत प्यारा मैसेज भेजा है अवाना जी आपने, थैंक यू सो मच। मुझे एक बार ये बताया गया कि टीवी ज़्यादा देखूंगा तो आंखें चाकोर हो जाएंगी। मैं हमेशा टीवी को मुड़कर देखता था, रोज आईने में देखता था कि कहीं आंखें मेरी बदल तो नहीं गई हैं। क्या बात है। ललित राणा डेरा बस्सी पंजाब से लिख रहे हैं। श्याम सुंदर जी ने मैसेज भेजा है हमें नोएडा एक्सटेंशन से। वक्त की किताब के कुछ पन्ने पलटना चाहती हूँ, आज फिर वही बीते पल जीना चाहती हूँ। श्याम सुंदर रोहिला रीना मैम के लिए भेजा है। क्या बात है, बहुत खूब। और ये मैसेज हमें भेजा है किन्होंने, ये मैसेज हमें भेजा है, मैंने राम राम चेन्नई से भेजा है। आपका प्रोग्राम बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। आज के सवाल में बचपन से झूठ से मुझे याद आया कि हमें कहा गया था कि लौकी के बीज से खेलोगे तो पेट में कीड़े हो जाएंगे। हाँ, कितना बड़ा झूठ हमारे साथ बोला गया। ओहो, और आंखों में जो काम हुआ काजल क्यों बदनाम हुआ जिस दिन लगाई तुमने मेहंदी शहर में। अरे यार दोस्त, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ और आप कहाँ पर लेके जा रहे हैं। और लिखते हैं कि हम बचपन में जब चलते हुए और दौड़ते हुए गिर जाते थे तो बड़े लोग हमें कहते थे कि अरे चींटी मर गई, चींटी मर गई, जल्दी उठो, और हम रोना बंद करके उठ जाते थे। भेरूलाल वक्तरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं, क्या बात है। हम भी सुन रहे हैं कस्बा गनौर यूपी से। फारूक अली खान, फैजिया फराज, फरहीन फरहान, फरिया ताहिरा, आपका भी स्वागत है जी, आपकी भी अटेंडेंस हमने लगा दी है। और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, हमारा भी अटेंडेंस लगा दीजिए, आपकी भी हमने अटेंडेंस लगा दी है, लेकिन आपने लिख के नहीं भेजा कि आपके साथ बचपन में क्या झूठ बोला गया था। और हीरामणि वर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, वो समय की पहले की बात है, हमारे गांव में टेलीविजन नहीं था, तब वीसीआर वगैरह आता था तो गांव भर के लोग एकत्र होकर रात भर देखते थे, लेकिन मेरे घर में फिल्में वगैरह देखना पसंद नहीं करते थे। जब घर में बाबूजी सो जाते थे तब रात को उठकर फिल्म देखने जाते थे और एक फिल्म देखकर आंखें चुपके से सो जाते थे। घर में बड़ों से और बाबूजी से बहुत डरते थे, सच में एक डर भी था और एक आदर सम्मान की बात भी होती थी, ये बहुत अच्छी बात है। और बचपन में दोपहर में जब घर से बाहर जाते थे तो खेलने में अम्मी कहती थी कि चुड़ैल आत्मा चलावा दोपहर में घूमती हैं, बच्चों को पकड़ के ले जाती हैं। ओके, क्या बात है, ये भी एक झूठ था। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं म्यूजिकल और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर। और अगला जो मैसेज हमें भेजा है, ये भेजा है मनीष ने राजगढ़ मध्य प्रदेश से। लिखते हैं, जब हम छोटे थे तो माँ और पापा हमारी बहुत फिक्र करते थे। हमको कहते थे कि बेटा ऐसा मत करना, वहां मत जाना, वहां पर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। पर हमने एक नहीं सुनी, कुएं में नहाने चले गए। और जब कुएं में माँ पहुंच गई, वहां पे माँ पहुंच गई कुएं के पास डंडा लेकर, तो वहां पर हमें मारते मारते घर तक लेकर आई। कुएं पर नहाने मत जाना, डूब जाओगे तो कौन तुम्हें बचाता। और आज वही बचपन की याद ताजा है। क्या बात है। और राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो भी कहते हैं कि हमारे भी अटेंडेंस लगा दीजिए, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी। और भूटान सिक्किम से हमें यंग जोम ने भेजा है, जब हम छोटे थे, ये मैसेज भेजा है और लिखते हैं, जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि रेनबो की तरफ फिंगर पॉइंट मत करना, वरना फिंगर बेंड हो जाएगी। हम इतना डर जाते थे कि आज भी रेनबो देखते हैं उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करने से डर लगता है, लेकिन रेनबो सुनते जरूर है ना। आकाशवाणी FM रेनबो आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक। और विजेंदर घटोल अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं कि हमारी भी हाजिरी लगा दीजिए, आपकी भी हाजिरी लगा दी। और भी कई दोस्त हैं जिनकी हाजिरी है। सोनिया रोहतक से हमें कह रही हैं हमारी भी हाजिरी लगा दीजिए। और सेमी वॉशिंग मशीन पड़ोस में आई तो उन्होंने बोला इसमें कपड़े प्रेस होके निकलते हैं, वो झूठ आज समझ आया। ये सोनिया ने हमें रोहतक से भेजा है। ओके, अनिल शर्मा सरिता विहार से लिखते हैं, छोटे नाती को चॉकलेट नहीं दिलाने, उसे तब दांत में कीड़े लगने का डर दिखाकर उसे झूठ बोलकर समझा देता हूँ। अरे क्या बात है, सो स्वीट। और मोहम्मद इम्तियाज जोहार कैम से हमारे साथ हैं, उनकी भी अटेंडेंस लगा दी हमने। और कई और हैं जिनकी अटेंडेंस लगा दें। प्रवीण चौहान करगों मध्य प्रदेश से, उनकी भी अटेंडेंस हमने लगा दी है। और किन की अटेंडेंस लगानी है, और भी कई हैं जिन्होंने मैसेज हमें भेजा है। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी हमें मैसेज भेजा है। राजेश भल्ला जी ने एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से हमें मैसेज भेजा है। और कस्बा बलराम से इरशाद अहमद शाह जहां बेगम ने हमें मैसेज भेजा है। और भेरूलाल वक्तरिया धाकड़ उज्जैन से हमें मैसेज भेजा है। और जावेद आलम मोहम्मद जियान जयपुर से हमें मैसेज भेजा है। और संजय श्रीवास्तव ने हमें मैसेज भेजा है। आप सबने इतने मैसेजेस भेजे हैं। और किन्होंने मैसेज भेजा है हमें, ये भेजा है हमें मैसेज मनीष कुमार एल्टनो से हमें मैसेज भेजा है। नीलेश ने कोल्हापुर से हमें मैसेज भेजा है। कंड से मोहम्मद फुरकान ने हमें मैसेज भेजा है। और भी हैं कईयों ने जिन्हें हमें मैसेज भेजा है, हमारी अटेंडेंस लगा दीजिए। संदीप गुलिया ने हमें झज्जर हरियाणा से मैसेज भेजा है, उनका भी हमने अटेंडेंस लगा दिया। निमित हर्ष ने मध्य प्रदेश से मैसेज भेजा है। तो अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया। अब मेरे को दीजिए इजाजत और अगला प्रोग्राम सुशांत मल्होत्रा लेकर आपके साथ रहेंगे। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित

0: नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंडो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर अब पेश हैं अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। सरकार कल प्रतिनिधि मंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके की मौत की खबर को लेकर अखबार में छपी खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और दिपके पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामा जारी रहने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। आर्थिक मामलों के प्रतिनिधि मंडल ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बलेरी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधी को विस्तार देने का आह्वान किया। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय ने भारत द्वारा जानबूझकर पड़ोसी देश में बाढ़ लाने की पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता FTA के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। दोनों पक्षों ने मतभेदों को दूर करने और सहमति के क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से विचार विमर्श किया। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। अमरीका ने चीन, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 12.5% तक का नया टैरिफ लगाया है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। नए राष्ट्रपति के चुनाव तक हाफिज उद्दीन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। स्पेन सरकार ने आज राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। कई स्थानों पर लगी भीषण आग के कारण मध्य मैड्रिड क्षेत्र में लगभग 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत के श्रीहरि नटराज पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी के सेमीफाइनल में पहुंचे। तो ये तो थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम लेकर म्यूजिक मस्ती आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त मस्त मलंग आरजे वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर, सत श्री अकाल एक बार फिर, और गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। तो आ जाइए मेरे साथ एक बार

0: आकाशवाणी एफएम रेनबोज 102.6 पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। और जैसा कि हमेशा होता है कि कुवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी है, और जबकि शादीशुदाओं को लगता है कि सारी समस्या की जड़ जो है शादी है। बस अब ये है कि शादी का जो लड्डू खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। फिलहाल आपके लिए एक और ट्रैक लेकर आया हूं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। डांस रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए।
1: लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट परे थम जवान पीछे से गाना गाएगा।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 पर और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती और हमारे साथ आप हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक।

चलिए दिलेर बाजी भी आ गए हैं हमारे स्टूडियो में और ये रहा अगला ट्रैक या स्टूडियो में मतलब हमारे अगला गाना जो है दिलेर बाजी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, और मस्ती के साथ साथ डांस भी है, और हमारे साथ बातों का सिलसिला तो चल ही रहा है। तो आइए एक और ट्रैक को एंजॉय करते हैं और नाचते हैं, गाते हैं और जिंदगी का जश्न मनाते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन AIR FM रेनबो 102.6 पर, और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वी धवन। एक बार फिर हमारे साथ आ गए हैं दिलेर पाजी। ते आ जाओ, जश्न मनाइए जिंदगी दा, ते नचिए गाइए और टप्पे पाइए।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: एक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दोस्तों, अगला प्रोग्राम विकास कौशिक लेकर आपके साथ रहेंगे। प्रोग्राम कौन सा आपकी याद आती रही, और रात्रि 11:05 पर एक बार फिर आपके साथ रहेंगे विकास कौशिक, और 10:05 पर आपके साथ 10:02 पर आपकी जगह दो मिनट पर आपके साथ रहेंगे वेस्टर्न म्यूजिक लेकर सुशांत मल्होत्रा। और अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते इतना ही कहूंगा दोस्तों कि जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुमको है इंतजार, खुद पर यकीन और रब पर एतबार करो। अब अपने दोस्त आरजे वीर दमन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। बाय एंड टेक केयर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो और आप रात के 9:54 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटखल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपिके की मौत की खबर को लेकर अखबार में छपी खबरों का खंडन किया है। पुलिस ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और दीपिके पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय ने भारत द्वारा जानबूझकर पड़ोसी देश में बाढ़ लाने की पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टों को खारिज किया। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। दोनों पक्षों ने मतभेदों को दूर करने और सहमति के क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से विचार विमर्श किया। अमरीका ने चीन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 12.5% तक का नया टैरिफ लगाया है। चीन ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: जावेद साहब का लिखा यह सवाल एकदम वाजिब है कि पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो सरहद तो इंसानों के लिए है, तो सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। अब इसका जवाब सिर्फ इतना दिया जा सकता है कि इंसान होके हमने इतना ही पाया है कि अगर किसी की याद आए तो उसे फोन करके कह सकते हैं कि आपकी याद आती रही। जी हाँ, यही इस प्रोग्राम का नाम जिसे आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी की रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ विकास, और सचमुच आपसे बस यही कहना है कि इतनी याद आती है आपकी जब आपसे मुलाकात नहीं होती है कि मन बेचैन रहता है, और जब आपसे मिलने के लिए आकाशवाणी के रेनबो के स्टूडियो में हम आ जाते हैं, इस कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं, इस माइक के सामने बैठ जाते हैं, तो दिल एकदम बाग बाग हो जाता है। और इस बाग बाग दिल के साथ, खुशियों से लबरेज इस दिल के साथ, चेहरे पर आई इस मुस्कान के साथ, और आपके साथ जुड़े हुए हमारे दिल के तार के साथ, बस यही कहना है कि हम हैं इस पल यहाँ।
1: अभी हम एक
0: स्टे
1: दूसरे को
0: ट्यून्ड।
1: खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते हैं, जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है।

फिल्म कृष्णा से बड़ा प्यारा बड़ा मीठा गाना आपने सुना, उदित नारायण साहब की आवाज़ साथ में मधुश्री उनके साथ। और गाने का मैजिक ये है कि भले फिल्म नहीं चली लेकिन गाना इतना हिट हुआ था कि आज भी हमारे दिलों में असर करता है, हमारी रूह तक पहुंचता है। और इस गाने के साथ एक बात मुझे याद आई, बात ही कुछ यूँ है कि निदा फाजली साहब ने बरसों पहले कहा था कि देखा हुआ सा कुछ है तो सोचा हुआ सा कुछ, हर वक्त मेरे साथ है उलझा हुआ सा कुछ, होता है यूं भी कि रास्ता खुलता नहीं, जंगल सा फैल जाता है खोया हुआ सा कुछ। और ये बात आप उस शख्स के लिए कह सकते हैं या उस खास शख्स की ना मौजूदगी के लिए कह सकते हैं जिसके बिना आप भी खुद को भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, आपके भीतर भी कुछ ना कुछ उलझा सा रहता है, उसके बिना कोई रास्ता नहीं खुलता, और खुलता है तो दरवाज़ा सिर्फ अकेलेपन का, और उस दरवाजे के भीतर में मिलती है सिर्फ उसकी याद। और आप हर पल हर शय हर वक्त उस व्यक्ति से बस यही कहते हैं कि आपकी याद आती रही। और परेशानी तब होती है जब वो व्यक्ति आए आपसे मिलने का भी ऐसे गाहे बगाहे, और आकर जितना जल्दी आए उससे भी जल्दी लौट जाए, तो क्या कहेंगे आप, ऐसा है ये ठीक नहीं।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से

0: दुश्मनों के खात्मे तक। ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

फिल्म रंग दे बसंती से मधुश्री की आवाज़ में इतना प्यारा, इतना मीठा गाना। मतलब इस गाने को सुनने का जो मतलब एहसास है ना, एकदम दिल के भीतर तक उतरता है। इसलिए मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स में से है, और इसीलिए जब भी मुझे मौका मिलता है आपके साथ बांटने का और इस गाने के जरिए आपको ये बताने का कि आपकी याद आती रही, सच में मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे ऐसी बिन बताएं अपने साथ कहीं अपनी खास बातों की गलियों में लेकर जाएं, जैसे बहुत सारे लोग लेकर भी जा रहे हैं। हमें बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, हमें कह रहे हैं आपकी याद आती रही, मैं आपको प्यार भरा नमस्कार आदाबर। जो ये हैं गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, और साथ में हमें पंकज ने अमरावती महाराष्ट्र से गुड इवनिंग लिखा है और कह रहे हैं कि आपके बहुत बढ़िया गाने हैं, प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। बहुत धन्यवाद पंकज जी। और इसके साथ साथ हमें हमारे गुमनाम दोस्त ने लिखा है कि आप आते हैं हमें करार आ ही जाता है, आपको याद करते करते शुक्रवार आ ही जाता है। थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बत के लिए, इतने प्यार के लिए। और साथ में मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हाट दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से लिखते हैं कि यादों की बारिश में भीगा है आज फिर ये शहर, हर एक मोड़ पर बिखरा है तेरी यादों का मंजर, और रिमझिम फुहारे पूछती हैं कहाँ गया वो हम सफर, सरफराज अब भी तेरी यादों में भीगता है ये शहर। ऐसे याद कर रहे हैं अपने खास दोस्त को, मित्र को, प्रेमी को, अपने हमदम को, तो दिल से बस एक ही आवाज आती है, साथिया, है ना? बड़ा प्यारा गाना है, सुनिए मेरे साथ आकाशवाणी की रेन।

साथिया, क्या गाना है, बेहतरीन बेहतरीन, शानदार। फिल्म तो ऐसी थी कि आपको बरसों तक नहीं भूलती, और गाना मैं कहता हूँ कि आपको सदियों तक नहीं भूलेगा, है ना। ये बड़ी प्यारी सी बात याद आई है, आप इजाज़त दें तो ज़रा बांट लें आपके साथ। चले बता देते हैं, बात यूँ है कि मैं उसके बाद चल नहीं पाया किसी के साथ, मैं उसके बाद चल नहीं पाया किसी के साथ, उसने भी सिर्फ काम चलाया किसी के साथ, और जो मुश्किलों से मैंने सिखाया था उसको दोस्त, उसने वो इश्क करके दिखाया किसी के साथ। ये जो लाइन है सुनकर, अगर आपने भी अपने इस आशिक के उस इश्क को अब तक काफ़ी हद तक रुसवाई कह दिया है, और उसे रुसवाई करने का कसूरवार ठहरा दिया होगा, लेकिन सच है जनाब कि ये जो इश्क की राह होती है ना, ये इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। ये इश्क की राह अक्सर आशिकों के लिए अजीब से इम्तहान लेकर आती है। यहाँ कई दफ़ा किसी और का सिखाया इश्क कभी कभी किसी और से करना पड़ता है, फिर भले ही जिससे आप वो झूठा इश्क कर रहे हों उसके साए से लिपट कर भी, आपका दिल आपको उस इश्क को सिखाने वाले को याद करके यही कहता रहे कि आपकी याद आती रही, और उस साए के साथ आप बस यही कहें कि ऐ जिंदगी गले लगा ले।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया।

0: अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: और देखिए, मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता हुआ ये वक्त ले आया है हमें वहां जहां आपसे इस घंटे हमें विदा लेना अब हमारे लिए मजबूरी है, क्योंकि रात के 9:56 हो चुके हैं और तकरीबन 4 मिनट केवल आपके साथ बातचीत के बचे हैं। तो जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि आपसे ये मुलाकात सिर्फ एक पॉज है, एक छोटा सा अल्प विराम है, क्योंकि रात 11 से 12 बजे के बीच में हमारी मुलाकात फिर होगी। रंगे महफिल मिलकर सजाएंगे, सुनेंगे कुछ खास गजलें, कुछ गीत और कुछ करेंगे बातें दिल से दिल तक पहुंचने वाली। तो बस बरकरार रहिएगा आकाशवाणी के रेनबो के साथ, सुनते रहिएगा और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिएगा। ठीक है, फिलहाल आपको बस इतना ही कहना है कि आप जब हमारे करीब होते हैं तो हमारे दिल से एक ही आवाज़ आती है, बहुत खूबसूरत हो।
3: बस।

जेपी नड्डा एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह मीट सीजेपी डेलीगेशन इन न्यू दिल्ली. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्स न्यू रेल लाइंस इन कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड न्यू केमिकल पार्क स्कीम टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ. प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिमेन डिस्ट्रप्टेड एंड रकर्स बाय ऑपोजिशन. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And an ISSF shooting World Cup, Sayem wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. Those are the news headlines. Stay tuned for the show that's called The Weekender.

0: You just heard Sultans of Swing, guys. You know, every late night actually deserves a little Mark Knopfler magic. I do. I feel that way. Whether you're crossing highways or empty city streets, well, thanks for letting us ride along. That's what I can say. Thank you. Dire Straits. Okay, so the time of the studio clock happens to be 31 and a half minutes past 10 p.m. Time for me to take a short and sweet break because we're done with what the first half of the show. We're moving to the second one right now. But before we proceed further ahead, time for a short break. So do not, and repeat that, do not, I said now. I'll be right back after these messages. Break time.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है पर्पल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वाणी आकाशवाणी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो और 11:23 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाला मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी

0: के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय ने भारत द्वारा जानबूझकर पड़ोसी देश में बाढ़ लाने की पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। अमरीका ने चीन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 12.5% तक का नया टैरिफ लगाया। और चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। और गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। ये थे आकाशवाणी के रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के रेनबो के साथ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

मुझे पता है आपके भी दिल की यही आरजू थी कि कोई दिलरुबा मिले, कोई ऐसा मिले जो आपके जख्मों पर हल्का सा कुछ ऐसा फाया रख दे, कुछ ऐसा हाथ रख दे कि बस वो जख्म भरते चले जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो हमसाया बनूं, आपका वो हम सफर बनूं जो आपके लिए तमाम दर्दों की, खासकर दिल के दर्द की दवा का सा काम करें, है ना। मेरा नाम विकास है और मैं आपके साथ सजाने आया हूँ आकाशवाणी की रेनबो पर रंग महफिल। इस रंग महफिल में आप तमाम सुनने वालों का इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है और इस बात के लिए आपका धन्यवाद है कि आपने हमें चुना अपने इस बहुत ही खास वक्त को बिताने के लिए। जुम्मे की रात आपके साथ मैं करूँगा बहुत सारी मीठी मीठी बातें, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत सारी, बहुत सारी मतलब इतनी सारी कि जिन्हें हम हजारों ख्वाहिशें कह सकते हैं वो यहीं पूरी करनी है। जगजीत साहब आ चुके हैं महफिल में, इस्तकबाल कीजिए।

देखिए साहब की आवाज़ हो तो फिर आपको गज़लों की महफिल में कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं। अपने आप में पूरा आसमान है वो, जहाँ उनके नाम का हर सितारा जगमगाता रहता है। उनकी हर गज़ल, उनका हर नगमा और उनकी आवाज़ ऐसी है जैसे ऊपर से मालिक की रहमत बरसती हो, है ना। और अगर मैं जगजीत साहब के लिए कहूँ एक बात, वो यही होगी कि बात अगर सुकून की करूँ तो तुम्हारी आवाज़ ही मेरे लिए काफ़ी है। सचमुच सुकून का दूसरा नाम है जगजीत साहब की आवाज़। रंग महफिल में ये आवाज़ बार बार गूंजती रहेगी। इस भरोसे के साथ आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम ना होते तो गज़ल कौन कहता, अगर तुम ना होते तो गज़ल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कमल कौन कहता।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

जी हाँ बिल्कुल, जो पंकज जी कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं कि आइए इश्क फरमाइए, क्योंकि इश्क फरमाने के लिए इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। ये है आकाशवाणी का रेनबो, जहाँ इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम रंगे महफिल, और ये इश्क की वो दुनिया है जहाँ इश्क की तरह ही तमाम रंग मिलते हैं। इस रंगे महफिल में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है, और विकास आपके साथ है, और हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। मैं जिक्र करना चाहूँगा, मुंबई दादर से राजेंद्र परमार जी ने हमें मैसेज भेजा है, कह रहे हैं नमस्ते, आपका कार्यक्रम रंगे महफिल गज़लों का इस कार्यक्रम में, इस महफिल में आपका तहे दिल से स्वागत है। जी आपका भी बहुत स्वागत है, और कह रहे हैं कि आपका शायराना अंदाज हम पसंद करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अगर श्रोता मित्रों गज़ल ना सुनते तो आपको संदेश कौन भेजता। बिल्कुल, कौन अगर सुनता ही कोई नहीं तो मैसेजेस कौन भेजता। और राजेंद्र जी बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये बहुत ही गज़ल जो हमने सुनाई थी बहुत पसंद आई थी। जगजीत साहब गालिब साहब एक साथ मिले तो कैसा अंजाम रहेगा, है ना। ये हमें लिखा है किसने, हमें लिखा है बीती रावत ने, गोरखपुर यूपी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यार के लिए। अरुण कुमार रावत जी भी उनके साथ हमें ये मैसेज भेज रहे हैं, और इसके अलावा हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं, जिनमें नाम पढ़ देता हूँ उनके। तुम्पा पॉल रेलवे कॉलोनी एमके रोड मिंट रोड सेंट्रल दिल्ली से, और बहुत बहुत धन्यवाद। और वो कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं बहुत लंबा कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ कहना है उनके बारे में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि बहुत ही लंबा मैसेज है। हम ज़रूर दोबारा पढ़ के उम्मीद करेंगे कि आपके मैसेज पहुँचाएँ। जोया मेलबर्न से कुछ देर पहले हमको सुन रही थी, सुदर्शन जी अनिता मुखी सिमरन मुखी हमको दिल्ली से सुन रहे थे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार अपना हम तक पहुँचाते रहिएगा। फ़िलहाल मैं आपको एक और बेहतरीन गज़ल तक पहुँचा रहा हूँ, लौट कर आएंगे तो फिर कुछ और बातें करेंगे। और हाँ, मैंने कहा था ना, वादा किया था आपसे कि जगजीत साहब ज़रूर इस महफिल में लौट कर आते रहेंगे। कीजिए आ गए, और एक सवाल के साथ आए हैं, बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, सुनिए।

उफ, ये आवाज, ये अंदाज और एक कमाल के अल्फाज ऐसे होते हैं जैसे नश्तर होता है ना, सीने में चुभता चला जाता है। लेकिन ये छुपते नहीं है, ये तो अगर चुभा हुआ कोई पुराना जख्म हो तो उस पर दवा सा काम करते हैं। जगजीत साहब की आवाज वो दवा है, वो एक एहसास है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, है ना। और बड़ा बड़ी प्यारी बात उन्होंने इस गजल में कही भी है, बड़ी कमाल की बात है। और एकदम हर जिस वक्त भी आप इसे सुनेंगे ना, आपको लगेगा एकदम करेक्ट बात है। वो कहते हैं कि वक्त रुक रुक रुकता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी हाथ भी सी है। और देखिए, वक्त अभी तो ऐसा लग रहा था, अभी तो रंगे महफिल की हमने शुरुआत की थी, और अभी ऐसा लग रहा है कि बस अब कुल जमा 15 मिनट भी बचे हैं आपके साथ बिताने के लिए, है ना। लेकिन ये 15 मिनट हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रंग हों, इनके लिए हमें क्या करना होगा? बस समेट लेना होगा अपने इर्द गिर्द जो खुशियां हैं, आपकी और मेरी बनाई हुई इस दुनिया की जो खुशियां हैं उनको समेट लेते हैं। लता जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारा नगमा सिर्फ आपके लिए। रंग महफिल सुनते रहिए विकास के साथ। स्टे ट्यून्ड।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की

पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आकाशवाणी के रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। मैं हूं आपके साथ विकास, और आपसे बस यही कहना है कि अब वक्त कह रहा है कि आज की रंगे महफिल की जो आपकी हमारी मुलाकात है, इसके ख़त्म होने की बारी आ चुकी है ना। रात को 11:55 और 18 सेकेंड्स हो चुके हैं, और विकास अब आपसे कह रहा है कि मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही हंसते गाते मुस्कुराते हुए सुनते रहिएगा रंगे महफिल के साथ साथ आकाशवाणी के अन्य प्रोग्राम भी। ठीक है, तो फिलहाल टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले हफ्ते।
1: भूपेंद्र भी अकेले नहीं थे, उनके साथ मिताली थी।

बारह बजते हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित कराने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कई नई दिल्ली में सीजेपी के मंत्री प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटगल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। चीन में आईएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और गुजरात में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:02 और 28 सेकंड हुए हैं। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो, और प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म लोफर से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मोहम्मद रफी को आइए अब आपको सुनवाते जिस गीत, इसे हमने लिया है फिल्म नैना से।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: जीरो अर्शों में अब आपको सुनवा रहे हैं नाखुदा फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: बहारों फूल बरसाओ, आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है सूरज।

0: 12:34 और 10 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: वो सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
0: लता मंगेशकर की आवाज में आइए अब सुनते हैं शालीमार फिल्म का ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: धनवान फिल्में आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर को।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है

जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर में आइए आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र का गाया फिल्म बाजार का ये गीत।

इसके साथ ही जीरो आर प्रोग्राम आप समाप्त होता है। मुझे यानी अर्चना बिसारिया को इस प्रोग्राम को खत्म करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

एक बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजीपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी कुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। चीन में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्री हरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:02:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं नॉन स्टॉप म्यूजिक और प्रोग्राम का नाम है सुहानी रात। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

दो बजे हैं, आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। रोमानिया की बुकारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत रोमानिया संबंधों की मजबूती में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और गुजरात में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:02 और 47 सेकंड हो गए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं, जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत MV ओमोराफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। हॉकी में भारतीय जूनियर श्रेणी के लड़कों ने मस्कत ओमान में आयोजित FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 7-3 से

मेजबान ओमान को 10-1 से हराया। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की लड़कियों ने एलीट पूल के अपने मैच में चीन के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया, लेकिन 3-6 से हार गईं। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत रोमानिया संबंधों की मजबूती में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत के झंडू कुमार ने राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार का रवैया सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत रोमानिया संबंधों की मजबूती में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल में भारत के झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक। FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर श्रेणी के बालकों ने पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से मात दी। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।